FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की द्वादशी तिथि, तदनुसार 26 जून 2026 सुबह के 5:58:10 हुए हैं। अब हम आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा आरंभ करते हैं।

एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 6 बजने को है, कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। प्रतीक्षा के बस चंद लम्हे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों के विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने इस बात की चर्चा की कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ा रही है और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्बनी से द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: यूनाइटेड किंगडम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: एंड टुगेदर बिकमिंग अ फोर्स मल्टीप्लायर।
0: गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि, मादक पदार्थ

0: लाखों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026 से 2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने की विंडो खोल दी है। मेडिकल कॉलेज में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने 21 तारीख को आयोजित हुई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में दो शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कुरासाओ ने आइवरी कोस्ट को और इक्वाडोर ने जर्मनी को हरा दिया है। प्रतियोगिता में इस समय जापान का मुकाबला स्वीडन से और ट्यूनिशिया का मुकाबला नीदरलैंड से जारी है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने केवल 16 ओवर और 5 गेंद में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।
2: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन वार।

लीजिए सुनिए आज का चिंतन। शास्त्रों में कहा गया है, प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ ईश्वर पर निर्भर करता है और कोशिश ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। ये था आज का चिंतन। आइए सुने भक्ति रचनाएं।

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन झरोखा के अंतर्गत प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हमारा अगला कार्यक्रम है श्री रामचरित मानस गान भाग 231। 6:45 पर संगी सरिता कार्यक्रम में होगी श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। कलाकार हैं वायलिन वादक SL कंडारा। प्रस्तुति मनीषा जैन की। पुराने फिल्मी गीत सुनिएगा भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में सुबह 7 बजे से। हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम 7:30 पर। पर 8:15 पर वंदे मातरम एक जय घोष। 8:30 कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सुबह 8:30 पर। पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा संगीतकार इलैया राजा पर। दस बजे पिटारा के अंतर्गत हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण होगा। 6:45 का प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। रंग तरंग ये कार्यक्रम दिन में 11 बजे से। 12 बजे कार्यक्रम यादों की महफिल। दिन में 1 बजे कार्यक्रम होगा सुरीला सफर, इसमें हम शामिल करते हैं श्रोताओं की टिप्पणियां भी। वंदे मातरम एक जय घोष ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे 2:15 पर, ये पुनर्प्रसारण होगा। दिन में 2:30 पर कार्यक्रम सदाबहार नगमे। फोन इन कार्यक्रम हेलो सहेली का प्रसारण होगा दिन में 3 बजे। पिटारा के अंतर्गत शाम 4 बजे गीतों भरी कहानी सुनिएगा उन दिनों की बात है।

लेखक अरुण शेखर, प्रस्तुति रमेश गोखले की। छाया गीत कार्यक्रम शाम 5 बजे ये पुनर्प्रसारण होगा। वैसे आप सुनते हैं रात 10 बजे कार्यक्रम छाया गीत। 5:30 पर कार्यक्रम तराने नए पुराने। छह बजकर 35 मिनट पर कार्यक्रम संध्या रंजन का प्रसारण होगा। शाम 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में होगी श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। फौजी साथियों के लिए जयमाला कार्यक्रम पेश किया जाएगा शाम 7 बजे से। इंद्रधनुष के अंतर्गत शाम 7:45 पर सुनिएगा प्रोग्राम गुलदस्ता। रात 8 बजे हवा महल कार्यक्रम में सुनिएगा नाटिका बजट एक कमाऊ बीवी का। लेखन मनोहर वर्मा का है, निर्देशन गंगा प्रसाद माथुर का। चित्रलोक कार्यक्रम रात 8:15 पर। आपके लिए ये कार्यक्रम सुनिएगा रात 9 बजे से। रात 10 बजे आप सुनते हैं कार्यक्रम छाया गीत। ढलती जाए रात ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे रात 10:30 पर। झरोखा में ये थी रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने श्री रामचरित मानस गान भाग 231। प्रसंग है अयोध्या कांड।

अयोध्या लौट जाने के लिए श्री राम के आग्रह भरे वचन सुनकर राजा जनक तथा मुनिवर वशिष्ठ को कुछ भी कह सकने में संकोच होता है। भरत गंभीर असमंजस की स्थिति में है। एक ओर हृदय में श्री राम के लिए प्रेम और आदर का सागर उमड़ रहा है तो दूसरी ओर है स्वर्गीय पिता तथा स्वयं श्री राम के वचन की मर्यादा पालन का दायित्व। अंत में धैर्यवान भरत के स्नेह जनित शोक संताप पर विवेक ने विजय पाई। हाथ जोड़कर उन्होंने बड़ों से क्षमा याचना करते हुए श्री राम से कहा, हे नाथ, आप माता पिता मित्र गुरु परम हितैषी तथा अंतर्यामी हैं। ऐसे स्वामी का मैं ऐसा दोही हूँ जिसका कोई सानी नहीं। मोह के वशीभूत होकर मैं पिता और आपके वचन का उल्लंघन कर यहाँ आया हूँ। आपने मेरी ढिठाई को भी स्नेह और सेवा मान लिया, मेरे दोष को गुण के रूप में स्वीकार कर लिया। आप जैसा कोई दूसरा स्वामी नहीं है।

ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदनवार। श्रोताओं, अब समय है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा जानने का। आज प्रातः 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। उसके बाद 7 बजे समय रहेगा राष्ट्रीय हिंदी समाचारों का, जो आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे। तत्पश्चात 7:05 पर समय रहेगा हरियाणवी गीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग का।

श्रोताओं, 7:40 पर लेकर आएंगे आपके लिए कार्यक्रम सुप्रभात। सुबह 8 बजे समय रहेगा कार्यक्रम समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। उसके बाद 8:15 पर सुनिएगा विविध भारती से अनुप्रसारित कार्यक्रम। प्रातः 9 बजे सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार, जो अनुप्रसारित होगा विविध भारती से। सुबह 10 बजे पेश होगा आपका पसंदीदा कार्यक्रम नमस्ते हिसार।

श्रोताओं, 11 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी भाग 1315। 11:30 पर कार्यक्रम रहेगा यादों की महफिल, जिसका प्रसारण होगा विविध भारती से। उसके बाद दोपहर 1:05 पर आपको प्रादेशिक समाचारों के लिए लेकर चलेंगे आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र। 1:10 पर आप सुनिएगा विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम गीत माला।

0: श्रोताओं, रूपरेखा का अगला भाग इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: हिंदुस्तान जमीन है।

6:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। उसके बाद ईश वंदना पर आधारित कार्यक्रम भक्ति संगीत आप सुन पाएंगे 6:20 पर। 6:30 पर युवा साथी सुन सकेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवा उमंग।

आज शाम 7 बजे आप सुनिएगा कार्यक्रम खेती किसाना सेती, जिसमें चर्चा होगी बाजरे और धान की बिजाई और किस्में। उसके बाद 7:30 पर समय रहेगा कार्यक्रम मारे गांव।

श्रोताओ, रात्रि 8 बजे आप आनंद लीजिएगा पंजाबी गीतों का। 8:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम खुला आकाश।

8:45 पर आप सुन सकेंगे राष्ट्रीय हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। बाकी रूपरेखा एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: देश के हर कोने से आती है ये आवाज।
1: हेलो,
0: आपके दिल की धड़कन और आपके मन का सुकून भला कौन?
1: जी हाँ,
0: हेलो हिसार, आपका अपना फोन इन फरमाइशी प्रोग्राम। अब आप पूछेंगे

0: तो नंबर है 01662-297-827। क्या कहा? किस वक्त करें फोन? रिकॉर्डिंग का समय है हर शुक्रवार दिन में 11 से 11:30 बजे और प्रसारण होगा हर शुक्रवार और रविवार शाम 5 बजे। रुकिए रुकिए, इतना ही नहीं, अगर आप सुना भूल जाएं तो कोई बात नहीं, उसी कार्यक्रम का पुनर्प्रसारण होगा शनिवार और सोमवार रात 10 बजे। तो हर शुक्रवार रहिए तैयार अपनी आवाज हम तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि हमें है आपके हेलो का इंतजार।
1: श्रोताओं, रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे। उसके बाद रात्रि 11 बजे राष्ट्रीय हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रूपरेखा। समाचारों का इंतजार कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने बताया कि बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना से वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ाने और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बनाने पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री कल से 29 तारीख तक सेशेल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशेल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मेनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-2029 का दृष्टिपत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने का विंडो खोल दिया है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर ये शुल्क वापस कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात

0: व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्री रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजैक ने कहा कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में दो शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग घायल हुए हैं। मलबे में अभी भी 200 लोग फंसे हुए हैं। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 16 ओवर और 5 गेंद में ही 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आइवरी कोस्ट ने क्रोकाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट में जगह बनाई है। एक अन्य मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे समाचार जिनका रिले आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जा रहा था। FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:05 हो रहे हैं और समय है हरियाणवी गीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग का।

नई सुबह, नए सवेरे की शुरुआत। आकाशवाणी सार कार्यक्रम लोक रंग के साथ। हरियाणवी लोक रंग हर रोज सुबह 7:10 पे प्रसारित करा जाए। कार्यक्रम की पहली रागनी किस्सा पूर्णमल माते। बात उस टेम की कौन के रानी नूना जी पूर्णमल पे बद चलने का आरोप लाते हैं। राजा शलेबान जल्लादों को कहने लगे कि जाओ पूर्णमल को दरबार में पेश करो। वो जल्लाद पूर्णमल को दरबार में पेश कर रहे हैं। राजा शलेबान पूर्णमल से पूछन लागे, भाई सारा खुट तेरा है या तेरी मां नूना देखा? पूर्णमल हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और अपने पिता शलेबान को क्या कहता है उस मौके की कवि कल्पना बाली शर्मा और साथियों की आवाज में।

के बेरा नाम ने पिछले जन्म में के खोटी कार करी थी और उस समय पूरन मन ने ना पाप की नीत धरी थी। तू जाने पिता पूरन मन ने ना अमृत घूंट भरी थी। देखे मेरे देखे जहर बराबरी के

और गजब का घोड़ा मेरी मौसी ने मेरी कैड बगा के देखा मेरे ते गया चूक नसना मेरा पता शका के देखा स्वामोसी के पाया कानी ना और लखा के देखा बुरी

काटी सुन सुन के मसी के बोल मेरी तबीयत होगी फाटी। उस मुखिए पे पूरन मलका जिजारिया सोसो गाटी रचो गिरते संसार बसे

कार्यक्रम की अगली पेशकश किसान चाप सिंह सोमवती गढ़नो में लेके राजा जसवंत सिंह के बेटे चाप सिंह की शादी श्रीनगर की सोमवती के साथ हो जाए। शादी के बाद 6 महीने की छुट्टी काट के सेना में जाने के लिए तैयार हो जाए तो सोमवती की आख्या में पानी आ जाए, क्योंकि सोमवती घर में अकेली थी। कौन के सेनापति चाप सिंह जब छुट्टी काट के चालन ला गया तो सोमवती और चाप सिंह के बीच आपस में की बात हो है, उस मौके की बात रणबीर सिंह बड़वासनी और

कहे तू और कहे मैं और कहूं, यदि नास जान की राई से

0: कार्यक्रम की अगली रागनी की सा पिंगला बर्तरी। जब रानी पिंगला के पाप उजगर हो जाए और जब बर्तरी ने वो अमरफल पिंगला को दिया, पिंगला ने वो अमरफल सईस को दे दिया और सईस ने नाचने गाने वाली को दे दिया। नाचने गाने वाली ने इनाम के लालच में आके उस अमरफल को राजा बर्तरी को दे दिया। राजा ने अमरफल देखा तो दिमाग चकरा गया और सोचा, यू अमरफल तो उतने रानी पिंगला को दिया था, आड़े क्यों कराया। सुन हो जाए, दरबार में अलकारे के द्वारा रानी पिंगला को दरबार में बुलाया जाए और पूछा, रानी तन वो अमरफल खा लिया। रानी कहन लगी, मन तो सुधा नाकू खा लिया। राजा बर्तरी कहन लग्या, ले एक और खा ले। अमरफल देख के रानी जूठी पड़ जाए और बेहोश होके धरती में गिर जाए और वो पिंगला रोती रोती के कह है उस मौके की बात पासी नैयर और साथियों की आवाज में।
1: ओके बोल।

तरी आते ठीक के पड़ गए, सब तरी आते ठीक के पड़ गए। आज बालम रंग रागे मेरे भरी सभा में, ओए उजागर जो पिछले जन्म के दाद मेरे, देखे कुछ करनी कुछ कर मैं गति थी पूरब ले के बाद मेरे।

के बेशर्मी का तीर मेरे आए बेशर्मी का तीर मेरे आजे परले पारे ले तेरे गया बोल्या भी ना जाता ही साजो मट

मरूंगी कुएं में डूब के, कहत मरूंगी कुएं में डूब के, ना जहर के कल से पियो इज्जत साथे बिगड़ जाते वो के जिए में जिए हो देखे आज त्यागे भूप भरत ही ना भी मत ना लियो ओ तेरी औरत है जो दिले की लाख उलाने वाली।

उस टेम की जिस टेम फूलशंग की बावज ने फूलशंग मताना मारा ऐसा है तो नौटंकी ने ब्याह लिया और कहने लगी मेरी बस की कोना तेरी रोज रोज की खुशामद करनी। बहुत कहा सुनी हुई फूलशंग अपने भाई भूप सिंह के पास चला गया और देख के बड़े भाई ने आख्या में पानी आ गया। भूप सिंह बोला रे लाडले भाई के बात के बनी। इतनी बात सुन के फूल सिंह अपने भाई भूप सिंह को क्या कहता है उस मौके की बात पाले रामदैया और साथियों की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे हरियाणवी लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी हिसार से। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुप्रभात।

श्रोताओं को याद दिलाते चलें कि आज कार्यक्रम हेलो हिसार, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होनी है सुबह 11 बजे। तो जो श्रोता अपना मनपसंद गीत सुनना चाहते हैं हमारे आकाशवाणी हिसार से, आप हमें फोन कर सकते हैं 0162-97-28-827। एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, 0162-297-827।

0: क्या आप परेशान हैं?
1: मैं परेशान, परेशान, परेशान, परेशान।
2: क्या आप खुश हैं?
3: आज मैं ऊपर।
0: क्या आप डांस करना चाहते हैं?
2: क्या आपका दिल टूटा हुआ है?
4: दिल के टुकड़े टुकड़े करके।
0: या आप प्यार में हैं?
5: पहला पहला प्यार है।
2: क्या आप अपने पुराने दिनों में लौटना चाहते हैं?
6: कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन।
0: तो मैसेज कीजिए 9729253272 पर,
2: क्योंकि हमारे पास है हर गाना आपके मूड और सिचुएशन के हिसाब से।
0: कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे, हर मंगलवार और शुक्रवार रात 10 बजे
2: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।

0: नया बेहतर है, क्योंकि तुम
1: ही हो। किंतु पुराना बेहतरीन।
2: दिल चीज़ क्या है?
3: नया श्रेष्ठ है।
4: केसरिया तेरा।
1: किंतु पुराना श्रेष्ठतम।
3: नया उत्कृष्ट है।
4: तेरी गलियां, गलियां।
1: किंतु पुराना अनमोल।
3: नया अनूठा है।
1: किंतु पुराना अनुपम।

0: सुनिए 80 और 90 के दशक के बेहतरीन नगमे
1: कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड में
0: हर बुधवार शाम 5 बजे
1: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
2: अब जो ना
3: FM बैंड 102.3 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी हिसार से। श्रोताओं, अभी आप सुनेंगे अपना मनपसंद कार्यक्रम सुप्रभात।

शुरुआत करते हैं आज के पंचांग के साथ। आज 26 जून 2026 दिन शुक्रवार, शक संवत 1948, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष और द्वादशी तिथि है। विशाखा नक्षत्र तथा सिद्ध योग है। आज सूर्योदय लगभग प्रातः 5:25 पर हुआ और सूर्यास्त शाम 7:23 के लगभग होगा। आज का राहु काल प्रातः 10:36 से 12:20 तक रहेगा। श्रोताओं, आज 26 जून का दिन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य समाज को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करना, युवाओं को नशा मुक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित करना तथा नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी के विरुद्ध सामूहिक चेतना को सशक्त बनाना है।

इसी दिन यातना के शिकार व्यक्तियों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। यह दिवस मानवाधिकारों की रक्षा, मानवीय गरिमा के सम्मान और पीड़ितों के प्रति संवेदना तथा सहयोग की भावना को बल देता है।

हमारे देश भारत में वर्ष 2026 में आज यानी 26 जून को मुहर्रम मनाया जा रहा है, जो त्याग, सत्य और बलिदान की स्मृति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अवसर है।

हमारे देश भारत में वर्ष 2026 में आज यानी 26 जून को मुहर्रम मनाया जा रहा है, जो त्याग, सत्य और बलिदान की स्मृति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अवसर है।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात। श्रोताओं, गीता के इन दिव्य श्लोकों में जीवन के अनमोल सूत्र छिपे हैं। इन्हीं शिक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए अब प्रस्तुत है एक प्रेरक प्रसंग। एक बार एक गुरु अपने शिष्य के साथ नदी से लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें पानी से भरा एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े में पानी आधा भरा था। गुरु ने शिष्य से पूछा, तुम्हें इसमें क्या दिखाई देता है? शिष्य बोला, गुरुजी, घड़ा आधा खाली है। गुरु मुस्कुराए और बोले, मुझे तो यह आधा भरा दिखाई देता है। शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, गुरुजी, दोनों बातें तो एक ही हैं, फिर अंतर क्या है? गुरु ने समझाया, अंतर हमारी सोच का है। जो व्यक्ति कमी पर ध्यान देता है वह हमेशा दुखी रहता है। जो उपलब्धियों और अवसरों को देखता है वह हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है। उस दिन शिष्य ने सीखा कि जीवन की खुशियाँ परिस्थितियों में नहीं बल्कि हमारी सोच में छिपी है। श्रोताओं, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सकारात्मक दृष्टिकोण कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी सरल बना देता है। जो हमारे पास है उसके लिए आभार व्यक्त करें और जो नहीं है उसे पाने का प्रयास करें।

आज का विचार। हजारों मील का सफर एक कदम से शुरू होता है। ए जर्नी ऑफ 1000 miles बिगिंस विद ए सिंगल स्टेप। जी हाँ दोस्तों, कितनी अच्छी और कारगर बात है ना कि हम चाहे कुछ भी हासिल करना चाहें, किसी भी मुकाम पर पहुंचना चाहें, उसके लिए शुरुआत करनी होगी और यह शुरुआत हमारे एक पहले कदम से ही तो होती है। पहला कदम ही तो नींव बनता है दूसरे के लिए और आपके और हमारे लक्ष्य के लिए, इसलिए कदम बढ़ाना जरूरी है, आवश्यक है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। इंतजार कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था से हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। और महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में मैनचेस्टर में शेफाली वर्मा के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता और वित्तीय समावेशन के लिए एक दीर्घकालिक वैश्विक आवाज भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान महारानी मैक्सिमा ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से वित्तीय सेवाओं के साथ उनके अनुभवों और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित उनकी चुनौतियों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
3: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
5: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि आईएमएफ पश्चिम एशिया युद्ध विराम और होर्मुज जल मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रुपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
6: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रुपये होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रुपये होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत 6,000 रुपये होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रुपये और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रुपये है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए 5,000 रुपये का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
3: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-29 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता की शुरुआत करेगा। ये प्रतियोगिता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत इसे आयोजित किया जा रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 15 जुलाई तक भाग ले सकेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए

0: नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए विंडो खोल दी है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम 1975 में घोषित आपातकाल के दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। इस अवसर पर श्री शेखावत ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर आए संकट का उल्लेख किया।
1: 25 जून 1975 को जो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे वेदनापूर्ण दर्दनाक रात्रि थी, उस काल रात्रि को जब संविधान की आत्मा पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया गया, न केवल संविधान के मुख पर कालिक पोतने का काम हुआ, अभी तो संविधान की आत्मा नागरिकों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों के मौलिक अधिकार, उन सबको एक महत्वाकांक्षी शासक की अति महत्वाकांक्षा के चलते हुए स्थगित कर दिया गया।
0: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में किसानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान श्री सिंह कृषि क्षेत्रों का दौरा करेंगे, फसलों की स्थिति का जायजा लेंगे और किसानों से कृषि संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि भूकंप से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं।
2: वेनेजुएला में कल आए दो शक्तिशाली भूकंपों से चारों ओर तबाही का मंजर फैला हुआ है। मलबे में अभी भी 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। राजधानी कराकास में भूकंप में लगभग 3000 परिवार बेघर हुए हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की ओर से सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में यह भारत और वेनेजुएला के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशुराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के न्यू जर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट दौर में जगह बनाई है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 17वें ओवर में 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने प्रथम पृष्ठ पर सचित्र शीर्षक दिया है, वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, 10,000 लोगों के मरने की आशंका, अब तक 200 से ज्यादा शव बरामद। नवभारत टाइम्स की खबर है, वेनेजुएला में डबल भूकंप, पत्र लिखता है लोगों को भूकंप से कुछ ही सेकंड पहले एंड्रॉइड फोन पर चेतावनी मिली थी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर वेनेजुएला का दर्द बयां किया है, भूकंप ने न केवल वेनेजुएला में भारी तबाही मचाई है बल्कि वैज्ञानिकों और नगर नियोजकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया में जिन क्षेत्रों में तीव्र भूकंप की आशंका है वहां विशेष सावधानी रखने की जरूरत है, ऐसे इलाकों में ऊंची और कमजोर इमारतों से बचना चाहिए। श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर जनसत्ता के शब्द हैं, नकदी और कीमती सामान गिनने में शामिल 8 प्राथमिकी। दैनिक भास्कर ने पासपोर्ट नियम में संशोधन को सुर्खी बनाया है। पासपोर्ट के नियम बदले, 14 साल बाद बड़ी फीस, 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना ₹1,000 महंगा होगा। दैनिक जागरण की खबर है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, सरकार के दावे ने बढ़ाई एनआरसी की जरूरत, लोकसत्ता ने भी सरकार का वक्तव्य दिया है, पासपोर्ट विदेश यात्रा का दस्तावेज। देशबंधु के शब्द हैं, एनसीईआरटी की किताब में आपातकाल का अध्याय शामिल, लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौती के रूप में किया गया है वर्णन।
0: और अंत में मुख्य

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। ये धुरंधर फिल्म का गाना है।

0: और रोमियो फिल्म का गाना आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में। गुलजार की रचना थी, विशाल भारद्वाज का संगीत था।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है उन्होंने आकाशवाणी परभणी में, वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और

0: वहां पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
0: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
0: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर यह है कार्यक्रम चित्रलोक। हाईवे फिल्म का गाना है ज्योति नूरा और साथियों की आवाजें।

हाईवे फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। ज्योति नूरा और साथियों की आवाजों में इरशाद कामिल के बोल थे, एआर रहमान का संगीत था। चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने छोटे से ब्रेक के बाद।

0: रिवॉल्वर रानी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे रेखा भारद्वाज की आवाज में। पुनीत शर्मा के बोल थे, संजीव श्रीवास्तव का संगीत था। अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना भी काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविद भारती पर। दोस्तों विविद भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आज 26 जून है दोस्तों, एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि इंसानियत को हर हाल में जिंदा रखना है। आज पूरी दुनिया यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर यानी यातना के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन की शुरुआत इसलिए की थी ताकि दुनिया भर में उन लोगों की आवाज सुनी जा सके जिन्होंने किसी न किसी रूप में मानसिक या शारीरिक यातनाएं झेली हैं। ये दिन सिर्फ दर्द को याद करने का दिन नहीं बल्कि पीड़ितों को न्याय दिलाने और उनके घावों को भरने का संकल्प लेने का दिन भी है। दोस्तों एक सभ्य समाज में किसी भी इंसान को प्रताड़ित करने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए, कोई जगह नहीं होनी चाहिए। कानून और इंसानियत दोनों यही कहते हैं कि हर व्यक्ति को सम्मान से जीने का हक है। अगर हमारे आसपास किसी के साथ भी गलत हो रहा है, ज्यादती हो रही है तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए बल्कि उनकी ताकत बनना चाहिए। तो आइए विविध भारती की ओर से हम आपसे ये आह्वान कर रहे हैं कि हम सब अपने से वादा करें, खुद से वादा करें कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जहां नफरत की जगह केवल हमदर्दी हो, सम्मान हो और हो प्यार, और अपना एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का साथ बनाए रखेंगे। सुनिए ये गाना, कहीं ये साथ की बात तो नहीं कर रहा है। फिल्म है तमाशा, अलका याग्निक और अरिजीत सिंह की आवाजें, इरशाद कामिल के बोल, एआर रहमान का संगीत है।

तमाशा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे अलका याग्निक और अरिजीत सिंह की आवाजों में। इरशाद कामिल के बोल थे, एआर रहमान का संगीत था। चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने छोटे से ब्रेक के बाद।

0: सिंघम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल और अजय गोगावले की आवाजों में। स्वानंद किरकिरे के बोल थे, अजय अतुल का संगीत था।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध।

0: इसी मुद्दे पर वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बहुत अच्छा व्यंग बोल लेते हैं, ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ

दोस्तों विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। दोस्तों नशा केवल व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को खोखला कर देता है। ये एक ऐसी बेड़ी है जो व्यक्ति की उड़ान और उसके सपनों को छीन लेती है। अक्सर हम सुनते हैं कि लोग मस्ती या टेंशन दूर करने के लिए इसकी शुरुआत करते हैं, लेकिन ये कब एक जानलेवा लत बन जाता है पता ही नहीं चलता। आज का दिन उन लाखों परिवारों के नाम है जिन्होंने अपने को इस लत के कारण खोया है। लेकिन आज का दिन सिर्फ गम मनाने का नहीं बल्कि संकल्प लेने का भी है, खुद को बचाने का और अपने परिवार को सचेत रखने का संकल्प। जो लोग इस दलदल में फंस चुके हैं उनका हाथ थामकर उन्हें सही रास्ते पर लाने का दिन भी है। दोस्तों नशीली दवाओं की अवैध तस्करी और दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई में आपकी जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपको अपने आसपास कुछ भी संदिग्ध लगे या अगर आपको लगता है कि कोई अपना मदद के लिए पुकार रहा है तो खामोश न रहें, मदद के लिए आगे आएं। नशा नाश की जड़ है और हमें मिलकर इस जड़ को काटना है। तो चलिए आज के इस दिन हम वादा करते हैं कि हम न सिर्फ नशा मुक्त भारत का सपना देखेंगे बल्कि इसे पूरा करने के लिए अपनी छोटी छोटी कोशिश भी करेंगे। जिंदगी बहुत हसीन है दोस्तों, इसे किसी नशे की भेंट न चढ़ाएं, अपने हुनर को पहचाने, अपने सपनों को जिए और नशे को कहें ना। आज 26 जून है और इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 7 दिसंबर 1987 को स्थापित किया गया था। आज के दिन नशा मुक्ति के लिए और इसका उद्देश्य है नशा मुक्त समाज का निर्माण करना, इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। इंग्लिश विंग्लिश फिल्म का गाना सुनिए शिल्पा राव की आवाज में। स्वरंत किरकिरे के बोल हैं, अमित त्रिवेदी का संगीत है।

0: इंग्लिश विंग्लिश फिल्म का गाना था, शिल्पा राव की आवाज, स्वानंद किरकिरे के बोल, अमित त्रिवेदी का संगीत था। जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। यह है प्रोग्राम का आखिरी गाना।

एनिमल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में। गरिमा के बोल थे श्रेयस पुराणिक का संगीत था। इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कुमार साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई के साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: जिंदगी को गले लगाने की ये पुकार गुलजार साहब के लिखे एक गाने की है जो फिल्म सदमा से है, लेकिन यहाँ बातें गुलजार के बारे में नहीं, यहाँ बातें फिल्म सदमा के बारे में भी नहीं, बल्कि यहाँ बातें एक संगीतकार के बारे में जिसके नाम में आता है राजा।
1: राजा लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झुमलो झुमलो, आया है राजा
2: लोगो रे लोगो,
1: राजा के संग संग झुमलो झुमलो, शेरों का मैं हूँ शेर यारो, अरे कोई ना मुझसा दलेर प्यारो, शेरों का मैं हूँ
2: शेर यारो,
1: अरे कोई ना मुझसा
2: दलेर प्यारो,
1: के सच सच कहता मैं डट के रहता मैं, आया है राजा
2: लोगो रे लोगो,
1: राजा के संग संग
2: झुमलो झुमलो,
1: आया है राजा
2: लोगो रे लोगो,
1: राजा के संग संग
2: झुमलो झुमलो।
0: वो सही मायने में फिल्म म्यूजिक के राजा हैं। 1000 से ज्यादा फिल्मों में संगीत, 8500 से ज्यादा गाने और फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर्स की एक लंबी कतार जो सम्मान से उनके आगे सिर झुकाते हैं, उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसे संगीतकार की बातें जो न केवल एक म्यूजिक कंपोजर है बल्कि एक गीतकार है, एक ऑर्केस्ट्रेटर है, एक म्यूजिक कंडक्टर है और है एक म्यूजिक मैस्ट्रो जिसने भारत का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा किया है। आज बातें इलैया राजा की।
3: वो तो बना

इलैया राजा का जन्म 3 जून 1943 को हुआ था। मदुरई तमिलनाडु में एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है थेनी, इसके पन्नियापुरम नामक गांव में जन्मा था एक बालक। नाम रखा गया आर ज्ञान थेसिकन। हालांकि जब इलैया राजा ने अपनी स्कूल की पढ़ाई शुरू की तो उनके पिता रामासामी ने ज्ञान थेसिकन से बदलकर उनका नाम रख दिया राजैया। ये इसलिए क्योंकि गांव भर में इलैया एक बालक के रूप में बहुत लोकप्रिय थे और पूरे गांव के लोग उन्हें रासैया कहा करते थे। 14 की उम्र में इलैया राजा अपने बड़े भाई पावलार वरदराजन की एक संगीत टोली में शामिल हो गए। ये संगीत टोली गांव गांव शहर शहर घूमती और अपनी संगीत प्रस्तुतियां करती। यही वो संगीत यात्रा थी जहां इलैया राजा ने सबसे पहले कोई धुन बनाई और उसे लोगों के सामने प्रस्तुत किया।

जितनी ही राहें बदली 1968 में इलैयाराजा अपने गांव से चले आए मद्रास यानी आज का चेन्नई शहर। मकसद था संगीत सीखना। ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक

लंदन के एग्जाम में भी उन्होंने हिस्सा लिया। क्लासिकल गिटार का एग्जाम उन्होंने दिया और गोल्ड मेडल हासिल किया। मद्रास में शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा संघर्ष इलैयाराजा को करना पड़ा। उस दौरान दोनों भाइयों ने मिलकर कभी किसी नाटक में संगीत दे दिया, कभी मंच पर परफॉर्म करने लगे, कभी चर्च में कॉयर म्यूजिक में हिस्सेदारी कर ली, तो कभी कोई अलग अलग तरह के मशहूर हस्तियों के कार्यक्रमों में फिलर के रूप में इस्तेमाल हो गए। लेकिन आंखों में थे सुनहरे ख्वाब और संघर्ष का मादा था दिल में, तो डटे रहे। और इस तरह से इलैयाराजा की जगह बन गई जी के वेंकटेश की संगीत टोली में। यहां से इलैयाराजा के सीखने की और लगातार आगे बढ़ने की यात्रा शुरू हुई।

आगे चलकर इलैया राजा ने धनराज मास्टर नामक एक संगीतकार का शागिर्द बनना कबूल किया। यहां वो उनसे संगीत की बारीकियां सीखते रहे और यही वो हस्ती थी जिन्होंने इलैया राजा के नाम में आगे राजा जोड़ा। सन 1976 में फिल्म अन्नकिली में संगीत देने का मौका आया और इत्तेफाकन इलैया राजा बन गए संगीतकार। 1976 में अन्नकिली नामक फिल्म में जब उन्होंने संगीत दिया तो इस फिल्म का संगीत अचानक इतना लोकप्रिय हुआ कि तमिल सिनेमा में जैसे तूफान आ गया। इलैया राजा ने अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज की। सुनने वाले चकित रह गए कि ऐसे भी गाने बनाए जा सकते हैं। अचानक इलैया राजा की गिनती एक प्रतिभाशाली युवा संगीतकार के रूप में होने लगी। इलैया राजा की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जहां एक तरफ उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को जोड़ा, वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी संगीत की बारीकियों को अपने फिल्मी संगीत में अपनाया और एक अलग तरह का जादुई फ्यूजन तैयार किया।

बहरहाल अभी उनकी कुछ फिल्मों की बातें करते हैं। सन 1978 में उनकी फिल्म आई कजू हंदई, सन 1980 में आई मुडुपानी, इसी साल आई निजलगल, 1981 में नेत्रिकन नामक फिल्म आई और इसी बरस आई निजेंथई किलंथे, 1982 में कोजू कुवुथु नामक फिल्म आई। चूंकि मेरा ताल्लुक दक्षिण भारत की भाषाओं से नहीं है, इसलिए अगर उच्चारण संबंधी कोई दोष होता है तो हम दक्षिण भारत के श्रोताओं से क्षमा चाहते हैं। इलैयाराजा की जो बहुत महत्वपूर्ण फिल्में हैं उनमें शामिल है 1987 में आई फिल्म नायकन, जो उनकी 400वीं फिल्म थी, 1990 में आई फिल्म अंजलि। यहां महत्वपूर्ण ये है कि वो इलैयाराजा की 500वीं फिल्म थी। अब हिंदी फिल्मों की बात करें तो इलैयाराजा का हिंदी फिल्मों में आगमन हुआ कमल हासन के अभिनय वाली फिल्म सदमा के जरिए, जिसके निर्देशक थे बालू महेंद्रू। असल में ये फिल्म बालू महेंद्रू की तमिल फिल्म मुंदरम पिरई का हिंदी रीमेक थी।

0: दिया उसका नाम था कामाग्नि। उसके बाद राजसिप्पी की फिल्म महादेव में उन्हें संगीत देने का मौका मिला। सन 1996 में बालू महेंद्रू की फिल्म और एक प्रेम कहानी में उन्होंने संगीत दिया। वैसे आपको बता दें कि इलैयाराजा ने रामगोपाल वर्मा की फिल्म शिवा के हिंदी संस्करण में भी संगीत दिया है और कमल हासन की फिल्म हे राम में भी उनका संगीत है। एक और हिंदी फिल्म है उनके संगीत से सजी हुई जिसका नाम है मुंबई एक्सप्रेस।
1: बंदर की डुगडुगी है, क्या जोर से बजी है,

साल 2007 में जब आर बाल्की ने फिल्म चीनी कम बनाई तो उसके लिए संगीतकार के तौर पर उन्होंने चुना इलैया राजा को, और यहां से आर बाल्की और इलैया राजा का एसोसिएशन शुरू होता है।

आपको बता दें कि साल 2015 में जब इलैयाराजा ने अपनी 1000वीं फिल्म में संगीत दिया तो जाने माने संगीतकार एआर रहमान ने ट्विटर पर लिखा, डियर मेस्ट्रो इलैयाराजा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी 1000वीं फिल्म में क्वालिटी म्यूजिक दिया है। आप इसी तरह से काम करते रहिए और हमें इसी तरह से प्रेरणा देते रहिए।

चूंकि इलैयाराजा के संगीत की बातें हो रही हैं और बातें हिंदी फिल्मों की भी हो रही हैं, तो आपको बता दें कि आशा भोसले से इलैयाराजा ने कुल 53 गाने गवाए विभिन्न भाषाओं में, और लता मंगेशकर से केवल 2 गाने उन्होंने गवाए।

इलैयाराजा के जीवन के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं, और वो ये कि जब इलैयाराजा अपना संगीत सीख रहे थे तब उनके ऊपर जर्मनी के क्लासिक संगीतकार बाख की शैली का बहुत गहरा असर पड़ा था। आगे चलकर इलैयाराजा ने अपना पहला फ्यूजन एल्बम बनाया हाउ टू नेम इट। इसके बाद उनका एक और एल्बम आया है जो वेस्टर्न क्लासिकल फ्यूजन एल्बम है, और इसका नाम है नथिंग बट विंड।

0: यहाँ आपको इलैयाराजा के कुछ आध्यात्मिक एल्बम्स के बारे में भी बता दें। इस तरह का काम भी इलैयाराजा ने बहुत सारा किया है। गीतांजलि, राजविन, रामन्ना मलाई, इलैयाराजाविन, ये सब ऐसे एल्बम हैं जिनमें आध्यात्मिकता का रस है। इलैयाराजा का संगीत का ये सफर तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों तक फैला हुआ है। जाहिर है कि दुनिया के कोने कोने में इलैयाराजा के प्रशंसक मौजूद हैं। अगर हम ये कहें कि इलैयाराजा पर सम्मानों की और पुरस्कारों की बारिश होती रही है तो ये गलत नहीं होगा। साल 2010 में पद्म भूषण, साल 2018 में पद्म विभूषण, 5 नेशनल अवार्ड हैं। 1984 में तेलुगु फिल्म सागर संगमम के लिए, 1986 में सिंधु भैरवी के लिए, 1989 में रुद्रवीणा के लिए, 2009 में पजसी राजा के लिए और 2016 में थरई थपतई के लिए। ये 5 नेशनल अवार्ड्स हैं। इसके अलावा फिल्म फेयर अवार्ड्स, केरला स्टेट अवार्ड्स, स्क्रीन अवार्ड्स, नंदी अवार्ड्स, एक लंबी फहरिस्त है इलैयाराजा के जीते सम्मानों और पुरस्कारों की। बल्कि अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि पुरस्कार जब इलैयाराजा को मिलते हैं तो पुरस्कार सम्मानित होते हैं।
1: देर से आते हैं, तेवर दिखाते हैं, करते हैं पंचनामा। देर से आते हैं, तेवर दिखाते हैं, कर...

0: जोर पुलिस।
1: चूंकि इलैयाराजा तमिलनाडु के एक ग्रामीण इलाके में पले बढ़े, इसलिए तमिल लोक संगीत जैसे उनकी रगों में बहता है। संगीत सीखते समय उन पर जो असर पड़ा वो पड़ा बाख, हाइडन, मोजार्ट और बीथोवेन का, इसलिए वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक भी उनकी रगों में बहता है। और इसीलिए तमाम तरह की संगीत शैलियों को मिक्स करके जब वो संगीत बनाते हैं तो ये एक जादू सा रचता है।

राजा के निजी जीवन के बारे में आपको थोड़ी जानकारियां दे दें। इलैयाराजा का विवाह जीवा से हुआ, जिनसे उनकी तीन संतानें हैं, कार्तिक राजा, भावथरिणी और युवान शंकर राजा। इलैयाराजा के ये तीनों बच्चे फिल्म कंपोजर और गायक हैं। आपको बता दें कि इलैयाराजा को अपने हारमोनियम से बड़ा प्यार है और चाहे वो कॉन्सर्ट्स में हो या अपने स्टूडियो में गानों की धुनें बनाते रहें, वो इसी हारमोनियम का इस्तेमाल करते हैं। इलैयाराजा ये कहते हैं कि जब वो छोटे थे तब किसी भी अपने परिवार के सदस्य को, यहां तक कि अपने भाई को भी इस हारमोनियम को छूने नहीं देते थे। इस हारमोनियम में उनकी जान बसती है। इलैयाराजा का कहना है कि यह हारमोनियम जानता है कि ये उनके लिए बना है और इस हारमोनियम से ही उनके संगीत का जादू निकलता है। इलैयाराजा ने अब तक 1523 फिल्मों में 8600 गाने बनाए हैं। तकरीबन 9 भाषाओं की फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया है। पूरी दुनिया में इलैयाराजा 20,000 से ज्यादा कॉन्सर्ट कर चुके हैं। यहां इस बात का जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सन 1987 में आई फिल्म नायकन को टाइम मैगजीन ने दुनिया की 100 सबसे अच्छी फिल्मों में से एक माना था। इस फिल्म का संगीत इलैयाराजा का है और इसके गानों से लोगों को बड़ा प्यार है।

अब आपको बताते हैं मणिरत्नम और इलैयाराजा के लंबे साथ के बारे में। सन 1983 में इलैयाराजा ने सबसे पहले मणिरत्नम की किसी फिल्म में संगीत दिया, वो थी पल्लवी अनु पल्लवी। ये एक कन्नड़ फिल्म थी। ये वो दौर था जब फिल्मकार मणिरत्नम सिनेमा में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। सन 1984 में मोहनलाल के अभिनय वाली उनारू में संगीत दिया इलैयाराजा ने। निर्देशन मणिरत्नम का था और ये मणिरत्नम की दूसरी फिल्म थी। सन 1985 इलैयाराजा ने तमिल फिल्म पागल निलवू में संगीत दिया। ये वो फिल्म है जिसके जरिए मणिरत्नम ने तमिल सिनेमा में अपना कदम रखा था। 1985 में आई इदया कोविल, 1986 में आई मौन रागम, 1987 में नायकन आई जिसका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं, 1988 में आई अग्नि नटचित्रम, 1989 में आई गीतांजलि, 1990 में अंजलि आई और इस फिल्म ने

राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। सन 1991 में इस फिल्म को भारत की ओर से ऑस्कर पुरस्कार में भी भेजा गया था। इलैयाराजा और मणिरत्नम का साथ। सन 1991 में आई फिल्म थलपथी जो महाभारत के एक किरदार से प्रेरित थी।

जुलाई 1993 में इलैयाराजा ने वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक के अपने सबसे बड़े और पहले काम को रिकॉर्ड किया था। इसे उन्होंने सिंफनी नंबर 1 का नाम दिया था और इसे रिकॉर्ड किया गया था लंदन के प्रसिद्ध रॉयल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के साथ, और वो भी जाने माने कंडक्टर जॉन स्कॉट की निगरानी में। आपको बता दें कि रॉयल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा दुनिया के सबसे उत्कृष्ट पश्चिमी संगीत से जुड़े ऑर्केस्ट्रा में शामिल।

सन 2012 में संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इलैयाराजा को संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था। सन 2010 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सन 2018 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इलैयाराजा की उपलब्धियों की फहरिस्त बहुत लंबी है। सन 2012 के समर ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह में इलैयाराजा की फिल्म राम लक्ष्मण का एक गाना बजाया गया था। सही मायनों में इलैयाराजा एक लिविंग लेजेंड हैं। अपने काम के प्रति उनका जुनून, उनका समर्पण लाजवाब है। 9 भाषाओं में इतनी बड़ी तादाद में फिल्में करना और लगातार सक्रिय रहना और उत्कृष्ट काम करना उन्हें महान बनाता है।

0: संगीतकार इलैयाराजा का संगीत संसार लेकर आया था आज के फनकार। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है।

कार्यक्रम एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी हिसार से। आइए अब सुनते हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम नमस्ते हिसार।

एक नई आस और नए विश्वास के साथ बनाने आपके दिन को बेहतरीन और खास, हम आ गए हैं आकाशवाणी हिसार पर। कार्यक्रम है नमस्ते हिसार और इस कार्यक्रम में मैं हूं आपका दोस्त कुमार रोहित। आदाब, सलाम और नमस्कार। दोस्तों, जब जब आपसे रूबरू होने का मौका मिलता है और जब जब भी आपसे मुखातिब होता हूं, तो ऐसा लगता है जैसे अपने पुराने दोस्तों से मुलाकात कर रहे हैं। तो बताइए, कैसे हैं आप? कैसे हैं आपके मिजाज? कैसी चल रही है जिंदगी? और मुझे याद आता है निदा फाजली का एक शेर कि धूप में निकलो घटाओं में नहाकर देखो, धूप में निकलो घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटाकर देखो। फासला आंखों का धोखा भी हो सकता है, फासला आंखों का धोखा भी हो सकता है, वो मिले ना मिले हाथ बढ़ाकर दोस्त देखो। दोस्तों, नमस्ते हिसार में हम आपके साथ बने रहेंगे एक घंटे तक, जिसमें बहुत सारी आपसे बातें करनी है, खबरों की हलचल होगी, क्विज, शख्सियत और कुछ बेहद रोचक तथ्य हम आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन इस सफर की शुरुआत करते हैं एक बेहद सुरीले नगमे के साथ।

102.3 मेगाहर्ट्ज पर आप बने हुए हैं अपने मनपसंद कार्यक्रम नमस्ते हिसार में, और मैं आज आपके साथ हूं, आपका दोस्त और इस कार्यक्रम का होस्ट कुमार रोहित। जी हां दोस्तों, इस आनंद भरे गीत के बाद यही मैं कह सकता हूं कि आप लोगों से जितनी मोहब्बत है, जितना खुलूस और प्यार है, उसे अल्फाज में बांधना, उसे बयां करना बड़ा मुश्किल काम है, और हमारा मानना ये है कि आपका भी ख्याल यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, हम खबरों के लिए चलते हैं हमारे साथी डी कुमार के पास।

श्रोताओं, नमस्ते। हिसार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका आकाशवाणी मित्र डी कुमार। चलते हैं आज की कुछ खबरों पे। जिंदगी अनिश्चितताओं से भरी हुई है। आप जिंदगी को ऐसे जिए कि जैसे आज हमारा अंतिम दिन है, और सीखें तो ऐसे सीखें कि जैसे आप अनंत तक जीने वाले हैं। सबसे पहले सुर्खियों में वेनेजुएला में आए भूकंप से हुई तबाही के बारे में। वेनेजुएला में आया भूकंप 126 सालों में सबसे शक्तिशाली भूकंप है। इससे पहले सन 1900 में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था। भूकंप के चलते मुख्य हवाई अड्डा सिमोन बोलिवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को क्षतिग्रस्त होने के कारण बंद करना पड़ा। भूकंप का असर इतना ज्यादा था कि काराकास से 1700 किलोमीटर दूर ब्राजील के अमेजन तक में इमारतें खाली करवानी पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूकंप से तबाही पर दुख जताते हुए कहा कि भारत हर संभव मदद देने के लिए तैयार है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री मोदी ने कहा, भारत के लोगों की ओर से मैं वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के प्रति, खासकर उन परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। भारत इस मुश्किल समय में प्रभावित सभी लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है।

राजस्थान के लिए प्रस्तावित यमुना पाइपलाइन से हरियाणा को 280 क्यूसेक पानी देने का प्रस्ताव। राजस्थान के लिए प्रस्तावित यमुना पाइपलाइन परियोजना से हरियाणा को 280 क्यूसेक पानी उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इससे हिसार, आदमपुर, नलवा और बालसमंद क्षेत्रों की पेयजल एवं सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

सजेंगे मैदान, सवरेंगे खिलाड़ी, सरकारी स्कूलों में खेल क्रांति की तैयारी। जिले के 356 स्कूलों में बनेगी खेल टीम, चयनित खेल के अनुसार उपलब्ध करवाई जाएगी खेल सामग्री। शिक्षा विभाग ने 32 खेलों की सूची तैयार की है। प्रत्येक स्कूल अपनी उपलब्ध भूमि, संसाधनों और विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार इनमें से एक खेल का चयन करेगा। चयनित खेल के अनुरूप स्कूलों को खेल सामग्री और आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाए।

हिसार से अग्रोहा मेडिकल के बीच एसी इलेक्ट्रिक बसें शुरू। इस बस के शुरू होने से अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए आने वाले मरीजों, उनके परिजनों और प्रसिद्ध अग्रोहा धाम के दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को फायदा होगा। तय शेड्यूल के अनुसार इस रूट पर कुल 4 फेरे लगाए जाएंगे। ये बसें दिन में 4 बार हिसार से अग्रोहा मेडिकल जाएंगी और 4 बार वापस हिसार लौटेंगी।

एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम आकाशवाणी हिसार से नमस्ते हिसार, और इसमें मैं बना हुआ हूं आपका अपना दोस्त, आपका रेडियो साथी कुमार रोहित। जिस तरह से हमारा और आपका रिश्ता है वह अपने आप में बेजोड़ है, एकदम पक्का। अब उस सेगमेंट की शुरुआत करते हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। आपसे पूछ लेते हैं दो सवाल जिनका सही जवाब देकर आप सुन सकते हैं अपना मनपसंद गीत। तो नोट कीजिए हमारा पहला सवाल कि अभी हाल में भारतीय सरकार ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। मैं सवाल फिर से दोहरा रहा हूं कि अभी हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी को भारतीय सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा है, सम्मानित किया है। और दूसरा हमारा सवाल है कि हरियाणा के सूर्य कवि कौन है, किस कौन ऐसे शख्स हैं जिनको हरियाणा का सूर्य कवि कहा जाता है। इन दोनों सवालों का जवाब भेज दीजिए हमें, और साथ में भेज दीजिए अपनी पसंद के गीत। पसंद का एक भी गीत हो सकता है, दो भी भेज सकते हैं आप। और हमारा संपर्क सूत्र आपको ध्यान तो होगा ना, 97292-53272। फिर दोहरा रहा हूँ, 97292-53272। तो भेजते रहिए आपके अपने संदेश और जवाब। इस बीच सुनते हैं यह बेहतरीन गाना।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते हिसार। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। अब समय है एक खास व्यक्तित्व के बारे में जानने का। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्तित्व की जिन्होंने हरियाणा प्रदेश के विकास और उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए जानते हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल जी के जीवन के बारे में। चौधरी भजन लाल राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख राजनीतिक नेता थे जिनका संबंध हिसार जिले से था। उनका जन्म 6 अक्टूबर 1930 को पाकिस्तान के तत्कालीन बहावलपुर राज्य के कोरामली गांव में हुआ था। उनके पिता श्री खैराज राम किसान थे। भजन लाल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पश्चिमी पंजाब से प्राप्त की। विभाजन के बाद उनका परिवार अपने पैतृक गांव मोहम्मदपुर रोही लौट आया। उनकी राजनीतिक कर्म भूमि आदमपुर रही, जबकि उनका स्थायी निवास हिसार में था। भजन लाल ने अपने जीवन की शुरुआत एक छोटे किसान के रूप में की, फिर व्यवसाय किया और बाद में राजनीति में आकर एक बड़े नेता बने। 1963

से 1968 तक वे हिसार पंचायत समिति के अध्यक्ष रहे। 1968 में पहली बार आदमपुर विधानसभा क्षेत्र विधायक चुने गए। 1979 से 1986 तथा 1991 से 1996 तक दो बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। उनके नेतृत्व में हरियाणा विशेषकर हिसार का उल्लेखनीय विकास हुआ। मुख्यमंत्री बनने से पहले वे बंसीलाल और देवीलाल की सरकारों में कृषि, सहकारिता और श्रम मंत्री रहे। चौधरी जी विधायक तथा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। श्रोताओं, चौधरी भजनलाल का राजनीतिक सफर हमें जनसेवा, नेतृत्व और विकास के प्रति समर्पण की प्रेरणा देता है। श्रोताओं, बातों का सिलसिला आपके साथ यूं ही जारी रहेगा। सुन लेते हैं प्यारा सा एक नगमा।

श्रोताओं, हम बने हुए हैं आकाशवाणी हिसार और संगीतमय यात्रा जारी है। हमने आपसे दो सवाल पूछे थे, मैं एक बार फिर से दोहरा दूं कि अभी हाल में किस क्रिकेट खिलाड़ी को भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। दूसरा सवाल था कि हरियाणा का चर्चित और सूर्य कवि, हरियाणा का सूर्य कवि किसे कहा जाता है। आप हमें अपने सवालों के जवाब भेजते रहिए और हमें आपके जवाब मिल रहे हैं। हमारा संपर्क सूत्र एक बार फिर से नोट कीजिए, 97-292-53-272। फिर से दोहरा रहा हूँ, 97-292-53-272।

स्वस्थ जीवन शैली एक अच्छे जीवन की नींव है। आज हम स्वस्थ जीवन शैली पर चर्चा करेंगे। स्वस्थ जीवन शैली हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब है शारीरिक और मानसिक रूप से संतुलित, खुशहाल, ऊर्जावान जीवन जीना। इसमें सही खानपान, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और तनाव मुक्त रहना शामिल है, जो हमें गंभीर बीमारियों जैसे हृदय रोग से भी बचाता है। स्वस्थ जैली शैली के मुख्य स्तंभ हैं।

संतुलित आहार। अपनी थाली में हरी भरी सब्जियां, ताजे फल, साबुन, साबुत अनाज, होल ग्रेन्स और प्रोटीन को शामिल करें। चीनी, मैदा और अत्यधिक तेल वाले जंक फूड से बचें।

नियमित व्यायाम रेगुलर एक्सरसाइज। श्रोताओं, हमें शारीरिक रूप से सक्रिय रहना जरूरी है। हमें दिन में कम से कम 30 मिनट तेज कदमों से जरूर चलना चाहिए। पर्याप्त नींद, एडिक्वेट स्लीप। पर्याप्त नींद इंसान के शरीर के लिए हीलिंग यानी मानसिक रिकवरी के लिए हर रात 7 से 8 घंटे की गहरी और अच्छी नींद लेना अत्यंत आवश्यक है। हाइड्रेशन एंड हाइजीन। दिन भर में पर्याप्त मात्रा 2 से 3 लीटर पानी अवश्य पिएं। बाहर आने के बाद और घर में खाना खाने से पहले हाथों को साबुन या हैंडवॉश से अच्छी तरह धोएं।

तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मानसिक शांति के लिए मेडिटेशन, गहरी सांस लें, प्राणायाम करें। अपने किसी पसंदीदा शौक, हॉबी के लिए हर दिन कम से कम 15 मिनट का समय निकालें।

नशे से दूरी। धूम्रपान, तंबाकू, शराब जैसे हानिकारक पदार्थों से बचें, क्योंकि ये हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं।

तो श्रोताओं, स्वस्थ रहें, अच्छी संगति बनाएं, गलत आदतों से बचें, गहरी नींद लें। अच्छी संगति बहुत जरूरी है, इसीलिए कहते हैं ना दोस्तों, एक अच्छा मित्र एक पूरी पुस्तकालय के समान है, और एक पुस्तकालय आपको भिन्न भिन्न क्षेत्रों में महारथी बना सकता है, सफल होने के ढेरों बंद तालों की चाबी खोल सकता है।

0: हिंदुस्तान जमीन है सितारों की।
1: अगर तुम्हारी आरजू एक कमीज है तो सारी जिंदगी इसी तरह जब्त करना होगा।
2: एक से बढ़कर एक उम्दा फनकारों की।
0: कोई साहित्य में सर्वश्रेष्ठ है?
3: न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता।
2: तो कोई विज्ञान में अद्वितीय है?
4: Will you be remembered as a great scientist, said Thomas Alva Edison।
0: कोई कला में उत्कृष्ट है?
2: तो कोई संगीत का शिरोमणि।
0: किंतु कोई है जो इन सब को ले आया है आपके लिए, आपके घर में, आपके बेहद करीब।
2: कार्यक्रम एक शख्सियत,
0: हर सोमवार शाम 5 बजे
2: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
5: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 102.3 MHz पर आकाशवाणी।

वाणी हिसार पर अपना मनपसंद कार्यक्रम नमस्ते हिसार। हमने आपसे दो सवाल पूछे थे। पहला सवाल था कि भारत सरकार ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया है, और सही जवाब है रोहित गुरुनाथ शर्मा। जी हां, हमारे पुराने कैप्टन रोहित शर्मा। दूसरा हमारा सवाल था कि हरियाणा के सूर्य कवि कौन है। सही जवाब है पंडित लक्ष्मी चंद। हरियाणा के सूर्य कवि पंडित लक्ष्मी चंद, जिन्होंने ऐसा लिखा जो आज भी हमें प्रेरणा दे रहा है। बहुत से श्रोताओं ने सही जवाब भेजे हैं, परंतु सबसे पहले उत्तर भेजने वाले हैं गांव नलोई, तहसील सिवानी मंडी और जिला हिसार से हमारे श्रोता सज्जन जांगड़ा, राजबाला, कार्तिक और वेदांश। आइए उनकी पसंद का ये गीत सुनते हैं हम सब।

0: बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: बढ़ता चल बढ़ता चल तुम्हें प्यारे लाखों में तू बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: रुकना नहीं तुझ रुकना नहीं घबरा न कहीं तेरी है जमी तू बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: तुझे रुकना नहीं तुझ रुकना

0: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
1: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
0: क्या ये जांच उपलब्ध है?
2: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
3: याद रखे, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुँचने से रोका जा सकता है।
2: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
3: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
4: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: बदलो बदलो आदत बदलो।
6: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
5: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्ते हिसार। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 102.3 MHz पर। कैसा लगा आपको ये कार्यक्रम? आपकी प्रतिक्रियाएं अपेक्षित हैं। हमारा नंबर आप जानते ही हैं, 9729253272। अब दीजिए इजाजत, सुनते हैं अगला कार्यक्रम, NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। आइए सुनते हैं।

0: सबदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूं आपका मित्र अजीत। आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत विचार से, जिस विचार को हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं, हम हर आने वाले दिन को आज के दिन से बेहतर बना सकते हैं।

0: सकारात्मक रवैया चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है नगर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू, गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल, ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इन संदेशों के लिए। अब एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनेक उन गुफाओं के बारे में जो अपने आप में अनूठी हैं, प्रकृति का चमत्कार हैं। ये भारत की सबसे पुरानी लंबी गुफाओं में से एक मानी जाती है। जी हाँ श्रोताओं, इन गुफाओं को प्रकृति ने बनाया है। आज हम चलेंगे भारत के मेघालय में गारो हिल्स के रमणीय वातावरण में स्थित सिजू गुफाओं की ओर, जो प्रकृति की कलात्मकता और भूवैज्ञानिक चमत्कारों का अद्भुत उदाहरण है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि मेघालय राज्य में स्थित ये गुफाएं अपनी रोचक बनावट और विशाल चट्टानी कक्षों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन कक्षों को एयरक्राफ्ट हैंगर भी कहते हैं। चूना पत्थर के ये हॉल नुमा कक्ष देखने में एयरक्राफ्ट हैंगर की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्रकृति प्रेमियों को बहुत आकर्षित करते हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं में विविध प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियां और जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये गुफाएं लगभग 40 करोड़ साल पुरानी हैं। इन गुफाओं में वैज्ञानिकों को कई विलुप्त जीव प्रजातियों के जीवाश्म भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि आज से लाखों साल पहले का जीव जगत कैसा था। एक और रोचक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि इन गुफाओं को बैट केव्स या चमगादड़ों की गुफाएं भी कहते हैं, क्योंकि यहां घोर अंधकार रहता है और इसके कारण हजारों की संख्या में यहां पर चमगादड़ मिलते हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं अंधेरे नम वातावरण के अनुकूल ढल चुकी अनूठी प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के चमगादड़ और गुफाओं में रहने वाले कीड़े भी शामिल हैं। लाखों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी घोर अंधकार में रहने के कारण यहां के बहुत से जीवों की आंखें अभी तक अविकसित हैं। सिजू गांव के पास स्थित होने के कारण ये गुफाएं सिजू गुफाएं कहलाती हैं, जो एक विशाल गुफा प्रणाली का हिस्सा हैं। ये गारो पहाड़ियों में गहराई तक फैली हुई हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं के मुख्य आकर्षणों में टूथ पैसेज विशेष रूप से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं इसका नाम टूथ पैसेज क्यों पड़ा। इसका नाम टूथ पैसेज इसलिए पड़ा कि यहाँ चट्टानों की बनावट ऐसी है कि वे मनुष्य के दांतों की श्रृंखला जैसी दिखाई पड़ती हैं। एक और अनूठी बात आपसे साझा करना चाहते हैं और वो ये है कि यहाँ का स्थानीय गारो जनजातीय समुदाय इन गुफाओं को अलौकिक शक्तियों का निवास स्थान मानता है और समय समय पर इन गुफाओं में आकर अपने पूर्वजों के प्रति अनुष्ठान भी करता है। समृद्ध जैव विविधता के कारण ये स्थान पक्षी और जीव विज्ञानियों के लिए एक आदर्श स्थान है, क्योंकि यहां उन्हें गुफा में रहने वाले दुर्लभ जीवों का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। गुफा के अंदर टपकते पानी की गूंज और कभी कभार चमगादड़ों के पंखों की फड़फड़ाहट एक अलौकिक वातावरण का निर्माण करती है। यही कारण है कि सिजू गुफाओं को स्थानीय गारो भाषा में डोवा कोल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है चमगादड़ों का घर। इन गुफाओं की एक विशेषता है और वो ये है कि अन्य कुछ गुफाओं की तरह इसकी खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की। स्थानीय जनजाति के लोग इसे हजारों वर्षों से जानते आए हैं। वैज्ञानिक अन्वेषण बाद में हुए, तब कहीं जाकर इसकी विचित्रता का पता दुनिया को चला। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है स्टीफन हॉकिंग। इस कार्यक्रम में प्रख्यात भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण खोजों के बारे में जानकारी दी गई है।
1: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरिपाइये मन ही की प्रतीत।
2: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय

0: केवल मन के भाव हैं।
1: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
0: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
1: ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
0: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
1: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरिटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
0: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
2: Stephen, happy birthday to you!
3: Happy birthday to you, Stephen!
4: How are you? Happy birthday, Stephen! Thank you, Thomas.
5: Congratulations!
4: Thank you, John. Thank you so very much. Hi, yes. Martin. How are you?
2: Oh, fine.
4: Thanks for coming in. Please come in. Please.
3: Oh, yes, sure. Yes. Why not?
2: Come. Yeah. Hey.
3: Come.
2: John, please come here.
3: Oh, sure. Yeah.

0: जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी
1: Oh

0: अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
2: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
3: सब कुछ ठीक तो है ना?
2: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
3: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
2: जी हाँ, पर इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
3: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
2: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता।

0: आता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
1: नहीं नहीं,
0: देखिए आप धीरज रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।
1: ओह गॉड, ओह गॉड।

0: लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा,
2: मैं जीना चाहता हूं, तो 2 साल नहीं, 20 साल भी नहीं, पूरे 50 साल और जीऊंगा।
1: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हां में हां मिला।

0: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
1: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक मन में होती है।
2: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थीं। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुश दिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुईं।
0: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुईं। पचासी में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
2: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
0: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
2: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
3: प्रोफेसर डेनिस
4: जी,
3: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
4: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
3: ओह।
4: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
3: ग्रेट, धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
4: जी।
3: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
4: तो लीजिए, सुनिए।
5: टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म्ड द आउटलुक फॉर द डिसेबल्ड। पीपल लाइक मी कैन नाउ मूव अराउंड इंडिपेंडेंटली एंड दे कैन कम्युनिकेट।

0: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की, जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
1: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
0: उनके सभी शोधों की ये विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
1: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
2: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
0: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
1: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
3: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
0: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
4: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
1: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
5: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग न होने दें।
0: चौदह मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
1: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहाँ स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
0: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग।

0: और आइए इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम आग का गोला। इस पहली नुमा कार्यक्रम में सूर्य और सौर मंडल के बारे में मनोरंजक जानकारी दी गई है।
1: चलो बच्चों आ जाओ, पहली टाइम, आ जाओ आ जाओ, सब लोग आ जाओ। तो अब बिना देर करे शुरू करें पहली। गुड़िया गौरव सब तैयार? वेरी गुड। तो ठीक है, ध्यान से सुनो आज की पहेली। मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ।
2: आग का गोला?
1: हाँ, मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ। दूजे काटे चक्कर मेरे लगे मैं चलता जाता हूँ। सर्दी गर्मी बनती मुझसे, मैं दिन रात बनाता हूँ। दूं प्रकाश पर नहीं हूँ दीपक, बोलो क्या कहलाता हूँ?
3: सूरज।
1: ओ सूरज, वाह एकदम ठीक भाई, तुम सब लोग तो बहुत होशियार हो।
4: बहुत आसान पूछते हो।
1: ओफो क्या करूं, मुझे मुश्किल वाली आती ही नहीं है।
4: अगली बार में बहुत मुश्किल।
1: हाँ मैंने सोचा तो था, लेकिन क्या करूं, मैंने अपना पिटारा खोला पहेलियों का, उसमें से एक पहेली देखी फिर दूसरी देखी, कोई मुश्किल वाली मिली नहीं मुझे। मुश्किल वाली पहेलियां तुम्हारे पास होती है ना?
3: हाँ।
1: कितनी भी मुश्किल पहेली ले आऊंगी, तुम सब तो जल्दी से जवाब बता ही दोगे मुझे, है ना?
4: मुझे पता है सूरज आग का गोला होता है।
1: बिल्कुल ठीक, सूरज आग का गोला होता है।
5: वो तारा होता है।
1: हाँ ये भी बिल्कुल ठीक।
6: वो रात और दिन भी बनाता है।
1: एकदम सही एकदम सही।
5: हमें धूप भी देता है।
1: बिल्कुल धूप भी देता है, सर्दियों में तो धूप अच्छी लगती है।
4: धूप से इतना अच्छी बात भी होती है।
1: हाँ हमें क्या मिलता है पता है उससे?
4: विटामिन डी।
1: वेरी गुड, बहुत समझदार हो तुम तो, विटामिन डी मिलता है। अरे तुम्हें पता है, तुम बहुत अच्छे, शाबाश बहुत अच्छे।
4: अगर सूरज की रोशनी नहीं होती तो हमारा बिल नहीं बचता।
1: हाँ हाँ बिल्कुल।
4: पेड़ों को खाना भी देता है।
1: बिल्कुल एकदम ठीक कहा, एकदम ठीक कहा। इतने होशियार बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे।
4: धीरे धीरे रात घूमते जब भी सुबह रात होती जाती है।
1: हाँ बिल्कुल, ये जो हमारा सौर मंडल है ना, इसके ग्रह सूरज के चक्कर काटते हैं। और लगता क्या है, जैसे सूरज चलता है पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना?
4: हाँ।
6: जब तो सूरज सुबह पूर्व में आता है।
1: हाँ हमें ऐसा लगता है ना कि सूरज चल रहा है धरती के चारों ओर। हाँ। इसलिए दिन और रात हो रहे, लेकिन असल बात क्या है, धरती सूरज के चक्कर काट रही है।
4: मौसी जब मैं मम्मी के साथ घूमने जाती हूँ, जब मुझे लगता है चंदा मेरे साथ चल रहा है।
1: हाय हाय क्या बात है, चंदा मामा तुम्हारे साथ चल रहा है। और कभी कभी जब हम ट्रेन से बाहर देखते हैं चलती हुई ट्रेन से, तो लगता है ना पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। लगता है ना
4: वो तेज चलती है, तो ऐसा लगता है वो भी तेज चल रही है।
5: और जब हम लोग चलते हैं तो हमें लगता है कि हमारा सूरज भी हमारे साथ साथ चल रहा है
1: ना।
5: गर्मी में तो मुझे सूरज बहुत गंदा लगता है।
1: हाँ और सर्दियों में अच्छा लगता। तो बच्चों सूरज नहीं चलता है ना, वो पृथ्वी के घूमने के कारण हमें चलता दिखाई देता है। जैसे जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम ट्रेन में से देखते हैं तो हमें पेड़ चलते हुए नजर आते हैं, है ना?
4: मौसी वो बहुत बड़ा भी होता है।
1: बहुत बड़ा होता है
5: पर हमें छोटा लगता है आसमान।
1: हम क्योंकि कहीं
4: दूर होता है इसलिए,
1: हम बहुत दूर है ना सूरज से, इसलिए हमें लगता है ऊपर है। और कभी कभी मन करता है कि शायद इसको छू के देखें।
4: हमें सबसे छोटे इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत दूर है।
1: हाँ
5: वो चांद से भी ऊपर होते हैं।
1: अरे वाह भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता था। अच्छा एक बात और, धरती का जो भाग सूरज के पास होता है वहाँ गर्मी होती है, और जो दूर वहाँ
3: सर्दी।
1: ओह ऐसी वाली सर्दी ना।
4: हाँ।
1: अच्छी लगती है सर्दी।
4: हाँ, पर सर्दी में ठंड बहुत लगती है।
1: हाँ शुक्र है गर्मी में नहीं लगती
5: नहीं
1: है। सूरज आग का गोला लेकिन,
3: सूरज आग का गोला लेकिन
1: फिर भी जीवन दाता है,
3: फिर भी जीवन दाता है।
1: धरती काटे चक्कर इसके,
3: धरती काटे चक्कर इसके,
1: लगे ये चलता जाता है।

0: सर्दी गर्मी बनते इससे,
1: सर्दी गर्मी बनते इससे,
0: ये दिन रात बनाता है,
1: ये दिन रात बनाता है,
0: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक,
1: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक,
0: सूरज ये
1: कहलाता है।
0: शाबाश, सूरज ये कहलाता है, सूरज ये कहलाता है। चलो अब अगली बार के लिए अगली पहेली लेकर मैं फिर आऊंगी।
2: मुझे एक और पहेली आज ही बता दो।
0: आज नहीं, अब मुझे देर हो रही है। ठीक है,
3: जल्दी आना मौसी।
0: बिल्कुल जल्दी आऊंगी बेटा।
2: हमें देर की तो फिर हम मुश्किल पहेली पूछ लेंगे आपसे।
0: मैं तो डर रही हूँ भाई, मैं कल आऊँ की नहीं आऊँ।
2: वो भी दस पूछेंगे,
0: दस सब दस पहेलियाँ। अच्छा चलो, मैं भी फिर तैयारी करके आऊंगी ना।
2: मौसी
0: डर जाती
2: है। और आपके कोई मिला के 70 हो जाएंगे।
0: 70 हो जाएंगे? वो 10 से एकदम 70
3: नहीं, 80 हो जाएंगे,
0: फिर 100 हो जाएंगे, फिर 200। ओके, इससे पहले कि ये 500 तक पहुँचे मैं जा रही हूँ। टाटा, बाय बाय।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग का गोला, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: श्रोताओं, आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का भाग 1315 FM बैंड 102.3 MHz पर। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती के प्रसारण।
6: पंकज उदास के स्वर में आपने यह गजल सुनी है।

संभाले जलते तवे पर, जलते तवे पर झुलस गया पानी।

0: चंदनदास की आवाज में ये निदा फाजली का कलाम था। विविध भारती पर रंग तरंग।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रौबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, आप वही करते रहोगे।
0: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम रंग तरंग। हमें खेद है कि आखिरी गाना आप ठीक से नहीं सुन पाए। एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है उन्होंने आकाशवाणी परभणी में, वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर कार्ल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम 2026 में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। अमरीका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के विदेश मंत्री जेकब हलबर्ग ने कहा कि AI अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने AI युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S. कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक हुई। गृह मंत्रालय ने बताया कि मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो NCB द्वारा आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि देश में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा हो रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थ के खिलाफ लड़ाई में लगे लोगों के प्रयासों की सराहना की है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारत ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग के वैश्विक चुनौती के खिलाफ सबसे मजबूत लड़ाई लड़ी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों के गिरोहों को खत्म कर दिया गया है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक LPG उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू LPG की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं।
1: LPG की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक LPG की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली LPG आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने PNG कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिए निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, यादों की महफिल।

आंखें फाड़े दुनिया देखे आज ये तमाशा।

शैलेंद्र के बोल थे एसडी बर्मन की तर्ज, फिल्म का नाम गाइड। यादों की महफिल विविध भारती से। अगला गाना आनंद बख्शी की आवाज में, उन्हीं की रचना है, फिल्म का नाम बालिका वधू।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं यादों की महफिल। अशोक भोसले, दिलराज कौर और साथियों की आवाजें। गुलशन बावरा, राहुल देव बर्मन, सत्य पे सत्ता।

आनंद बख्शी के बोल थे रेशमा की आवाज, फिल्म का नाम था हीरो। अमिताभ बच्चन की आवाज शिवहरी की तरह से, फिल्म का नाम सिलसिला।

इसी के साथ अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम खत्म होता है। ध्वनि तरंगों की ताल पर आप विविध भारती के संग हैं। थोड़ी ही देर में सुनिए सुरीला सफर।

0: जैसे कि आप जानते हैं कि सुरीला सफर कार्यक्रम में हम एक इबारत, एक टेक्स्ट पोस्ट करते हैं और वो टेक्स्ट कार्यक्रम के काफी पहले पोस्ट कर दी जाती है, आज भी कर दी गई है। तो आज की इबारत आपको बता दें, मदरा की गागरी में ढेर सारा पानी, मन को रंगीला करे बारिश की कहानी, इन हवाओं में चलो उड़ चले कहीं, ना आसमां का पता हो ना दिखे जमीं, ऐसे मौसम में जाने क्या क्या याद आए, कभी मन मुस्कुराए कभी आंख भर जाए, दिन में एक बजे जब मिलेंगे हम, गीतों का हाथ पकड़कर साथ चलेंगे हम। भाई, इस टेक्स्ट को पढ़कर बहुत सारे श्रोताओं के रिएक्शंस हमारे पास आ गए हैं और इन तमाम रिएक्शंस को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और कार्यक्रम में शामिल करने की कोशिश भी करेंगे। तो एक दूसरे के साथ इस कार्यक्रम का सफर हमें आगे तय करना है। एक श्रोता है जिन्होंने कविता का जवाब कविता से दिया है। वो लिखते हैं, इबारत की इजाद वाले स्वयं पधारे हैं, आज सफरे कारवां के भाग्य न्यारे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोता हैं जो लिख रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती के सुरीला सफर में गानों की बौछार होने लगी है, जो बारिश की बूंदों की तरह टिप टिप कानों में एक मधुर आवाज घोल रही है। इसके अलावा कुछ और श्रोताओं के कमेंट। एक श्रोता है जिनका अंदाजा है कि आज तो गागरी वाला मशहूर गाना बजेगा। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि और कोई गीत हो ना हो लेकिन ये गाना जरूर होना चाहिए कि रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, याद आई किसी से वो पहली मुलाकात, तूने और रंगीले कैसा जादू किया, फिर से आई यो बदरा विदेशी और जब जब बाहर आई। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आज फिर बारिश की कहानी में पानी, कैसा है आपका रंग जिंदगी का शोर, बारिश के तारों पर आई बारिश, याद है वो कागज की नाव वो बारिश का पानी। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने बाकायदा प्रॉपर लिस्ट भेजी है, यानी इस इबारत में जितने शब्द हैं उन शब्दों पर गाने, और कमाल की बात यह है कि ज्यादातर गाने मैच कर रहे हैं। जो शब्द इन्होंने चुने हैं, बदरा, गागरी, पानी, मन, रंगी।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती से अनुप्रसारित कार्यक्रम। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रूपए शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे। पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रूपए होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रूपए होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए यह लागत 6,000 रूपए होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रूपए और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रूपए है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए 5,000 रूपए का शुल्क देना होगा।

वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6000 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर

0: वर्षों के रोडमैप एवं कार्य योजना की समीक्षा की। बैठक में उच्च शिक्षा को अधिक आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण, रोजगार उन्मुख और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के लिए चल रही योजनाओं, बजट घोषणाओं तथा मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। अंबाला शहर में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी एवं एलिम्को के संयुक्त तत्वावधान में दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष मूल्यांकन एवं पंजीकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लेकर विभिन्न सहायक उपकरणों के लिए अपना पंजीकरण कराया। एलिम्को के प्रतिनिधि डॉ. मोहित ने बताया कि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन कार्यरत सार्वजनिक उपक्रम एलिम्को द्वारा एडीपी योजना और राष्ट्रीय व्योश्री योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को निशुल्क सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
1: एडिट स्कीम के तहत जितने भी दिव्यांगजन है उनको ट्राईसाइकिल, बैटरी वाली ट्राईसाइकिल और क्रचेस वगैरह दे रहे हैं। आर्टिफिशियल ऑन द स्पॉट असेसमेंट कर रहे हैं। दिव्यांगजन के साथ साथ सीनियर सिटीजन को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। 60 साल से जो ऊपर है उनको हम कानों की मशीन, खड़ी, कमर की बेल्ट, उठने की बेल्ट, व्हील चेयर, कुशन वगैरह हम प्रयोग कॉस्ट दे रहे हैं। हम 20 से 25 लाख का सामान राष्ट्रीय योजना के तहत देंगे।
0: उन्होंने बताया कि इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना तथा उनके जीवन को अधिक सुगम और सम्मानजनक बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। आकाशवाणी हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम का प्रसारण करेगी। कैथल में आज सुबह पुलिस और बावरिया गिरोह के दो कुख्यात बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुंडरी क्षेत्र के गांव जाम्बा सिकंदरखेड़ी मार्ग पर हुई इस मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। आइए अब सुनते हैं विविध भारती आकाशवाणी मुंबई के कार्यक्रमों को।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। आइए अब सुनते हैं विविध भारती आकाशवाणी मुंबई के कार्यक्रमों को।

कुछ और श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि छुट्टियों के बाद नानी के घर से वापस आते समय पक्का बारिश होती थी, बस या ट्रेन से देखते थे, बहुत सुंदर दृश्य, पेड़ पौधे, धान रोपते किसान, बहुत सुंदर लगता था। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं, बचपन में हम 12 सदस्यों का परिवार, पैसेंजर ट्रेन का लंबा सफर, बारिश में खिड़की के पास बैठने नहीं दिया जाता था क्योंकि उस समय खिड़कियों में कांच नहीं हुआ करते थे, टीन वाला शटर डाल दिया जाता था। एक श्रोता और हैं जो लिखते हैं कि कुछ दिन पहले दिल्ली गए थे, बारिश में भीग कर ट्रेन पकड़ी और टाइम से पहुंचे तब मिली। इसके अलावा एक और श्रोता है, उन्होंने भी इसी तरह से बारिश के एक सफर की याद की है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि रेखा और विनोद मेहरा पर फिल्माएगा ये गाना बहुत ही बढ़िया है। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने लखनऊ में पतंगबाजी को याद किया है और वो ये लिख रहे हैं कि जब मैं पतंग उड़ाती थी तो लड़की होने की वजह से वो लड़का मुझे डराता था, मैंने उससे पेंच लड़ाया और पता नहीं कैसे मैंने उसकी पतंग काट दी, फिर उसने भैया से शिकायत की। ये तमाम यादें देखिए, पतंग के बहाने कितने सारे श्रोताओं की यादें ताजा हो गई। अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं।

भाई ये गाना खत्म हुआ और कार्यक्रम के आखिरी मकाम तक हम आ चुके हैं। हमारे एक श्रोता का कमेंट आया जिसमें उन्होंने एक सुंदर कविता लिखी है, फटाफट पढ़ देते हैं। रिमझिम बूंदों का खिड़की को खटखटाना, लगता है आया है गुजरा हुआ जमाना, कागज की कश्तियों का वो दौर पुराना, छत से वो गिरते हुए पानी को चुराना, उस ऊंधी सी मिट्टी की खुशबू का आना, बचपन की वो यादें फिर से बुलाएं, कभी मन मुस्काए कभी आंख भर जाए, खिड़की पे बैठकर चाय का प्याला, यादों ने फिर कोई किस्सा निकाला, भीगा है मंजर ये दिल भी है गीला, मौसम ने पहना है ये रंग सुरीला। सुंदर कविता है और आप सभी ने जिस तरह की सुंदर यादें बांटी हैं, कुछ बारिश वाले रेल के सफर की यादें हैं जो कार्यक्रम में शामिल हम भले नहीं कर पाए हों, लेकिन हम इन सभी यादों को आराम से बैठकर पढ़ेंगे और आप सभी के की इन यादों के साथ एक पुराने जमाने का लुत्फ उठाने की कोशिश करेंगे। आपने इस कार्यक्रम में हमारा साथ दिया और इतने सारे कमेंट्स के बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 34वीं कड़ी।

बारिसाल जैसी घटनाएं बंगाल में बार बार घटने लगीं। वंदे मातरम का नारा लगाकर अंग्रेजों का विरोध करना आम लोगों की नजर में एक रोजमर्रा की बात बन गई। यह विरोध अब और अधिक संगठित रूप से होने लगा। बंगाल में ऐसी घटनाएं जगह जगह होने लगी। पुलिस का डर ही नहीं बचा। यह लहर मजदूर वर्ग में भी फैल

0: कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन के लिए भगिनी निवेदिता कार्यरत थीं। सुप्रसिद्ध तमिल कवि सुब्रमण्य भारती इस अधिवेशन में पत्रकार के रूप में उपस्थित थे। भगिनी निवेदिता के साथ हुई चर्चा के कारण सुब्रमण्य भारती के लेखन और विचारों को एक दिशा मिली। सुब्रमण्य भारती ने उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु माना था।
1: हिंदुस्तान मतलब जंजीरों से जकड़ी हुई दुखी माँ है, ऐसा भगिनी निवेदिता कहा करती थी। सुब्रमण्यम भारती पर भगिनी निवेदिता के शब्दों का गहरा प्रभाव पड़ा।

0: वंदे मातरम शब्दों का उपयोग करते हुए एक ओर उन्होंने भारत के वैभव, इतिहास, संस्कृति का गौरव किया, तो दूसरी ओर जातिवाद जैसी अनिष्ट प्रथाओं पर भी उन्होंने कड़ा प्रहार किया। उन्होंने लिखा,
1: भले हो यहाँ हजारों जातियां, पर न हो विदेशियों को यहाँ स्थान। एक माता के पुत्र हम चाहे लड़ें जितने, है फिर भी एक दूसरे के बंधु।

0: यहां कोई ऊंच नीच नहीं है। सुब्रमण्य भारती की ये क्रांतिकारी कविता है। इसमें वो इंसान को पुकार कर कहते हैं कि इस दुनिया में कोई छोटा या बड़ा नहीं है, सब बराबर हैं। जाति, धर्म, ऊंच नीच का भेदभाव गलत है।
1: भारत वंदना इस प्रसिद्ध कविता में सुब्रमण्यम भारती लिखते हैं,
2: हमारी भारतीय माताएं बचपन में विवाहित होकर अपना घर बसाती थीं। यही उन्हें एहसास होता था मातृत्व के आनंद का, संतान प्राप्ति के गर्व का। जगह जगह स्थापित हमारे मंदिरों ने बड़ों को आत्मा के सत्य की अनुभूति करा दी। काल प्रवाह में उनके विलीन होने पर उनकी संतानों ने वेदी की उनकी जगह ले ली। सत्य की उस स्मृति को मैं वंदन करता हूं। वंदे मातरम, वंदे मातरम।
1: सुब्रमण्यम भारती ने तमिल भाषा में जो वंदे मातरम के दो अनुवाद किए वे इस प्रकार के।

तमिल के जैसे ही दक्षिण की तेलुगु भाषा में भी वंदे मातरम का अनुवाद हुआ। अनुवादक कवि थे लक्ष्मी नरसिंह पंतलु। आंध्र प्रदेश के राजमहेंद्री में एक बड़ी सभा में बिपिन चंद्र पाल के सम्मुख वंदे मातरम तेलुगु भाषा में गाया गया। वंदन मम्मा भारत माता वंदन मम्मा, मंद मंद मलयानिल जागृत निर्मल जीवन मधुर फलामृत, शस्य श्यामल कोमल गात्रा वंदन मम्मा भारत माता वंदन मम्मा, श्यामल नीवे सरलवु नीवे धरणिवि भरणिवि सर्वमु नीवे, प्राण तुलीवे जननी भारतवनी वंदन मम्मा भारत माता वंदन मम्मा, नीवे विदयक नीवे धर्मक नीवे हृदयक नीवे मर्मक, नीवे प्राणमु नीवे देहमु नीवे प्रेममु नीवे श्रेयमु, वंदन मम्मा भारत माता वंदन मम्मा। वंदे मातरम ये शब्द अब प्रत्येक भारतीय के हृदय में विराजमान हो गए थे। सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

0: वंदे मातरम एक जय घोष। इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 34वीं कड़ी, मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बाशु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
2: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन,
3: कौन लाया, कौन लाया।
4: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है,
5: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जवां दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
4: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
6: एक टुकड़ा धूप का।
4: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
5: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी

0: जानी मानी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए की।
1: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: गृहमंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की

0: जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा।
1: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती है, इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमें करनी पड़ेगी।
0: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली एफआईआर के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये एफआईआर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई थी। एसआईटी ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
2: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि एआई अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने एआई युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। एक रिपोर्ट।
3: श्री हेलबर्ग ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक बताया। श्री हेलबर्ग ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय आदान प्रदान के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई, इनमें क्वाड और ट्रस्ट पहल शामिल है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग जगत के नेताओं के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लचीली प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी 2 दिन की दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, वित्तीय सहयोग, जहाज निर्माण, रक्षा और सुरक्षा, उभरती तकनीकों, स्टार्टअप, संस्कृति, शिक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क जैसी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत

0: नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमन ने आशा व्यक्त की कि इस पर जल्द सहमति बनेगी।
1: FTA हमारे व्यवसाय के लिए भारत में नए अवसर लेकर आएगा। मेरा मानना है कि इससे भारत में जर्मनी का निवेश बढ़ेगा, क्योंकि निवेश करना अधिक आसान हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भी भारत जर्मनी सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें पनडुब्बियों से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर होने का इंतजार है, जो एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
0: जर्मन राजदूत ने कहा कि जर्मनी में रह रहे भारतीय समुदाय दोनों देशों की मित्रता का मजबूत आधार है।
2: 60,000 स्टूडेंट्स
1: जर्मनी में भारतीय मूल के करीब 60,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अगर वे सही विश्वविद्यालय का चयन करते हैं तो उनके पास अच्छी नौकरी पाने के बेहतर अवसर होते हैं। जर्मनी में भारतीय समुदाय की बढ़ती मौजूदगी से दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे।
0: भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत यात्रा पर रहेंगी। वे नई दिल्ली में होने वाले 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस शिखर सम्मेलन में दोनों देश अपने द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे और उसे और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोनों नेता आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आज आशुराए मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने ताजिया जुलूसों के संबंध में यातायात संबंधी चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार नेताजी सुभाष मार्ग से जामा मस्जिद की ओर आने वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। भीड़भाड़ से बचने और मुहर्रम के जुलूस के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात को नेताजी सुभाष मार्ग से होकर अन्य मार्गों पर जोड़ा जाएगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि मोहम्मद हजरत इमाम हुसैन के बलिदान, साहस, करुणा, सत्य तथा न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता जैसे शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। पश्चिम बंगाल में साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 188वीं जयंती मनाई जा रही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म आज ही के दिन 1838 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नेहाची के काठलापारा में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना की, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बंकिम चंद स्मृति ग्रंथागार में बंकिम चंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्ताद की घोषणा की। इसके अंतर्गत भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना की 2 MCC C-17 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हो गए हैं। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि अस्तिदाद का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत भारतीय सेना की फील्ड अस्पताल इकाई और 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण भेजे जा रहे हैं। इनमें 2 भीष्म क्यूब भी शामिल हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला की सरकार वहां के लोगों के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है।

0: और अब खेल खबरों के साथ है आनंद पाठक।
1: भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के अपने अंतिम मैच में पैराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। ग्रुप डी के एक अन्य मुकाबले में तुर्की ने अमरीका को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट में अपने अभियान का जीत के साथ समापन किया। जापान और स्वीडन का मुकाबला 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों ने अंतिम 32 में जगह बना ली है। अगले दौर में जापान का मुकाबला 5 बार के चैंपियन ब्राजील से होगा। वहीं ग्रुप ई के मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। एक अन्य मुकाबले में कोट डी आइवर ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। हॉकी में लंदन में आयोजित FIH प्रो लीग में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया था।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के एक मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया।

राजा मेहदी अली खां के बोल थे, मदन मोहन की तर्ज थी और उन्हीं की आवाज साथ में लता मंगेशकर की आवाज, वो कौन थी फिल्म के गाने का ये एक विशेष संस्करण था। इससे पहले कोहरा फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, कैफी आजमी के बोल थे, संगीत हेमंत कुमार का था।

पिपुरा के पतवा सरी के डोले मनवा कि हियारा में उठे तहिलो। अरे पुरुआ के झोंकवा में आई।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में ये गोदान फिल्म का गाना था। अनजान के बोल थे, संगीत पंडित रविशंकर का था। इसी के साथ अब आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम खत्म होता है। एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।

0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य की रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाली उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
4: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम हेलो सहेली के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: सखियों नमस्कार। इंतजार ऐसी खामोश कविता होती है जिसे हर दिल हर पल बिना शब्दों के लिखता रहता है। ये वो दीप होता है जो विरह की रातों में आशा की लौ जलाए रहता है। इंतजार वो फूल है जो खिलने से पहले ही खुशबू का एहसास कराता है। किसी अपने की राह देखता हुआ मन मानो समय की दहलीज पर उम्मीदों के दीप सजाकर बैठा रहता है। इंतजार वो एहसास होता है जहाँ मिलने की खुशी से पहले यादों की महक दिल के आंगन को महका देती है। चिलचिलाती गर्मी से राहत के लिए हम सभी को झमाझम बारिश का इंतजार है, तो फिलहाल मुझे इंतजार है आपके फोन कॉल्स का। देखते हैं किन किन सहेलियों से आज बातें होगी। और हमारा इंतजार हुआ खत्म और ये आ गया पहला फोन कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमारी?
1: शीला सहनी, दिल्ली से।
0: शीला जी, क्या हाल चाल है? हाँ, शीला जी
1: अपना सही है, आप बताओ अपना हाल चाल।
0: जी हमारे भी हाल चाल।

0: बहुत अच्छे हैं। बताइए आप क्या करती हैं?
1: जूतेलन का काम यहाँ होता है दिल्ली में, वही सब कर रही हूँ ऐसे फैक्ट्री में।
0: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप व्यस्त रहती हैं, काम करती रहती हैं। मुझे एक बात
1: हाँ
0: बताइए,
1: मैम, मैं
0: दिल्ली
1: काम
0: के क्या
1: करती हूँ।
0: हाल चाल हैं?
1: दिल्ली में तो अभी थोड़ा गर्मी है और बाकी सब तो वैसे मौसम के हिसाब से चलते ही रहता।
0: गर्मी से तो सभी परेशान हैं, पर मुझे एक बात बताइए कि गर्मी से राहत के लिए आप कौन से उपाय करती हैं? किस तरह से ऐसा कुछ करते हैं जिससे गर्मी कम लगे?
1: गर्मी के लिए क्या करेंगे, अपना सेहत पे ध्यान रखे हैं, धूप ऊप का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है।
0: यही तो सबसे बड़ी बात है कि हमें खूब पानी पीना है और बाहर
1: हाँ
0: निकलते वक्त छाता
1: पानी
0: लेके
1: पी
0: चलना।
1: लो, ठंडा पी लो, जिसका होता है लस्सी पी लेते हैं।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, तो अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। और ये बताइए कि आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: मैम नीलकमल फिल्म का कोई सा सुना दीजिए।
0: सुनते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: मैं निशा पाठक एयरपोर्ट रोड इंदौर से लगाया है।
0: निशा जी, क्या हाल चाल है आपके?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ। बस ये मैं बताना चाहती हूँ आपको कि मैं आपकी बहुत बहुत बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ,
0: क्या बात है,
1: विविध
0: शुक्रिया।
1: भारती की खास तौर पर।
0: जी जी
1: और मैं सालों से, आप समझ लीजिए, बचपन से विविध भारती सुनती चली आ रही हूँ और हेलो सहेली भी हमेशा सुनती हूँ। सखी सहेली तो फेवरेट है ही मेरा।

0: अच्छा जी, निशा जी आपके बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: जी मैं सीनियर सिटीजन हूँ और दो बेटे हैं, दो बहुएं हैं, दो पोते हैं, उन्हीं के साथ मैं रहती हूँ।
0: यानी जिंदगी का लुत्फ उठा रही हैं आप, है ना?
1: जी हाँ, ये समझ लीजिए कि रिटायरशिप में कर रही हूँ अब।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। हाल ही में हम सभी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, तो क्या आप
1: जी
0: योगा करती हैं? योग से जुड़ी
1: जी
0: हुई हैं?
1: हाँ, मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि मैं करीब 2010 से मैंने योगा को अपनाया है और मुझे उस योगा से बहुत बहुत फायदा मिला है।
0: किस तरह से फायदा है वो भी थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ, मुझे कमर में तकलीफ हो गई थी और मुझे थोड़ा वो भी है, ब्लॉकेज में भी थोड़ी है दिक्कत, तो उस वजह से फिर मैंने प्राणायाम भी शुरू करा और तीन चार आसन जो मेरे कमर से और स्पॉन्डिलाइटिस से संबंधित हैं वो आसन भी मैं करती हूँ, तो उन सब आसन और प्राणायाम से मुझे बहुत लाभ मिला। तो मेरी दवाइयाँ करीब करीब आप जो चल रही थी सिर्फ वो ही चल रही हैं, उसके आगे नहीं बढ़ी।
0: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो यानी आप जिंदगी का लुत्फ उठा रही हैं, साथ साथ अपना भी ध्यान रख रही हैं और पूरे परिवार
1: जी
0: के साथ
1: हाँ,
0: खुशहाल हैं।
1: सारी महिला समाज से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप घर गृहस्थी में भी ध्यान दीजिए किंतु अपनी तरफ भी ध्यान दीजिए और अपने जो आपके शौक रह गए हों उन्हें आप सीनियर सिटीजन जब आप बन जाती हैं तो आप कम से कम उन शौक को इस समय में आप पूरा कीजिए।
0: ये तो बहुत अच्छा संदेश दिया है। और बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: बंदिनी फिल्म का है, जिसको सुनकर मुझे मेरी माँ की याद आ जाती है। अब के बरस भेज भैया को बागुल, सावन में लीजो बुलाए।
0: क्या बात है, बहुत ही सुंदर गीत आपने चुना है और हम
1: जी
0: सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: ली
1: हेलो मैम, नमस्कार। पूनम
0: नमस्कार, कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: यादव लुधियाना से। हाँ
0: पूनम यादव लुधियाना से। पूनम
1: जी मैम, जी
0: जी क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं तो बस हाउस वाइफ हूँ मैडम जी।
0: हाउस वाइफ होना भी बहुत बड़ी बात है ना पूनम जी, पूरे परिवार का
1: हाँ
0: ख्याल
1: हाँ
0: रखती हैं आप, है ना?
1: जी मैडम जी।
0: और कौन से शौक हैं आपके?
1: हमारे शौक तो मैडम जी बस सिलाई कढ़ाई।
0: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा शौक है ना, सिलाई करना,
1: हाँ
0: कढ़ाई करना, बुनाई करना। ये तो महिलाओं को इन्हें बचपन से सिखाया ही जाता था पुराने जमाने में, और ये कला जो
1: हाँ
0: होती है ना, अद्भुत है
1: जी
0: ये कला, हर कोई नहीं सीख सकता ये, है ना? और अभी
1: हाँ
0: लुधियाना
1: जी
0: की क्या हालचाल है?
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बारिश होके हटी है, थोड़ा गर्माई, थोड़ा हवा, थोड़ा मौसम बहुत अच्छा है यहाँ का।
0: यानी अभी आप मौसम का लुत्फ उठा रही हैं।
1: सारे मौसम आने बहुत ही जरूरी है मैडम जी। जिंदगी में हर मौसम अगर नहीं आएगा तो हमारी जिंदगी नहीं चलनी है।
0: क्या बात है। तो चलिए बताइए, कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
1: एक बरसात फिल्म का गाना है, बॉबी देओल का। मतलब नहीं हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए।
0: बहुत अच्छा गाना आपने चुना है, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते दी।
0: नमस्ते, कहाँ से फोन लगाया और कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?

0: मैं श्वेता भारती जिला ग्राम हिंसा से बोल रही हूँ।
1: क्या हालचाल है आपके?
0: बढ़िया है दीदी, आप बताओ कैसी हो?
1: जी हम भी मजे में हैं, और आपसे बात करके और भी हम मजे में हो गए, और भी खुश हो गए, है ना?
0: हम भी बहुत खुश हो गए, कॉल लग गया।
1: वैसे आप बताइए कि आप करती क्या है जिंदगी में?
0: जी दीदी घर पे रहते, घर के काम करते हैं।
1: ये तो बहुत अच्छी
0: जी
1: बात है।
0: जी
1: और घर के काम करते करते खुद के लिए कभी वक्त निकालते हैं कि नहीं? एक अपने खुद के लिए कभी कभी ऐसा लगता है ना, ये काम करने में मुझे ज्यादा आनंद मिलता है, यानी मुझे सिलाई करने में ज्यादा आनंद मिलता है, या फिर मुझे गीत गाने में आनंद मिलता है, या फिर रेडियो
0: नहीं,
1: सुनने में?
0: मुझे मुझे गाने में आनंद मिलता है। रेडियो सुनती हूँ,
1: गाती
0: विविध
1: भी है?
0: भारती बहुत ज्यादा सुनती हूँ। बहुत
1: विविध,
0: खुश हूँ विविध भारती से। जी दीदी
1: जी। और गाती भी हैं आप?
0: जी दीदी गाती हूँ,
1: तो गुनगुना के बताइए।
0: गुनगुना के भी सुनाऊं।
1: सुनाइए।
0: देवी जी के मंदिर में लटसी बहारी आई, देवी जी के मंदिर मैं लट से बहारी आई, लट से बहारी आई, वरदान मांगी आई, लट से बहारी आई।

0: सेवा दियाई।
1: क्या बात है, कितना सुंदर भजन सुनाया आपने। तो ऐसे ही गाते
0: जी दे
1: गुनगुनाते रहिए, खुश रहिए और विविध भारती सुनते रहिए।
0: दे सुरजीत
1: और आपकी पसंद का कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: फिल्म का सुना दीजिए दीदी।
1: तो जीत फिल्म का कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: कोई भी सुना दीजिए।
1: जी ठीक है, जीत फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं सई देशपांडे बोल रही हूँ, नागपुर महाराष्ट्र से।
0: सही जी, अपने बारे में बताइए।
1: मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ, स्केचिंग, पेंटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग ये सब करती हूँ और पब्लिशर भी हूँ। पुस्तकें पब्लिश हुई हैं हमारी। और पहले तो वैसे मैं हाउसवाइफ थी, बट मैंने हॉबीज अपनी डेवलप की और लेखन भी किया, तो लेखिका, कवयित्री, गायिका भी हूँ। और मेरा मेन प्रोफेशन अभी फिलहाल ये है कि मैं पेंटिंग और स्केचिंग करती हूँ।
0: क्या बात है, यानी आप ऑलराउंडर हैं, सारी
1: जी
0: कलाओं में आप निपुण हैं, है ना?
1: जी जी
0: और आपने संगीत कहा कि आप संगीत सीखी हुई हैं, तो कौन सा संगीत का प्रकार, यानी आप शास्त्रीय संगीत सीखी हैं या सुगम संगीत, किस तरह के गाने आप गाती हैं?
1: जी मैं शास्त्रीय संगीत सीखी हुई हूँ, बट अभी फिलहाल मैं सुगम संगीत गाती हूँ और सेमी क्लासिकल गाती हूँ।
0: और जैसे आपने कहा कि पहले आप हाउसवाइफ थी, तो ऐसा होता है ना कि आमतौर पर महिलाओं को ऐसा लगता है कि हाउसवाइफ है, हम तो सिर्फ हाउसवाइफ हैं, पर घर संभालते हुए अपने हॉबी के लिए वक्त निकालना और आगे चल के उसी का प्रोफेशन चुन लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप उसी दौर से गुजरी हुई हैं कि आप पहले हाउसवाइफ थी, उसके बाद में आपने धीरे धीरे सारी कलाओं को सीख कर उसमें पारंगत हो गई हैं और आप अब प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं। तो हमारी जो सखियां हैं, अन्य सखियां, उन्हें भी आपके बारे में सुनकर अच्छा लगेगा, तो अपने बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: जब मैं हाउसवाइफ थी तो तब मेरे एक्चुअली सास ससुर भी थोड़े एजेड थे और बच्चे भी छोटे थे, तो मैं पूरी तरह से परिवार की सेवा कर रही थी, यानी उनकी तरफ पूरा ध्यान देना। और मेरे हस्बैंड भी आउट ऑफ स्टेशन रहते थे, तो परिवार की पूरी जिम्मेदारी मुझ पे थी, इसलिए मैंने उस वक्त घर के अंदर रहकर ही जो कुछ मैं कर सकती थी उतना किया। अपनी हॉबीज को डेवलप करती रही, टैलेंट्स को, यानी जैसे स्केचिंग है तो उसमें मैं खुद को डेवलप करती रही। और फिर आगे जाके मुझे उसमें फिर अपॉर्चुनिटीज मिली, बच्चे भी बड़े हो गए और घर से भी सपोर्ट था ही, यानी जहां जहां मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलती थी मैं करती थी। और अब तो मुझे ऑर्डर्स भी अच्छे आने लगे हैं और काफी प्रसिद्धि मिल चुकी है। तो मेरा ये कहना है सभी सखियों से कि अगर आप हाउसवाइफ भी हैं तो भी कुछ समय अपने लिए, खुद के लिए अवश्य निकालें, और जो कुछ भी आप में टैलेंट है उसको आप डेवलप करते रहें। भले ही उस वक्त आप बाहर ना भी जा पाए तो भी कम से कम 1-2 घंटा अपने लिए, खुद के टैलेंट्स के लिए निकालें और उसको डेवलप करते रहें, तो आगे जाके आपको अपॉर्चुनिटीज जरूर मिलती हैं।
0: ये तो बहुत अच्छा संदेश सारी सखियों के लिए आपने दिया। और एक सवाल आपसे कि ये सब काम करते हुए परिवार का आपको कितना सहयोग मिला?
1: जी, ये जब मैं कर रही थी तो घर में, जब मैं, जैसे अब बहुत से काम हमको करने पड़ते हैं, तो घर के सदस्यों ने घर के कामों में थोड़ी मदद अगर की तो हमको खुद के लिए भी टाइम निकालना पॉसिबल होता है। तो ये मेरे घर के सब सदस्य मुझे ये मदद करते हैं। और जब मैं बाहर जाती हूँ या मुझे कुछ ऑर्डर्स रहते हैं या गाने का कार्यक्रम होता है तो भी मुझे घर से बहुत सपोर्ट, मेरे हस्बैंड स्पेशली और बच्चे बहुत सपोर्टिव हैं। तो घर के लोगों ने भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब घर की महिला उसके अंदर का टैलेंट अगर वो डेवलप कर रही है तो उसको आप लोग सपोर्ट करें, ताकि वो खुश रहे। फाइनेंशियली भी वो अगर इंडिपेंडेंट रहती है तो भी घर वालों को भी हेल्प उसकी होती ही है ना, तो घर वालों ने भी उनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे और अपनी हॉबीज को वो अगर प्रोफेशन में लेके आ रही है तो वो खुश भी रहेगी, तो वो नेचुरली परिवार को भी खुश रखेगी,
0: ये
1: ऐसा
0: बहुत
1: मेरा
0: सही
1: मानना।
0: बात आपने कही कि अगर एक महिला खुश रहती है तो पूरा परिवार खुश रहता है, और महिला को आगे बढ़ने में परिवार का सहयोग कितना महत्वपूर्ण है। तो ये हर, अगर स्त्री को, हर नारी को ऐसा सहयोग मिलता रहे तो हर नारी कुछ न कुछ आगे जाके बहुत अच्छा काम कर सकती है। और

0: जी, जैसा आपने बताया कि आप गाती भी हैं, तो हम आपसे कुछ लाइनें सुनना चाहेंगे।
1: जी, एक छोटे नवाब फिल्म का गीत है, जो लता जी ने गाया हुआ, आरडी बर्मन का संगीत है, वो मैं आपको सुनाती हूँ। घर आ जा, घर आए बद

0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुरीली आपकी आवाज है और बहुत सुर में आप गाती हैं, तो ऐसे ही गाते
1: धन्यवाद
0: गुनगुनाते रहिए। और यही
1: धन्यवाद
0: गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: जी, यही गीत सुनना चाहती हूँ।
0: तो आपकी पसंद का ये गीत हम आपको सुनवाते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: जी, मेरा नाम जयश्री है।
0: कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: मैंने लोक बिरादरी प्रकल्प हेमलकसा से फोन लगाया है।
0: अच्छा, ये कहाँ पर स्थित है, थोड़ा सा विस्तार में बताइए इस बारे में।
1: जी, ये महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में है और ये आपने सुना ही होगा डॉक्टर प्रकाश आमटे और मंदाकिनी आमटे के बारे में। तो उनका जो लोक बिरादरी प्रकल्प हेमलकसा में है, वहां पे मैं काम करती हूँ।
0: क्या बात
1: और
0: है,
1: हाँ हाँ
0: ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। ये हमने
1: जी
0: पढ़ा भी है उस बारे में और सुना भी है, और हमने उनके जीवन पर आधारित फिल्म भी देखी है।
1: जी
0: आप क्या काम करती है वहां पर?
1: यहाँ मुझे जो प्राथमिक कक्षा की जो शिक्षिकाएं होती है उनके साथ मुझे सहायक शिक्षिका करके काम करने का अवसर मिला है।
0: तो
1: हाँ,
0: वहां जाने की इच्छा कैसे जागृत हुई आपके मन में?
1: पहले तो मैंने ये लोक बिरादरी के प्रकल्प के बारे में बहुत कुछ सुना था, बहुत कुछ मुझे पता था और पढ़ा भी था मैंने। मैंने प्रकाश बाबा आमटे ये फिल्म भी देखी थी जिसने मेरे मन पर गहरा प्रभाव डाला, और तभी से मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि मुझे कुछ समय यहाँ आकर काम करने का अवसर मिले। तो मैंने उनसे पूछताछ की तो मुझे ये अवसर अभी मिला है।
0: तो कैसा लग रहा
1: और
0: है
1: यहाँ
0: आपको वहां जाकर?
1: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का वातावरण बहुत शांत है और प्रकृति के करीब है। मुझे यहाँ बहुत कुछ सीखने का अवसर मिल रहा है और यहाँ का सेवा भाव और सादगी मेरे लिए बहुत ज्यादा मूल्यवान है, तो इसलिए मैं यहाँ बहुत खुश हूँ यहाँ आकर।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है,
1: जी
0: क्योंकि जब हम अपनी खुशी से जीते हैं, यानी अपने खुशी का
1: जी
0: काम करते हैं, तो उसमें हमें अलग ही आनंद मिलता है, और आज वो खुशी आपको महसूस हो रही है। तो यहाँ की
1: जी
0: शिक्षा के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे आप कि किस तरह से शिक्षा दी जाती है बच्चों को?
1: हाँ हाँ मैं जरूर दूंगी। मेरे विचार से यहाँ पे यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है और यहाँ पे बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाती है वो केवल पुस्तकी ज्ञान नहीं होता है बल्कि बच्चों में आत्मविश्वास, स्वावलंबन और सामाजिक संवेदनशीलता निर्माण करना, ये भी यहाँ यही की शिक्षा का एक उद्देश्य है। तो यहाँ जीवनोपयोगी शिक्षा पर ज्यादा ये दिया जाता है, वो शिक्षा ज्यादा दी जाती है।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, ये प्रकृति के सानिध्य में बसा हुआ है, तो बच्चों को बहुत करीब से प्रकृति से जुड़ने का मौका मिलता है, नई नई चीजें सीखने का मौका मिलता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और आपको भी वहां पर बहुत अच्छा लग रहा है, तो
1: जी,
0: बताइए रेडियो कब सुनती हैं आप?
1: रेडियो में एक्चुअली मैं यहाँ आई तब यहाँ पे टीवी वगैरह कुछ है नहीं, तो ज्यादातर मैं रेडियो सुनती हूँ और सखी सहेली ये कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कभी कभी न्यूज भी सुनती हूँ, तो विविध भारती पुराने गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो रेडियो तो मैं सुनती रहती हूँ।
0: तो बहुत अच्छा लगा आपके बारे में सारी जानकारी सुन के। तो बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हमको मन की शक्ति देना, ये प्रार्थना गीत बहुत पसंद है और यह गीत फिल्म गुड्डी का है जिसमें जया बच्चन जी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। गीत इसलिए पसंद है क्योंकि यह गीत हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।
0: तो यानी हमें मन से समृद्ध बनाता है ये गाना, तो मन के
1: या
0: हारे हार है, मन के जीते जीत, तो हमारे मन को
1: हाँ
0: हमेशा हमें मजबूत बनाए रखना है। तो चलिए जयश्री जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, तो सुनवाते हैं
1: हाँ
0: आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली। कौन
1: हेलो सहेली,
0: सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं कल्पना ठाकरे बात कर रही थी।
0: कहाँ से फोन लगाया?
1: मैं तहसील जुन्नार देव, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ।
0: क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं पार्षद रह चुकी हूँ, मेरा पार्लर भी चलता है, और महिला मोर्चा अध्यक्ष रह चुकी हूँ।
0: क्या बात है, यानी आप व्यस्त और स्वस्थ रहती है ना?
1: जी हाँ, जी।
0: और आज आपकी आवाज में खुशी झलक रही है। क्या पहली बार फोन लगाया आपका विविध भारती में?
1: हाँ, पहली बार ही फोन लगाया है, और बहुत पहले से मैं प्रयास कर रही थी, लेकिन आज मेरा कॉल लगा। बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करके। जी
0: चलिए, ये मैंने कहा ना, आपकी खुशी आपके आवाज में झलक रही है। वैसे कल्पना
1: हाँ,
0: जी, हर किसी की खुशी की एक अलग परिभाषा होती है। तो यानी
1: जी
0: किसी को किसी चीज में खुशी मिलती है, किसी को किसी चीज में खुशी मिलती है। तो आपकी खुशी की क्या परिभाषा है?
1: देखिए, खुद की खुशी के लिए तो हर कोई तत्पर रहता है। मुझे ऐसा लगता है मेरे कारण लोगों के जीवन में खुशियों के पल आए, इसलिए मैं आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए हर संभव काम करती हूँ, जानकारी देती हूँ उनको, उनके फॉर्म भरना, बैंक के काम कैसे करना उन्हें बताती हूँ।
0: ये तो बहुत
1: जी
0: अच्छी बात लगी आपकी कि आप दूसरों के चेहरे पर खुशियां लाने की कोशिश करती हो, जिसमें आप हर संभव प्रयत्न करती हैं कि उन्हें हर तरह से मदद मिले। तो इस बारे में
1: जी
0: हर कोई नहीं सोचता है, ये आपकी सोच बहुत अच्छी है और इसी सोच के साथ आप खूब आगे बढ़िए। अब बताइए, कौन सा गीत आप
1: जो
0: सुनना चाहती हैं?
1: संगीत का पहले से ही काफी शौक रहा है, और यहाँ छोटे मोटे फंक्शन में भी मैं गा लिया करती हूँ। मैं अपनी एक खास सहेली के साथ अपने कॉलेज के दिनों में एक गाना गाया करती थी,

0: तौबारे दिलरुबा दिलरुबा।
1: ये गाना लता जी और कमल बारोट का गाया हुआ गीत है। सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली, कैसे हो? मंजू,
0: कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: हाँ
0: मंजू जी, कहाँ से लगाया फोन?
1: जी, हरियाणा हिसार से।
0: हिसार, हरियाणा से मंजू जी से बात हो रही है। बताइए मंजू
1: हाँ
0: जी,
1: जी,
0: क्या करती हैं आप?
1: मेरा सिलाई का काम है। हाँ
0: सिलाई का काम करती है, और सिलाई करते
1: जी,
0: करते रेडियो सुनती है।
1: हाँ जी,
0: कौन से कार्यक्रम सबसे अच्छे लगते हैं आपको?
1: विविध भारती के सुबह से लेकर शाम तक के चलते ही रहते हैं, सारे ही अच्छे लगते हैं।
0: सारे कार्यक्रम पसंद है। और जैसे कि महिलाएं दिन रात काम करती हैं, खुद की ओर ध्यान नहीं दे पाती। 21 तारीख को सभी ने विश्व योगा दिवस मनाया, विश्व संगीत दिवस हम सभी ने मनाया। तो आप योग
1: हाँ जी,
0: करती
1: थोड़ा
0: हैं, व्यायाम करती हैं?
1: बहुत बस घर पे कर लेते हैं सुबह। ये
0: बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: कन्यादान पिक्चर का है, लिखी जो खत तुझे वो फूल बन गई।
0: जी, सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली, बिहार
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: पटना से इंदु चौबे। बढ़िया,
0: इंदु जी, क्या हाल चाल है आपके? बताइए, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: या तो बहुत कुछ सुना ली थी, पर अब तो निश्चिंत की जिम्मेवारी कुछ भी नहीं है, बस आराम से मजे से बीर भारती सुनना, कुछ कुछ अपना किताबें पढ़ना, अपना दिनचर्या मेंटेन करना, लोगों से मिलना जुलना, बस ऐसी जिंदगी।
0: बहुत सुंदर जिंदगी जी रही हैं, यानी यूं कह लीजिए कि जिंदगी का बड़ी ही खूबसूरती के साथ लुत्फ उठा रही है ना?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: हाँ। और विविध भारती सुनती हैं आप?
1: बहुत बचपन से, जब
0: बचपन।
1: से मतलब गानों के प्रति शौक हुआ किशोरावस्था से, तब से।
0: और ये बताइए कि अभी हाल ही में हम सभी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, साथ ही संगीत दिवस मनाया, तो योग और संगीत का आपके जीवन में क्या महत्व है?
1: संगीत तो रच बस गया है, योग भी मैं करीब 10 साल से कभी कंटिन्यू, ऐसे तो मैं 20 साल से कर रही हूँ। मुझे साइटिका का अटैक हुआ तब से, मुझे उस समय योग नहीं करके एक्सरसाइज ही सिखाया गया, और मैंने 3 महीना उसका कोर्स किया। अब तब से मैं नियमित रूप से घर में या बाहर कहीं भी रहूं मैं जरूर करती हूँ।
0: ये बहुत अच्छी
1: हाँ
0: बात
1: हाँ
0: आपने कही।
1: प्राणायाम, अनुलोम विलोम। और आपको तो सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि मैं 10 साल से थायराइड से पीड़ित थी, और इधर 2 साल से मैं कोई थायराइड का दवा नहीं ले रही हूँ। मेरा वजन भी कम हो गया, और मैं अपना जो दिनचर्या है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है उम्र के साथ तो आता ही है, लेकिन मैं आराम से डेली 20 मिनट वॉक करती हूँ।
0: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि योग ने आपके जीवन में

0: इतने सारे बदलाव
1: हाँ
0: लाए, सकारात्मक बदलाव लाए, जिसके
1: जी
0: बदौलत
1: जी
0: आप
1: जी
0: तंदुरुस्त जीवन जी रही है। तो हर
1: जी
0: महिला
1: बिल्कुल
0: को ऐसे ही करना चाहिए कि कितनी भी व्यस्त जिंदगी क्यों ना हो, योग को महत्व देना है, अपनी सेहत का हमें ध्यान रखना है। अगर हम अपना सेहत का ध्यान रखते हैं तो हमारा परिवार भी तंदुरुस्त रहेगा। और जब
1: जी
0: हम योग
1: बिल्कुल
0: करते हैं ना, तो हमारा देखा सीखी बच्चे भी करते हैं, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग वो भी तंदुरुस्त रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। और बताइए, कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: लंबे हाथ का प्यार की राह दिखा दुनिया में, रफी जी की आवाज
0: जी, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये
1: में।
0: गीत।

0: दुनिया को।
1: सखियों, आपकी बातचीत, आपके अनुभव दिल को छू गए। आपसे अगली मुलाकात होगी अगले मंगलवार सुबह 11 बजे से। तो जल्दी से हमारे टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारे नंबर इस प्रकार है 400-24662, फिर से 400-24662, दूसरा नंबर है 2867-0288, फिर से 2867-0288, और मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानी 022। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जिन सखियों के कॉल लग चुके हैं वे कृपया 2 महीने तक कॉल ना करें, ताकि अन्य सखियों को भी हमसे जुड़ने का मौका मिले। साथ ही सभी पुरुष श्रोताओं से एक नम्र विनती है कि आप हेलो सहेली में कॉल ना लगाएं। आपके कॉल के कारण फोन एंगेज हो जाता है और बहुत सारी सखियों के

0: फोन नहीं लग पाते। हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर है अनुश्री गुप्ता, संपादन नम्रता टिकोड़े का, हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता है अनुश्री पाठक। तो चलते चलते सखियों से कहेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, खुश रहिए और विविध भारती सुनते रहिए। इसी के साथ आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आइए सुने गीतों भरी कहानी। आइए आज सुनते हैं अरुण शेखर की लिखी गीतों भरी कहानी, उन दिनों की बात है। वाचन स्वर अरुण शेखर का।
2: ये उन दिनों की बात है जब मोबाइल से इमोजी भेजकर इश्क जाहिर करने का जमाना नहीं आया था। मोबाइल जैसी चिड़िया का उद्भव भी नहीं हुआ था। गूगल नाम का जिन्न भी तब तक अस्तित्व में नहीं आया था। जो भी खोजना हो किताबों से ही खोजना होता था। किताबें लाइब्रेरी में होती थी, साथ एक दूसरे को पढ़ती हुई निगाहें भी। रास्ता लोगों से ही पूछना होता था। रास्ते पूछने में कई बार रिश्ता बन जाता था। ये उन दिनों की बात है जब रिश्तों में अलाव थे, जब रिश्तों में ताव थे, जब रिश्तों में हाव भाव थे, जब रिश्तों में जान थी जिसे लोग हथेली पर लेकर घूमते थे, जब शहरों में रिक्शे पर जा रही लड़कियों के पीछे पीछे आशिक उन्हें उनके घर के पास तक छोड़कर आते थे, जब विश्वविद्यालय के नवनियुक्त अध्यापक साइकिल से भी नौकरी पर आते थे, जब लड़के दूर बैठे बैठे मजाक मजाक में लाल वाली, हरी वाली, लंबी वाली, सांवली वाली, गोरी वाली आपस में बांट लिया करते थे, जब अनजाने में ही किसी को अपना बना लेने का चलन था।

0: मैंने प्यार किया फिल्म की धूम थी, उसका एक संवाद बहुत प्रसिद्ध था। दोस्ती का एक उसूल होता है मैडम, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। मैंने प्यार किया की कैप जिस पर लिखा होता था फ्रेंड फैशन में थी, तो टोपियां तो थीं पर कबूतर नहीं थे जो प्रेम पत्र ले जाते, तो ऐसी मंडली में कोई न कोई कबूतर बना लिया जाता था जो बिना शरारत के जस का तस प्रेम पत्र पहुंचा देता था। यह उस समय की बात है जब कई लड़के शहर में रहने के ठिकाने के चक्कर में वकील बन जाते थे, मतलब विश्वविद्यालय से कोई न कोई कोर्स करते ही रहते थे, कहीं न कहीं एडमिशन लिए ही रहते थे, जिसमें लॉ सबसे सही रहता था क्योंकि 5 साल की छुट्टी, और अगर एक दो बार फेल भी हो गए तो सोने पर सुहागा, जिससे हॉस्टल में रहने की परमानेंट व्यवस्था बनी रहे। जब लाइब्रेरी में जोड़े प्रेम की पींगे बढ़ाते थे, किताबों की अदला बदली होती थी और ये किताबें लिफाफे का काम करती थी। ये बात चल रही है नवाबों के शहर कहे जाने वाले लखनऊ की, हालांकि यहां लक्ष्मण पार्क भी है, जब तब लखनपुरी का जिक्र होता रहता है।
1: ये लखनऊ की सरजमीं।

जब सिनेमा हॉल के आसपास से गुजरने पर भी घर में डांट पड़ती थी, जब जय भारत सिनेमा हॉल में पुरानी फिल्मों के टिकट 3 रुपए और साइकिल पार्किंग के 25 पैसे होते थे, जब इश्क करना बड़ी हिम्मत का काम हुआ करता था, उस समय मवाली, कसम पैदा करने वाली जैसी फिल्मों के साथ सरस्वती चंद्र, मेरा नाम जोकर जैसी फिल्में भी हॉल में लगती थी। तो ये कहानी है श्रीमान एक्स की, जो बहुत संघर्षशील कलाकार हुआ करते थे, परंतु प्रेम के मामले में बिल्कुल फिसड्डी थे। वैसे देखा जाए तो कला का मूल प्रेम ही है। अब किशन भगवान को ही ले लो, सबसे बड़े कलाकार और सबसे बड़े प्रेमी।

0: श्रीमान एक्स की 12वीं तक की पढ़ाई लड़कों वाले स्कूल में ही हुई। समझिए, यहां तक का जीवन पूरी तरह सूखे में गुजर गया। जब विश्वविद्यालय में एडमिशन हुआ तो वहां कन्याएं भी थी और हिंदी की क्लास में तो बहुतायत से, यानी हरियाली ही हरियाली। पहली बार कोएड, यानी कि जहां लड़के लड़कियां साथ पढ़ते थे, इस बात का अनुभव हो रहा था। अब समझिए कि श्रीमान एक्स की प्रेम कहानी शुरू होने का मौसम बन चुका था। उनके जीवन में अब तक प्रेम की फुहार तक न पड़ी थी, इसलिए बहुत ही खड़ूस टाइप के व्यक्ति बन गए थे श्रीमान एक्स। एक बार एक नाटक में प्रेम का अभिनय करना था, उसमें अपनी प्रेमिका से प्रेम का निवेदन करने वाले दृश्य का रिहर्सल करना था। श्रीमान जी के हाथ पैर सब कांपने लगे अपनी प्रेमिका का दुपट्टा छूने में। इतने में ही श्रीमान एक्स के पसीने छूट गए। तो प्रेमिका का अभिनय कर रही मोहतरमा ने समझाया कि आप आराम से अभिनय कीजिए, इतना घबराने की बात नहीं है। तो श्रीमान जी थोड़ा सहज हुए।
1: बाजू।

0: ये उन दिनों की बात है जब जाड़े का मौसम था, रंग बिरंगे लिबासों से सजे धजे लोग आते थे। हालांकि गरीबों के लिए मौसम बहुत दुखदाई भी होता है। जैसे तैसे रातें कटती हैं, नए साल की शुरुआत होने वाली थी। इस बीच एक कन्या श्रीमान एक्स को अच्छी लगने लगी। जी हाँ, अच्छी लगने लगी। सुंदर सांवली सलोनी, लहराते गेसू, मोरनी सी चाल, सुराहीदार गर्दन, कुल मिलाकर रीतिकालीन कवियों की नायिका सी लगती थी। क्लास में नायिका भेद के वर्णन के दौरान वो सुश्री वाई के सपनों में खो जाते थे। हेलो हाय का कोई अवसर नहीं मिल पाता, कारण कि वो हमेशा अपनी एक सहेली के साथ रहती थी। खैर, मौसम मंगड़ाइयां ले रहा था, हवाओं में ठंड थी पर भावनाओं में पर्याप्त गर्मी थी, जिसका एहसास श्रीमान एक्स को बखूबी हो रहा था।
1: तुझे तक ने कोई नजर झुकता।

तो नए साल की आहट से श्रीमान एक्स के दिल में मुशायरे होने लगे, कवि सम्मेलनों की झड़ी लग गई, इश्क मोहब्बत का गाना जो भी सुनते उन्हें लगता उन्हीं के दिल की आवाज है। हालांकि कड़े संघर्ष के दिन थे, घर त्याग चुके थे, इसलिए अपनी पढ़ाई, रहने खाने के खर्च सबकी व्यवस्था करना आसान नहीं था। खाना पकाने के लिए मिट्टी का तेल मुश्किल से मिलता था, राशन कार्ड था नहीं, इसलिए विश्वविद्यालय में जाते समय भी साइकिल में 5 लीटर वाली प्लास्टिक की पिपिया यानी कि डिब्बा बंधा रहता था, जो उनकी अमीरी का ढोल पीटता रहता, उनके संघर्ष की महागाथा का ऐलान कर रहा होता। इसी में से प्रेम के लिए भी कुछ वक्त चुराना था। देखा जाए तो यही एक एहसास था जो ठंडी में भी गर्मी का एहसास बनाए रखता था। इसी के सहारे दिन गुजर रहे थे।

गुजर जाए दिन। तब नए साल और त्योहारों में ग्रीटिंग कार्ड भेजने का चलन था, उसमें फूल पत्ती बनाने, शेरो शायरी लिखने का फैशन था। कार्ड की तरह तरह की दुकानें रंग बिरंगे कार्डों से सज उठती थी। एक महीने पहले से ही लोग कार्ड खरीदने भेजने में जुट जाते थे। सारे रिश्तेदारों दोस्तों को कार्ड भेजे जाते थे, रिश्ते के अनुसार उसमें हिंदी अंग्रेजी भाषा में शुभकामनाओं का गुलदस्ता भेजा जाता था। 2 रुपए से लेकर 100-200 तक के कार्ड होते थे, एक से एक डिजाइन के कार्ड। किसी में घर बना होता, किसी में क्रिसमस ट्री, तो किसी में दिल को चीरता हुआ तीर भी होता, यानी विभिन्न प्रकार के कार्डों की धूम रहती। श्रीमान एक्स के मन में विचार आया कि यही सुनहरा मौका है सुश्री वाई को हलो बोलने का। अब कैसा कार्ड खरीदा जाए कुछ सूझ नहीं रहा था, ऐसा कोई पूर्व अनुभव भी नहीं था, और दूसरी बात, सुश्री वाई की पसंद नापसंद की कोई जानकारी नहीं थी। हां, कविता लिखने की समझ जरूर आ गई थी, पर दिलफेंक शायरी उनके पास नहीं थी जो सीधे सीधे असर कर दे। वो तो अज्ञे, धूमिल, मुक्तिबोध, दुष्यंत कुमार और धर्मवीर भारती के दीवाने थे। इसमें कनुप्रिया काम आ सकती थी। आप गलत समझ रहे हैं, कनुप्रिया उनकी कोई दोस्त नहीं थी, बल्कि धर्मवीर भारती की अद्भुत रचना। इस उधेड़बुन में, इस असमंजस में

0: मुक्तिबोध की ये कविता बचपन में पढ़ी थी जो अभी तक जस की तस बैठी थी। मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाए, मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाए, एक पैर रखता हूं कि 100 राहें फूटती हैं। मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूं, मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूं। बहुत अच्छे लगते हैं उनके तजुर्बे और अपने सपने, सब सच्चे लगते हैं। अजीब सी अकुलाहट दिल में उभरती है, मैं कुछ गहरे में उतरना चाहता हूं, जाने क्या मिल जाए। इस कविता के भाव जैसा ही था श्रीमान एक्स का भाव, तो सबसे मजबूत हथियार कविता ही थी। कार्ड कैसा भी खरीदा जाए पर कविता शानदार लिखी जाएगी। समस्या ये थी कि कोई ऐसा मित्र भी नहीं था जिसके साथ अपनी भावनाएं साझा की जाएं, तो जैसे तैसे कार्ड खरीदा गया।
1: लिखे जो

कुछ ही दिन बाकी रह गए थे नववर्ष के आगमन में। मौसम भी अपनी रंगत बदल चुका था। छात्र संघ के चुनाव भी कुछ ही दिनों में होने वाले थे, इसलिए नुक्कड़ सभाएं चल रही थी। बाहरी नेताओं का आना जाना भी शुरू हो चुका था, जो अपने अपने प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटा रहे थे। इस मौके पर कई प्रतिनिधि पर्चे और गुलाब के फूल बांट रहे थे। श्रीमान एक्स को लगा ये अवसर भी हो सकता है सुश्री वाई को फूल देने का, लेकिन अपने ही विचार को उन्होंने खंडित कर दिया, ये सोचकर कि ये तरीका सही नहीं है। हालांकि प्यार और वार में सब जायज है कि कहावत सुनी थी, लेकिन उस पर अमल नहीं करना चाहते थे। श्रीमान एक्स का मानना था कि हर कहावत तर्कसंगत हो, ऐसा भी नहीं है। कई कहावतें तो परिस्थितियों वश बना ली गई थी, पर हर परिस्थिति में उन्हें लागू करना ठीक नहीं। साथ ही उन्हें किसी नेता के पीछे घूमना पसंद नहीं था। कलाकार मन बहुत विद्रोही और भावुक होता है। उन दिनों बहुत सारे नेता विश्वविद्यालय में इसलिए एडमिशन लिए रहते थे कि उनको चुनाव लड़ना है। पिताजी की उम्र को होने को आए थे, पर प्रण था कि बिना चुनाव जीते विश्वविद्यालय नहीं छोड़ना है। सो अभी तक लगे पड़े थे। इसमें लड़कियां भी पीछे नहीं थीं कि चुनाव जीतने के जितने भी हथकंडे हो सकते थे सब आजमाए, और वो काम भी आए। खैर, ये तो हुई माहौल की। इसी माहौल में बहुत सारे प्रेम प्रसंग हिलोरे ले रहे थे, लेकिन जो खुद भंवर में हो उसे दूसरे का डूबना कहां दिखाई देता है, इसलिए इस मामले में कोई किसी और से कुछ सीखना नहीं चाहता।

काला झाला लिबास क्यों, रेशम पहनो कपास क्यों, फन ये जादूगरी का है, अरमा तुमको परी का है, तो किपला मारो मंत्र।

आखिर वो दिन आ ही गया जब श्रीमान एक्स को सुश्री वाई से हैप्पी न्यू ईयर बोलना था। कार्ड खरीद लिया गया था पर उस पर दिल के जज्बात उतारना बाकी था। सोचा चलो विश्वविद्यालय में ही लिख देंगे। बड़े उत्साह, घबराहट और न जाने कितनी भावनाओं की खिचड़ी के साथ पहुंचे। अब खिचड़ी क्या, तहरी कहना ज्यादा सही रहेगा। कौन सी भावना का प्राधान्य है समझ में नहीं आ रहा था। साइकिल स्टैंड में साइकिल खड़ी की, हिंदी विभाग की तरफ पहुंचे कि कोई दिखाई नहीं दिया। सोचा चलो बरामदे में बैठकर कुछ न्यू ईयर की कविता बनाई जाए। अचानक सुश्री वाई की झलक दिख गई। अब श्रीमान एक्स के हाथ कांपने लगे, कुछ ठीक से लिखा नहीं गया। उन्हें बुलेट मोटरसाइकिल की धक धक सुनाई पड़ने लगी, लेकिन वो उन्हीं के दिल की धड़कन थी जो बेतहाशा धड़क रही थी। जैसे तैसे कुछ सामान्य सा लिखा, आपको नववर्ष की शुभकामनाएं, आप सदा प्रसन्न रहें। मतलब जैसे आशीर्वाद दे रहे हूं। ये लिखने में विरोधाभासी भावनाओं का ज्वार था। हाथ ऐसे कांप रहे थे जैसे बर्फ पड़ रही हो, 4 डिग्री तापमान हो। पसीना ऐसे छूट रहा था जैसे मई जून की दोपहरी हो। इन्हीं भावनाओं को समेटे हिमालय पर जाने जैसा साहस जुटाकर सुश्री वाई को खोजते खोजते श्रीमान एक्स मनोविज्ञान विभाग में पहुंचे। दूसरे तल पर सुश्री वाई अपनी सहेली के साथ खड़ी अपनी ही धुन में बतिया रही थी। पहले तो श्रीमान एक्स को लगा कि बस इनको ऐसे ही खड़े देखते रहे, उसकी मुस्कुराहट को जीते रहे।

0: लेकिन फिर ख्याल आया और सोचा कि बड़ी हिम्मत जुटाकर यहां तक आया हूं, बात आगे बढ़ा ही दी जाए, फिर कब मौका मिले पता नहीं, फिर दोबारा इतनी हिम्मत जुटे न जुटे। आगे बढ़ गए, कांपते गले से कहा, हेलो। वो बोली, जी कहिए। जी कुछ नहीं है, हैप्पी न्यू ईयर। मतलब हैप्पी में इतनी मुर्की थी कि कोई संगीत का उस्ताद सुन लेता तो पूछ बैठता, भैया कितने दिनों का रियाज है। बस इतना ही कह पाए थे श्रीमान एक्स, और बदले में थैंक यू मिल गया था। उस कंपन को शब्दों में नहीं लिखा जा सकता, उसका दोबारा अभिनय भी नहीं किया जा सकता। वो दिन है और आज का दिन, लोग पल भर के साथ में परिवार बना लेते हैं, लेकिन श्रीमान एक्स उन लम्हों को अभी तक किताबों में रखे गुलाब की तरह संजोए हैं।
1: आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार

दिनों की बात है। अभी आप सुन रहे थे अरुण शेखर की लिखी ये गीतों भरी कहानी। वाचन स्वर अरुण शेखर का था, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की।

0: देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हिसार के प्रसारण।
3: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
4: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
3: क्या ये जांच उपलब्ध है?
5: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
6: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
5: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
6: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
7: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
0: आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम हेलो हिसार।
8: हेलो हिसार,
9: हेलो हिसार,
10: हिसार।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हिसार केंद्र से एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, वक्त है कार्यक्रम हेलो हिसार का। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम में कौन है हमारे पहले कॉलर। हेलो हिसार।
1: मानो, मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो के सारा मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति मथुरा उत्तर प्रदेश से वार्तालाप कर रहा हूँ। मानवर, काफी दिनों पहचाना आपसे वार्तालाप करने का अवसर प्राप्त हुआ है।
0: मुझे भी बड़े लंबे अरसे के बाद आपसे बात करने का मौका प्राप्त हुआ है। तो प्रजापति जी, क्या करते हैं आप?
1: मानवर, मैं तो सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। घर पे बच्चों के साथ में आनंद पूर्वक रहते हुए रेडियो और आकाशवाणी से जुड़ा रहता हूँ। कार्यक्रम सुनते रहता हूँ। सूचना शिक्षा मन में भरपूर कार्यक्रम आते हैं और मेरा वक्त जो है रेडियो के साथ में गुजरता है और मैंने अपना साथी रेडियो ही बना रखा है।
0: सेवानिवृत्ति के बाद भी काफी ऊर्जा जो है ना आपने संचय कर रखी है।
1: जी धन्यवाद धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है आपसे वार्तालाप करके और प्रफुल्लित गदगद हो जाता है जब हेलो हिसार में फोन लगता है और हमारी पसंद के गीत प्रसारित होते हैं।
0: बताइए क्या सुनेंगे आज?
1: मानवर, आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है ऊंचे लोग, महेंद्र कपूर साहब के साथ में लता जी ने गीत गुवाया है। रे मेरे प्यार के राही, बहुत ही सुंदर सुना गीत है, आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ हेलो हिसार में।
0: ठीक है, सुनिएगा आपकी पसंद का ये नगमा।

0: हेलो हिसार
1: जी योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से। अब
0: और बताइए क्या चल रहा है आजकल।
1: ये भी है, देखिए बारिश तो इस बार कुछ पता नहीं चल पा रहा है और उसके लिए थोड़ा सा खेती बाड़ी काम भी पिछड़ा हुआ है।
0: बारिश ने तो इस बार धोखा दे दिया है। देखिए किसान जो आदमी है ना उसकी खासियत है कि इतने धोखे खाने के बावजूद भी वो सारे देश के लिए अन्न पैदा कर ही देता है।
1: जी, और हमेशा उम्मीद में रहते हैं भैया।
0: हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो आपकी उम्मीदें ईश्वर तो पूरी पता नहीं कब करेंगे, लेकिन आज हम आपकी उम्मीदें पूरी करने के लिए जो हैं वो यहाँ बैठे हैं। बताइए कौन सा गाना आप उम्मीद कर रहे हैं आकाशवाणी हिसार से।
1: सावन को आने दो का टाइटल सॉन्ग। हमारे कुछ मित्र हैं, श्रीपाल गोयल जी, लोकेन वर्मा जी, दिलीप आहूजा जी, रोशन देवांगन जी, तुकाराम जी, संतोष वैष्णव जी, मुकेश शर्मा जी, और राम स्वरूप गुप्ता जी, दिनेश देवांगन जी, और तमाम साथी जितने भी सुन रहे
0: जिसके
1: हैं।
0: जीवन में इतने मित्र हों वहां सूखा कैसे पड़ सकता है योगेश भाई।
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
0: सुनिएगा आपके और आपके सभी मित्रों के लिए फिल्म सावन को आने दो का ये गाना।

0: अभिसार।
1: अनुप कुमार भट्टाचार्य बात कर रहा हूँ। कृष्णनगर डिस्ट्रिक्ट है, श्रीभूमि आसाम से तालुका थे।
0: कैसे हैं आप
1: जी? मसाला बहुत अच्छा हो, बढ़िया हो, और खास करके मतलब जब फोन अवेल होता है तो एकदम बाकी हमारे तन मन सब खुश हो जाते हैं।
0: बताइए क्या सुनेंगे आज आप आकाशवाणी हिसार से?
1: दुल्हन बोलू मैम, ये सर दुल्हन बोलू
0: जी।
1: यादों के भंवर में एक पल हमारा हो,
0: क्या
1: खिलते चमन में एक गुल हमारा हो, जब याद करे आप अपने दोस्तों को, उन नामों में बस एक नाम हमारा हो।
0: तो यकीन मानिए आपका नाम सबसे ऊपर है।
1: फिल्म का नाम तो पता नहीं है, लेकिन गाने का बोल ऐसे है, ये सिलसिला है प्यार का ये चलता रहेगा, ऐसे करके गाने हैं। कुछ दोस्तों को मैं याद करता हूँ। पहले हमारे त्रिपुरा से अविनाश जी, दिलदार भाई
0: जी,
1: और उसका नाम है श्रीकांत जोशी जी, और अमर सिंह साहू जी, और कश्मीर से पुरुषोत्तम कुमार जी के लिए, और आपके लिए आनंद जी,
0: आपके लिए और आपके सभी दोस्तों के लिए। सुनिएगा आपकी पसंद
1: you.
0: का ये गाना।

0: हेलो हिसार
1: मैं गांव पुनिया से विनोद जी बोल रहा हूँ
0: जी। तो बताइए क्या सुनेंगे आज?
1: सोलह सुगनम का सुना दीजिए गाने के बोल वो बताता हूँ। फिर उठा तो इतनी दूर चले जाऊंगी सॉरी वो सुना दीजिए।
0: ये आपने नोट किया है जो आपने कॉपी में देख के बताया है मुझे?
1: हाँ नोट किया था जी
0: मेरी याद। तो सुनिएगा विनोद जी आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो भाई साहब,
1: भैया मैं कोदवा साज छत्तीसगढ़ से राम स्वरूप गुप्ता बोल रहा हूँ भैया।
0: कैसे हैं राम स्वरूप जी?
1: बढ़िया भैया, बहुत मुश्किल से फोन लगे भैया, बहुत दिन बाद लगा, कम से कम 3-4 महीने बाद।
0: जो चीजें मुश्किल से मिलती हैं उन्हीं का मजा आता है
1: नहीं वो
0: ना?
1: ठीक है भैया, लेकिन आज मुश्किल से लगे ना भैया।
0: लेकिन अच्छी बात है कि आप आ गए हैं हमारे कार्यक्रम में, स्वागत है आपका। बताइए कुछ अपने बारे में, क्या करते हैं?
1: मैं तीर्थ यात्रा काम करता हूँ भैया, सवारी इकट्ठे कर तीर्थ यात्रा घुमाने के लिए जाता हूँ।
0: अरे वाह, क्या बात है, आप तो पुण्य कमा रहे हैं।
1: तब आप ही लोगों का आशीर्वाद भैया, कुछ कुछ भगवान का भी आशीर्वाद है, सवारियों का आशीर्वाद है।
0: तो कहाँ कहाँ घुमाते हैं आप?
1: अभी 3 तारीख को यहाँ से आया हूँ, केदारनाथ बद्रीनाथ और नेपाल अपना ऋषिकेश द्वार से जनकपुर और सीतामढ़ी कर गया था, मथुरा वृंदावन और प्रयागराज और इधर भी गया था बनारस वगैरह।
0: फिर तो लोग आपको बहुत दुआएं देते होंगे।
1: हाँ अभी अब सब आशीर्वाद देते रहे तो ये ताकि अच्छा भी घुमा दें, अच्छा से व्यवस्था कर दें, तभी पसंद करते हैं भैया सवारी लोग।
0: बहुत बढ़िया, बहुत ही पुण्य काम कर रहे हैं आप। ईश्वर आपके काम में दिन दोनी रात चौगुनी उन्नति करवाए। बताइए आज क्या सुनेंगे आकाशवाणी हिसाब
1: आज
0: से?
1: भैया सुंदरी पवन पवन पुरवैया अनुराग मौसमी जी और विनोद मेहरा की फिल्म लता ताई का आवाज है भैया उसमें।
0: आपकी पसंद पर सुनवा रहे हैं फिल्म अनुराग का ये गाना।

0: हेलो हिसार
1: जी, शर्मा जी नमस्कार।
0: नमस्कार जी। ना
1: आपको आनंद शर्मा जी है ना जी?
0: जी मैं आनंद शर्मा बोल रहा हूँ।
1: शर्मा जी मैं आपका बहुत पुराना फैन, लेकिन आपके साथ नाराजगी के साथ
0: देखिए नाराजगी अपनों से ही होती है साहब।
1: आप कभी भी हमारा व्हाट्सएप शामिल नहीं करते। गांव पांडु पिंडारा जिला जींद से बादल सिंह गिल।
0: ये तो आपकी बात गलत है कि मैं आपका नाम कभी शामिल नहीं करता।
1: एक बात हो
0: जी,
1: भूख तो मेरे को 10 रोटिया की है, खाना मिले एक रोटी तो क्या पेट भर जाएगा
0: क्या बात है अब तो देखिए मैं निशब्द निरुत्तर हो गया हूँ जी। अब मेरे पास कोई इस बात का जवाब नहीं है। चलिए आपकी शिकायत जो आगे से नहीं होगी इस बात का
1: जी,
0: मैं आपको
1: बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं तो आपका बहुत पुराना फैन हूँ आपकी आवाज का।
0: बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। बताइए आज क्या सुनाऊं आपको।
1: पहले तो मैं कुछ नाम जोड़ना चाहूंगा
0: जी।
1: गाँव पांडु पिंडारा जिला जींद से बादल सिंह गिल, कमलेश, तीनू, प्रीति, डॉक्टर अंकित गिल और डॉक्टर बानिका। और अब फिल्म है जी दीवाना, पुराने फिल्म है शर्मा जी ये
0: जी।
1: हम तो चलते अपने गांव सबको राम राम मुकेश की आवाज में।
0: ठीक है बादल सिंह जी, आपकी पसंद पर फिल्म दीवाना का ये गाना।

0: हेलो हिसार,
1: राम कुमार इवाड़ बात कर रहा हूँ साधु शहर से।
0: कैसे हैं राम कुमार जी?
1: बढ़िया सर जी, आप कौन बोल रहे सर?
0: मैं आनंद बोल रहा हूँ।
1: आनंद सर जी नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार जी, बताइए क्या सुनेंगे आज?
1: सर कामचोर फिल्म का कोई भी गीत सुना दीजिए।
0: ठीक है राम कुमार जी, आपकी पसंद पर सुनिएगा फिल्म कामचोर का ये गाना।

0: हेलो जी सर,
1: मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बचोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: प्रेम जी कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है। आप बताइए, आप कैसे हो?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप अपने बारे में कुछ बताएं।
1: जी, मैं खेती किसानी का काम करता हूँ सर, और एक भजन गायक भी हूँ।
0: अरे वाह, इसके अलावा और क्या?
1: हमारा 8 लोगों का ग्रुप बना हुआ है।
0: जी
1: जी उसमें हम 4 गाने वाले हैं, 2 हारमोनियम बजाते हैं, 1 ढोलक और 1 तबला बजाते हैं।
0: बहुत अच्छा, हमारे श्रोताओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे?
1: जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे, आकाशवाणी ने 90 साल पूरे किए हैं
0: जी।
1: उसके लिए आकाशवाणी को बहुत बहुत बधाई, और आकाशवाणी और श्रोताओं का साथ ऐसा ही बना रहे, आकाशवाणी निरंतर ऊंचाइयों को छूती रहे, और श्रोताओं का साथ आकाशवाणी को मिलेगा, क्योंकि अब आकाशवाणी मोबाइल ऐप से आने लगा है
0: जी।
1: जी उससे मतलब हर राज्य के हर श्रोताओं को हर आकाशवाणी सुनने को मिल जाती है।
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
1: और उसके साथ में आपको बताओ, स्पष्ट प्रसारण मिलता है ना, तो श्रोताओं की संख्या काफी बढ़ चुकी है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, क्या सुनना चाहते हैं आज?
1: जी सर, फिल्म का नाम हीरो और गाने के बोले तू मेरा हीरो है।
0: ठीक है प्रेम सिंह जी, सुनवाते हैं आपको आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो हिसार,
1: मैं जयवीर प्रजापत बोल रहा हूँ जी, गाँव सांगा तरफ्याम। किससे बात कर रहे हैं जी?
0: आप बात कर रही हैं कुमार रोहित से। और जयवीर जी कैसे हैं?
1: तो बढ़िया जी, अपने और आकाशवाणी परिवार छोड़ाओ।
0: बहुत बढ़िया। और क्या कर रहे हैं आजकल?
1: कभी गर्मी हो जाए कभी काम, तो कुछ नहीं कर रहे जी फिलहाल।
0: जयवीर जी, मौसम का मिजाज तो ऐसा ही है, बदलता रहता
1: हाँ,
0: है। कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: जनाब जी सारंगा।
0: सारंगा फिल्म जी, गाना
1: हाँ,
0: बताइए
1: मुकेश और लता जी के बाद में लागे तुम से लगन साथी छूटे ना,
0: जी।
1: साथी
0: जयवीर
1: छूटे।
0: जी, आपको और आपके साथियों को हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: तो ये था आज का हेलो हिसार। इस पहले अंक से अब मैं विदा चाहूंगा। इजाजत दीजिए अपने दोस्त आनंद को, आपसे फिर मुलाकात होगी रविवार शाम 5 बजे।
1: हेलो हिसार।
2: हेलो हिसार।

0: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
1: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
0: क्या ये जांच उपलब्ध है?
2: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
3: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
2: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
3: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
4: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: श्रोताओं, संदेश से पहले आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो हिसार। FM बैंड 102.3 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हिसार के प्रसारण।

एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हिसार। श्रोताओं, अब से चंद लम्हों के बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से। प्रतीक्षा के बस चंद लम्हे और हमारे साथ।

0: गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर शामिल होने की अपील की।
1: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही अपने आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज कहा कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि AI विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यी जांग दे थापा से मुलाकात की। चर्चा शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर केंद्रित रही। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों का त्वरित निवारण और व्यापार करने में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को लंदन में आयोजित वार्षिक यूके इंडिया पुरस्कार में भारत और ब्रिटेन के संबंधों को उन्नत बनाने में असाधारण नेतृत्व के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री गोयल ने कहा कि यह सम्मान सरकारों, व्यवसायों, शिक्षाविदों, संस्कृति और जीवंत प्रवासी समुदाय के उन सभी सेतु निर्माताओं का है जो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में निरंतर योगदान दे रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि 15 अगस्त से प्रभावी होने वाला भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता ब्रिटिश संसदीय इतिहास में सबसे तेजी से लागू होने वाला व्यापार समझौता बन जाएगा। कोलकाता के तारातला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली प्राथमिकी में नामजद 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये प्राथमिकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल की सिफारिश के बाद दर्ज की गई थी। बेलफास्ट में 2 मैचों की T20

0: मैच भारत और आयरलैंड के बीच खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 102.3 MHz पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको जानकारी दे दें आज और कल हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में उनके समय के अनुसार। पहले आज के शेष आकर्षण, अरुण का समय।

ईश वंदना का हमारा कार्यक्रम है भक्ति संगीत। आप सुन सकते हैं आज शाम 6:20 पर, 6:30 पर युवा साथी सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवा उमंग। खेती किसाना सेती आप सुन सकते हैं आज शाम 7:00 और 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम बाहरे गांव। पंजाबी लोकगीत आप सुनेंगे आज रात 8:00 और खुला आकाश का प्रसारण होगा रात्रि 8:30 पर। संदेश आपके गीत हमारे, यह है व्हाट्सएप बेस्ड कार्यक्रम जो आप सुनेंगे आज रात 10:00। तो ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले हमारे शेष कार्यक्रमों की और अब कल के आकर्षण और उनका समय।

श्रोताओं, कल हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी 5:55 पर। 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम लोकरंग और सुप्रभात आप सुन सकते हैं कल प्रातः 7:40 पर। नमस्ते हिसार ये कार्यक्रम प्रसारित होगा कल प्रातः 10:00। इसी बीच 1:05 पर रिले होंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से।

श्रोताओं, कल शाम 5 बजे आप सुनेंगे सोशल मीडिया पर आधारित संदेश आपके गीत हमारे कार्यक्रम। 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युवा उमंग और भक्ति संगीत आप सुन सकते हैं कल शाम 6:20 पर। किसानवाणी कार्यक्रम आप सुनेंगे कल शाम 7 बजे और 7:30 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम हमारे गांव। श्रोताओं, कल रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम और कल रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो हिसार का पुनः प्रसारण। तो ये थी जानकारी आज और कल हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में उनके समय के अनुसार। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी हिसार। आइए श्रोताओं, अब प्रादेशिक समाचारों के लिए हम आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी चंडीगढ़, प्रतीक्षा के बस चंद लम्हे और हमारे साथ।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में नशे की रोकथाम के लिए संयुक्त कार्यबल बनाने और नशा पीड़ितों के लिए और नशा मुक्ति व पुनर्वास केंद्र खोलने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। हरियाणा के वन मंत्री राव नरबीर सिंह ने रेवाड़ी के गांव बुटपुर में राव मोहर सिंह जैव विविधता पार्क और अमृत सरोवर का शिलान्यास किया और हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने नशाग्रस्त लोगों को मानसिक तौर पर मजबूत करने और उनके पुनर्वास के लिए काम करने का आह्वान किया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। श्री शाह आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की।
1: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: गृहमंत्री ने कहा कि मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा। श्री शाह ने कहा कि नशा मुक्त भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 3 वर्ष का रोड मैप 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित रहेगा।
1: इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 26 से 29 का जो रोडमैप है वो 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित। पहला स्तंभ है एनफोर्समेंट, इंटेलिजेंस और ऑपरेशंस। इसका उद्देश्य पूरे नेटवर्क पर लक्षित इंटेलिजेंस लीड कार्रवाई करें और उनके नेटवर्क को नष्ट कर दें। दूसरा है प्रीकर्सर्स एवं सिंथेटिक ड्रग कंट्रोल। उत्पादन स्तर पर ही हमने नशे को रोकने की रणनीति अपनानी पड़ेगी। और कैपेसिटी बिल्डिंग, कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग जो तंत्र को सक्षम और आधुनिक बनाने के लिए 4वें स्तंभ की रचना की गई है।
0: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में नशे की रोकथाम के लिए ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सशक्त संयुक्त कार्यबल बनाया जाएगा जो नशे की बिक्री को रोकने और इसके कारोबार में लगे व्यक्तियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि साथ ही नशा पीड़ितों के लिए प्रदेश में और अधिक नशा मुक्ति व पुनर्वास केंद्र खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री आज चंडीगढ़ में हरियाणा सिविल सचिवालय में हरियाणा विजन 2047 के तहत सामाजिक न्याय तथा अधिकार अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय सेवा विभाग के अगले 5 साल की कार्य योजना की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने उपस्थित गण को नशे की रोकथाम में सहयोग देने और परिवार, समाज व देश को नशा मुक्त करने में सहयोग देने की शपथ भी दिलवाई।
2: युवा किसी भी राष्ट्र की मुखिया होते हैं तथा युवाओं की शक्ति का समाज एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। देश की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हम आज नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं न केवल समुदाय, परिवार, मित्र बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त कराएंगे, क्योंकि बदलाव की शुरुआत अपने आप से होनी चाहिए।
0: श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में नशे पर पूर्ण रोक लगाने के लिए इसकी बिक्री के नेटवर्क को तोड़ना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पंचायत और सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी वाला यह विशेष कार्यबल ऐसे स्थानों को चिन्हित करेगा जहां नशे की बिक्री होती हो और नशे के सौदागरों के खिलाफ

0: खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। आकाशवाणी हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम का प्रसारण करेगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। हरियाणा के वन पर्यावरण एवं वन्य जीव मंत्री राव नरवीर सिंह ने आज रेवाड़ी के गांव बुढ़पुर में राव मोहर सिंह जैव विविधता पार्क और अमृत सरोवर का शिलान्यास किया। श्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि 30 एकड़ में विकसित होने वाले इस पार्क में 150 से अधिक प्रजातियों के पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। इनमें औषधीय पौधे भी रोपित किए जाएंगे। पार्क में ओपन जिम के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी होंगी। कैबिनेट मंत्री ने ग्रामीणों से पार्क विकसित करने में भरपूर सहयोग देने का आह्वान करते हुए कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम एक पेड़ माँ के नाम में भागीदार बने और ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाकर उनके पेड़ बनने तक उनकी देखभाल भी करें। आज अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर हिसार में नशा मुक्त भारत पखवाड़े का राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि नशे के कारोबारियों को सलाखों के पीछे पहुँचाया जा रहा है।
1: नशा मुक्त भारत अभियान नशे के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान हमने चला रखा है पूरे देश के अंदर। नशे से जुड़े हुए लोगों को जहां हम सलाखों को पीछे भेजने का काम कर रहे हैं, वहां पर जो हमारे बच्चे नशे से ग्रस्त हैं, उनका बचाव भी हो, उनका पुनर्वास भी हो और वो मुख्य धारा में जुड़कर देश और समाज को मजबूती से काम करें, इस प्रयास में हम लगे। सरकार के प्रयास जितने होते हैं वो होते हैं, परंतु जब तक समाज का योगदान ना मिले इससे लड़ना इतना आसान नहीं है।
0: उन्होंने सभी से इस मुहिम में योगदान देने और नशे से ग्रस्त लोगों के पुनर्वास में सहयोग देने की अपील की।
1: जो नशे के लोग उच्च पेट में आ रहे हैं उसका एक बीमार की तरह इलाज कराना पड़ेगा, ना कि एक आदत छुड़वाने के लिए उसके ऊपर कोई मारपीट करें, उसको दरवाजे के पीछे बंद रखें या चैन से बांधे, इस प्रकार का नहीं चलेगा। तब उसको ये दिमाग में बिठा देंगे कि आप बीमार हो, आप हैचल नहीं, आप छोड़ भी सकते। उनको इस बात की प्रेरणा, उनको मनोबल देना पड़ेगा।
0: भारतीय जनता पार्टी की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने राष्ट्र प्रथम के संकल्प को साकार करते हुए वैश्विक मंच पर अपनी पहचान को नए आयाम दिए हैं। वे आज हिसार में आयोजित अभिनंदन समारोह में पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं गणमान्य नागरिकों को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि आज भारत केवल दुनिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाला देश नहीं, बल्कि विश्व को नई दिशा दिखाने वाला राष्ट्र बन चुका है। बाद में एक पत्रकार वार्ता में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और बूथ पर जाकर काम करना संगठन के लिए बहुत जरूरी है।
2: SIR का काम पूरे प्रदेश में चालू हो चुका है। जो पहले वाली वोटर लिस्ट थी, दैट इज नल एंड वॉइड नाउ। जितने लोग एन्यूमरेशन फॉर्म भरेंगे, अपने दो फोटोज देंगे और साइन करके देंगे, तभी उनकी नई वोटर लिस्ट में, ड्राफ्ट लिस्ट में वोट आएगी। तो उसके लिए हमारी सरकार अच्छी तरीके से काम कर रही है, लेकिन संगठन को भी साथ में सहयोग करना पड़ेगा।
0: हरियाणा राज्य मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो और पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से चलाए गए नशा मुक्त हरियाणा अभियान के समापन पर फरीदाबाद में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पुलिस उपायुक्त मुख्यालय हिमाद्री कौशिक मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। 11 जून को सिरसा स्थित चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय से शुरू हुई यह 16 दिवसीय नशा विरोधी जागरूकता यात्रा विभिन्न जिलों से होते हुए आज फरीदाबाद पहुंची। हरियाणा राज्य मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो के जागरूकता एवं पुनर्वास प्रभारी डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा ने कहा,
3: नशा समाज के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए नहीं, अपितु मानव जाति के लिए एक अभिशाप है। हमें नशे को ना कहने की आदत डाल लेना चाहिए। नशा किसी भी रूप में मनुष्य के लिए स्वीकार्य नहीं है। हमारा शरीर बना ही नहीं नशों के लिए। हमारा शरीर तो बिल्कुल फिट है। हमें नशे से दूर रहकर अच्छा जीवन जीना चाहिए।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में नशे की रोकथाम के लिए

0: संयुक्त कार्यबल बनाने और नशा पीड़ितों के लिए और नशा मुक्ति व पुनर्वास केंद्र खोलने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। हरियाणा के वन मंत्री राव नरबीर सिंह ने रिवाड़ी के गांव बुटपुर में राव मोहर सिंह जैव विविधता पार्क और अमृत सरोवर का शिलान्यास किया। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं ईश वंदना का हमारा कार्यक्रम भक्ति संगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ईश वंदना का हमारा कार्यक्रम भक्ति संगीत एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवा उमंग।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 102.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी हिसार का युवा उमंग कार्यक्रम। मैं विदुषी मेनुलिन आप सबका स्वागत करते हैं आकाशवाणी हिसार के युवा कार्यक्रम में। तो दोस्तों, आज का हमारा कार्यक्रम दो ऐसे विषयों पर आधारित है जो पहली नजर में अलग लग सकते हैं, लेकिन दोनों ही हमारे वर्तमान और हमारी पहचान से जुड़े हैं।
1: ऐसे कौन से दोनों विषय हैं विदुषी?
0: चलिए नीलम, सबसे पहले हम बात करेंगे इको एंजाइटी और युवाओं की, यानी बदलते पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज को लेकर युवाओं में बढ़ रही चिंता और समाधान की, और उसके बाद चलेंगे भारत की अनमोल विरासत की सैर पर, जहां हम जानेंगे अजंता और एलोरा गुफाओं के रोचक इतिहास और उनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले विषय से।
1: क्या आपने कभी जून की गर्मी में सोचा है कि बचपन के मुकाबले आज गर्मी को ज्यादा ही लगती है, या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते अचानक फ्लड की वीडियो देख ली हो, या फिर किसी शहर में 50 डिग्री टेम्परेचर की खबर देखकर एक पल के लिए सोचा हो यार फ्यूचर में क्या होगा? अगर ऐसा हुआ है तो आप अकेले नहीं है। आज दुनिया भर में कई युवा इस तरह की चिंता महसूस कर रहे हैं। इस फीलिंग को कहते हैं इको एंजाइटी। इको एंजाइटी कोई चिंता का विषय है क्या विदुषी?
0: अरे नहीं नीलम, एंजाइटी शब्द सुनकर डरने की जरूरत नहीं। इको एंजाइटी कोई बीमारी नहीं है, यह एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज को लेकर पैदा होने वाली चिंता और तनाव की भावना है। और सच कहूं तो मुझे लगता है कि

0: जनरेशन शायद पहली जनरेशन है जो क्लाइमेट चेंज को सिर्फ बुक्स में नहीं बल्कि अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रही है।
1: हाँ सही कह रही है विदुषी, हम रील्स में फ्लड देखते हैं, शॉर्ट्स में फॉरेस्ट फायर्स देखते हैं, न्यूज नोटिफिकेशन में हीट वेव्स देखते हैं और धीरे धीरे यह सब हमारे दिमाग में जमा होने लगता है।
0: अब आप सोच रहे हैं कि क्या हर एनवायरमेंटल कंसर्न इको एंजाइटी है?
1: नहीं, कंसर्न होना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जब कंसर्न इतना बढ़ जाए कि फ्यूचर को लेकर लगातार स्ट्रेस रहने लगे तब उसे इको एंजाइटी कहा जाता है। दोस्तों, स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट 2026 रिपोर्ट भी हमें पर्यावरण से जुड़ी बढ़ती चुनौतियों की तरफ ध्यान दिलाती है। बढ़ते हीट वेव्स, बदलते मौसम और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रहे हैं और इसका असर युवाओं पर भी पड़ रहा है। कई युवा अपने फ्यूचर, करियर, हेल्थ और आने वाली पीढ़ियों को लेकर चिंतित महसूस करते हैं। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ एक फीलिंग है या सिर्फ सोशल मीडिया का इफेक्ट है तो जरा एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं।
0: दोस्तों, अब जरा रिपोर्ट की बात करते हैं। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2026 रिपोर्ट हमें एक बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर दिखाती है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। कभी हीट वेव्स, कभी बाढ़, तो कभी अत्यधिक बारिश और कभी सूखा। सोचिए, जिस क्लाइमेट चेंज को हम अक्सर सिर्फ न्यूज की हेडलाइन समझते हैं उसका असर आज लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में दिखने लगा है और शायद इसी वजह से कई युवा अपने फ्यूचर को लेकर पहले से ज्यादा सोचने लगे हैं। लेकिन रिपोर्ट हमें सिर्फ समस्याएं नहीं बताती, यह हमें एक संदेश भी देती है कि बदलते पर्यावरण के प्रति जागरूक रहना और समय पर कदम उठाना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरत सिर्फ चिंता करने की नहीं बल्कि समझने और मिलकर काम करने की है।
1: बिल्कुल ठीक कहा विदुषी कि चिंता करने की जरूरत नहीं बल्कि समझकर और मिलकर काम करने की जरूरत है। कभी कभी युवाओं को लगता है कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, इसी फीलिंग को हेल्पलेसनेस कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, मुझे लगता है कि आज के युवाओं के सामने दो विकल्प हैं। पहला, या तो हम सिर्फ टेंशन लेते रहें या फिर टेंशन को एक्शन में बदल लें। मैंने देखा है कि जब युवा मिलकर किसी अभियान में भाग लेते हैं, जैसे प्लांटेशन ड्राइव करते हैं या अवेयरनेस फैलाते हैं, तो हेल्पलेसनेस कम और कॉन्फिडेंस ज्यादा महसूस करते हैं और यहीं से शुरुआत होती है इको एक्शन की। दोस्तों, जरा सोचिए 10 साल बाद भारत कैसा होगा, हमारे शहर, हमारा एनवायरनमेंट, हमारी जिम्मेदारी। हमारी जनरेशन को क्लाइमेट चेंज के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी भी मिली है और शायद सबसे ज्यादा जिम्मेदारी भी।
0: आज का हमारा हैशटैग है इको एक्शन।
1: इको एक्शन ये क्या है विदुषी?
0: ठीक है, इसके लिए नीलम, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ।
1: वो क्या है?
0: लास्ट टाइम आपने कब कोई पेड़ लगाया था?
1: मुझे याद नहीं।
0: या किसी और को प्लास्टिक कम यूज करने के लिए मोटिवेट किया था?
1: ऐसा भी मुझे कुछ याद नहीं।
0: हो सकता है जवाब तुम्हें याद ना हो, लेकिन शायद आज के बाद याद रह जाए। इको एक्शन की शुरुआत बहुत छोटी चीजों से हो सकती है।
1: कैसे?
0: साइकिल का इस्तेमाल, क्लोथ बैग का इस्तेमाल, पानी बचाना, क्लीन अप ड्राइव्स में भाग लेना या सिर्फ एक पेड़ लगाना।
1: क्या सिर्फ एक पेड़ लगाने से भी इको एक्शन की शुरुआत हो सकती है?
0: हाँ नीलम। चलिए तो अब एक छोटा सा रैपिड फायर करते हैं। आप खुद ही से पूछिए, क्या आप प्लास्टिक बोतल को रीयूज करते हैं? क्या आप पानी बचाते हैं? क्या आप पेड़ लगाने की कोशिश करते हैं या फिर आप शॉर्ट डिस्टेंस के लिए साइकिल या पैदल चलना पसंद करते हैं? अगर इनमें से किसी एक सवाल का भी जवाब हाँ है तो आप सॉल्यूशन का हिस्सा हैं। और कभी इको एंजाइटी महसूस हो तो कुछ बातें याद रखिए,
1: जैसे सिर्फ रील स्क्रॉलिंग मत कीजिए, हर वक्त नकारात्मक वीडियोस मत देखिए, सोशल मीडिया से इन्फॉर्म रहिए लेकिन दबाव मत महसूस कीजिए, अपना समय प्रकृति के साथ बिताइए, सकारात्मक कहानियां पढ़िए और अपने कंसर्न को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, इको एंजाइटी तब कब होती है जब हम खुद

0: को समस्या का दर्शक नहीं बल्कि समाधान का हिस्सा समझने लगते हैं।
1: तो चलिए इसी सकारात्मक संदेश के साथ सुनते हैं एक खूबसूरत गीत। इस गीत के बोल लिखे हैं इरफान सिद्दीकी ने, संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने। तो चलिए सुनते हैं फिल्म इकबाल का यह खूबसूरत गीत आशाएं। गीत के बाद हम बात करेंगे भारत की अद्भुत सांस्कृतिक विरासत अजंता और एलोरा गुफाओं की।

0: अब तक हमने इको एंजाइटी और युवाओं की बात, चलिए अब निकलते हैं भारत की एक ऐसी यात्रा पर जहाँ पहाड़ बोलते हैं, पत्थर कहानियाँ सुनाते हैं और हर दीवार पर इतिहास सांस लेता हुआ महसूस होता है।
1: ऐसी कौन सी जगह है नीलम?
0: ऐसी जगह मैं बताती हूँ तुम्हें विदुषी, पहले तुम मेरे को एक छोटे से सवाल का जवाब दो। क्या तुमने 20 रुपए के नोट को ध्यान से देखा है?
1: हाँ देखा तो है।
0: तो फिर तो उस पर बनी तस्वीर भी देखी होगी?
1: हाँ वो भी देखी है मैंने।
0: याद है तुम्हें वो तस्वीर?
1: याद तो नहीं है।
0: चलो मैं बताती हूँ, तो वो तस्वीर है अजंता की गुफाओं की।
1: अजंता की गुफाएं?
0: हाँ अजंता और एलोरा की गुफाएं।
1: वो क्या होती है नीलम?
0: आज हम बात करने वाले हैं भारत की इसी अनमोल विरासत अजंता और एलोरा की गुफाओं पर। विदुषी दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पत्थरों को काट कर बनाई गई गुफाएं भी खूबसूरत हो सकती है कि पूरी दुनिया उन्हें देखने आए?
1: क्या पूरी दुनिया उन्हें देखने आती है?
0: हाँ पूरी दुनिया उन्हें देखने आती है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी के पास स्थित अजंता और एलोरा की गुफाएं इतनी सुंदर हैं कि पूरी दुनिया उन्हें देखने आती है।
1: अच्छा, और मुझे लगता है कि इन्हें देखकर सबसे पहला सवाल हर युवा के मन में आता है कि आखिर इतने प्राचीन समय में जब ना कोई मशीन थी, ना क्रेन और ना ही कोई आधुनिक तकनीक, तब लोगों ने इतना अद्भुत निर्माण कैसे कर दिया?
0: हाँ ये तो सोचने वाली बात है।
1: तो सबसे पहले बात करते हैं अजंता गुफाओं की।
0: ये मुख्यतः बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। इनकी दीवारों पर बने चित्र और पेंटिंग्स दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। खास बात यह है कि पेंटिंग्स लगभग 2000 साल पुरानी मानी जाती है।
1: 2000 साल पुरानी?
0: हाँ अजंता गुफाएं सह्याद्री की पहाड़ियों में स्थित हैं। घोड़े की नाक जैसी आकृति में बनी ये गुफाएं प्रकृति और कला का अनोखा संगम प्रस्तुत करती हैं।
1: अच्छा तो दोस्तों, अगर आप ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफी या कंटेंट क्रिएशन में रुचि रखते हैं तो अजंता आपके लिए किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं। सोचिए जब मोबाइल कैमरा भी नहीं था तब लोग इतनी सुंदर कला कैसे रच पाए होंगे।
0: सोचने की बात है,
1: लेकिन एक दिलचस्प बात भी है नीलम।
0: वो क्या है?
1: तो चलिए मैं आपको बताती। कई सालों तक ये गुफाएं घने जंगलों के बीच रही थी। समय बीतता गया और दुनिया इनके बारे में लगभग भूल सी गई थी। फिर आता है साल 1819। एक ब्रिटिश ऑफिसर जॉन स्मिथ शिकार के लिए उस क्षेत्र में गया। जंगल के बीच उसे पहाड़ी में कुछ अलग सा नजर आता है। जिज्ञासा से वह उसकी तरफ बढ़ता है। जब वह अंदर जाता है और रोशनी करता है तो उसके सामने एक ऐसा अद्भुत और अनोखा दृश्य होता है जिसे देखकर वह हैरान रह जाता है।
0: वो दृश्य क्या था विदुषी जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है?
1: दीवारों पर बनी पेंटिंग्स, पत्थरों पर बनी मूर्तियाँ और कला का ऐसा अद्भुत रूप जो सदियों से चुपचाप उसका इंतजार कर रहा था।
0: अच्छा, और यहीं से अजंता को फिर से पहचान मिलनी शुरू हुई। दोस्तों अजंता मुख्यतः बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। यहाँ की पेंटिंग्स दुनिया भर में प्रसिद्ध है और आज भी कलाकार और इतिहासकार इन पेंटिंग्स को अद्भुत मानते हैं। और अब बात करते हैं एलोरा की गुफाओं की। विदुषी तुम्हें पता है अजंता की तो 30 गुफाएं हैं लेकिन एलोरा की कितनी गुफाएं हैं?
1: नहीं।
0: चलो मैं तुम्हें बताती हूँ, एलोरा की 34 गुफाएं हैं लेकिन इनकी खास बात सिर्फ संख्या नहीं बल्कि इनमें छुपी कला, इतिहास और अद्भुत शिल्प कला है। एलोरा को देखकर लगता है कि भारत की विविधता एक ही जगह समा गई है।
1: अच्छा ऐसा क्या?
0: हाँ यहाँ हिंदू, बुद्ध और जैन परंपराओं से जुड़ी गुफाएं एक साथ मिलती हैं और इसी वजह से एलोरा सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि भारत की सहिष्णुता और सांस्कृतिक समृद्धि का भी प्रतीक है।
1: और दोस्तों एलोरा की बात हो और कैलाश मंदिर का जिक्र ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जरा कल्पना कीजिए, एक ही विशाल चट्टान और उसी चट्टान को काटकर पूरा मंदिर तैयार कर दिया गया।
0: क्या चट्टान काटकर मंदिर तैयार कर दिया गया?
1: हाँ नीलम, ना अलग पत्थर लाए गए, ना ईंट और ना ही सीमेंट, बस कला, मेहनत और असाधारण कल्पना शक्ति। इसीलिए कई लोग कैलाश मंदिर को दुनिया के सबसे अद्भुत रॉक कट स्ट्रक्चर में से एक मानते हैं।
0: अच्छा, इसीलिए अजंता कला के लिए मशहूर है जबकि एलोरा अपनी अद्भुत शिल्प कला और कैलाश मंदिर के लिए।
1: हाँ नीलम, तो चलिए नीलम एक छोटा सा रैपिड फायर करते हैं। तो तुम मुझे बताओ कि ट्रैवल डेस्टिनेशन पर जाकर आप क्या करना पसंद करोगे, सिर्फ सेल्फी या उस जगह की कहानी भी सुनोगे?
0: विदेशी सेल्फी लेना तो आजकल किसे पसंद नहीं है, मैं भी लूंगी लेकिन उस जगह की कहानी जरूर जानूंगी।
1: तो फॉरेन डेस्टिनेशन या पहले इनक्रेडिबल इंडिया?
0: मैं तो अपने भारत के विषय में सबसे पहले जानना चाहूंगी विदेशी।
1: अच्छा, तो फोटो लेना या हिस्ट्री भी समझना?
0: अभी मैंने तुम्हें बताया था ना कि फोटो लेनी तो सबको पसंद है लेकिन इतिहास जानना भी बहुत जरूरी है, तो इतिहास भी जानूंगी।
1: सही कहा, और मुझे लगता है कि हम में से ज्यादा लोग दोनों करना पसंद करेंगे।
0: हाँ, क्योंकि लोग इतिहास भी जानेंगे और फोटो लेना तो आजकल सबका शौक ही है।
1: हाँ नीलम, और इसी बात के साथ आज का हैशटैग है नो योर हेरिटेज, क्योंकि जब हम अपनी विरासत को जानते हैं तभी हम उस पर गर्व कर पाते हैं।
0: दोस्तों, अजंता और एलोरा सिर्फ इतिहास नहीं सिखाती।

0: आपकी कला, रचनात्मकता और कल्पना शक्ति कितनी समृद्ध रही है, और शायद इसीलिए इन्हें देखकर हर बार एक ही बात दिल में आती है,
1: वाओ।

0: दोस्तों, आज की चर्चा से दो बातें सामने आती हैं। पहली, हमारा भविष्य हमारी जिम्मेदारी है और दूसरी, हमारी विरासत हमारी पहचान है। इसीलिए पर्यावरण के प्रति जागरूक रहिए और अपनी सांस्कृतिक धरोहर पर गर्व कीजिए।
1: अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा तो आपके विचार और सुझाव हम तक जरूर पहुँचाइए। आप आकाशवाणी हिसार के फेसबुक पेज पर जाकर युवा उमंग के बारे में अपना रिव्यू और फीडबैक साझा कर सकते हैं। तो इसी संदेश के साथ मैं विदुषी
0: और मैं नीलम
1: आपसे विदा लेते हैं। आप सुनते रहिए 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी हिसार का युवा उमंग कार्यक्रम। धन्यवाद।
0: फिर मुलाकात होगी एक नए विषय, नई जानकारी और नई ऊर्जा के साथ।
1: तब तक के लिए नमस्कार।

श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवा उमंग एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हिसार। लीजिए श्रोताओं अब सुनते हैं किसान भाइयों का पसंदीदा कार्यक्रम खेती किसाना सेती।

0: संदीप भाई देखो बढ़िया बारिश है, कड़िया कड़िया अच्छी हो रही और देखने वाली है कि जो अपनी खरीफ की बिजाई की टाइम सही आ रहा है बाजरे की फसल का। और ये दो चार दिन पहले ही देखा था वहां बूंद आई, कई जगह परसों भी आई काल भी आई, तो लगभग लगभग अपने जो इस हर के आसपास का इलाका में है ना बाजरे की बिजाई के लिए नमी है ना काफी मात्रा में सही हो रही है।
1: बिल्कुल, जो कि अपना जो बरानी क्षेत्र है विशेषकर महेंद्रगढ़, बयानी, चरखी दादरी, रेवाड़ी, गुड़गांव, हिसार, रोहतक, झज्जर और कुछ जो जींद का भी जो इलाका है वहां पर भी सावित्री बाई ने देखो इस बूंदाबांदी के बाद जो किसान भाई है अपने बाजरा की बिजाई के लिए तैयार हो गए हैं।
0: बिल्कुल है, देखो संदीप भाई ने कहा करें जो बारिश के पानी में बास मार के खेत में बिजाई कराना है तो जो अपनी जमा होगा ना फसल का वो बहुत अच्छा होगा। और अपने बाजरे की फसल खातर तो बारिश का पानी बहुत ही अच्छा हुआ है, इससे बारिश का पानी ना अपने बाजरे की फसल इतना बढ़िया माने, इतना टीवल टावला का तो नहीं मानती, तो सबसे बढ़िया पानी होया करे बारिश का। और बारिश की पानी में आप बिजाई करांगे, बत्तर पास बिजाई करांगे तो वह फसल अपनी न्यारी है उपजेगी।
1: बिल्कुल, और देखो जो बाजरा की यदि आप बात करा सावित्री बाई तो आप जो पशुओं का चारा के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सके हैं और अनाज के रूप में भी आप इसका प्रयोग कर सके हैं। और आजकल तो जो मिलेट्स के ऊपर जो विशेषकर जो लोगों का ध्यान है उसके कारण जो बाजरा है इसकी बिक्री भी किसान भाइयों की बहुत बढ़िया होने लग रही है।
0: बिल्कुल संदीप भाई सही कह रहे हो आप, एक बाजरा की ऐसी फसल है जो सूखन भी ओटले है, इसमें ज्यादा बारिश की या ज्यादा पानी की जरूरत बाद में नहीं होती। अगर आपका लग सही गया ना, क्या कहना जमाव सही हो गया ना बीज का, तो बाजरे की फसल बहुत अच्छी ढंग से पैदावार देगी। अगर हल्का सा पानी बाद में एक दो लगा देंगे या बारिश होगी उस पर भी अच्छा अपन मुनाफा बाजरे की फसल देगी।
1: बिल्कुल, और देखो सावित्री बाई एक सबसे अच्छी बात ये भी है कि आजकल जो रोग रोधी किस्में हैं वो भी लगातार आने लग रही हैं, और जो रोग रोधी किस्में आने लग रही हैं तो लगभग आप मान के चलो कि 95% जो फसलें हैं वो अपनी रोग रोधी हैं। और जो संकर किस्में हैं यदि आप वो बीजा तो देखो अपना जो दवाइयों पर होने वाला जो खर्च है वो भी बहुत कम हो जावा है। और आपने बताया कि यह जो फसल है इसने ज्यादा पानी की भी जरूरत को
0: संकर किस्म आपने बोला है चाहे भी 50 इस किस्म के बात करने लग रहे हैं। और यहाँ राज्य का जो सिंचित और असिंचित यानी सिंचित और बिरयानी दोनों क्षेत्र में यह आमतौर पर बोई जाव है और बहुत अच्छी अपनी ये किस्म है, अच्छी अधिक पैदावार देने की क्षमता रखे है। इसके दाने जो पैदावार है लगभग 13 क्विंटल प्रति एकड़ हो जाए है और सूखा चारे के रूप में इसका जो कड़बी भी काम आवे है या 24 क्विंटल प्रति एकड़ का हो जाए है। और यह मध्यम ऊंचाई वाली फसल है, अधिक फुटाव करने वाली फसल है, अपनी संकर किस्म है और यह बोने से पकने तक 76-80 दिन में पके तैयार हो जाए है। और इसके जो सिक्की का कारण है बहुत अच्छे घने दाने वाली और मध्यम मोटे दाने वाली हो है ने। और डाउन मिल्डी जो रोग हुआ ना जिन्हें बोला कोडिया रोग, इसके रोग रोधी किस्म अपनी है HHB50 संकर किस्म, यह है डाउन मिल्डी की रोग रोधी किस्म।
1: बिल्कुल, किसान भाई जो है बोने से पहले यदि संकर किस्म लगाएंगे तो सावित्री बाई अच्छा मुनाफा कमा सके हैं। इसी प्रकार से एक किस्म और भी है HHB60, यह जो संकर किस्म है यह भी हरियाणा राज्य में सिंचित असिंचित दोनों क्षेत्रों के लिए है। यह किस्म HHB50 किस्म से सूखे को अधिक सहन करने की क्षमता रखे है। इसके दाने तथा सूखे चारे की जो औसत पैदावार है वह है भाई जो दाना है वो होगा 13 क्विंटल और जो सूखा चारा है वो 44 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार आप ले इसका। हाँ, यह जो किस्म है यह मध्यम ऊंचाई के घने व गहरे सिट्टे वाली किस्म है, इसमें फुटाव जो है बहुत अधिक हुआ है और जो इसके दाने हैं यह मध्यम मोटाई वाले हुए हैं और बोने से 74 से 76 दिन का जो समय है यह किस्म लेवा है। और यह किस्म भी सावित्री बाई डाउन मिल्ड जो आपने रोग बताया था उसकी रोग रोधी किस्म है।
0: और बात करेंगे संशोधित किस्म की, सूखे चारे की उपज क्रम से इसकी 12.5-36 क्विंटल तक प्रति एकड़ हो जाए, इसकी उत्पादन क्षमता 15 क्विंटल प्रति एकड़ है और यह एक नई संशोधित संकर किस्म है। खाद और अपनी देसी खाद और रासायनिक खाद डालने से और भी अच्छे इसके परिणाम आज है, ये जोगिया रोग के रोग किस्म है।
1: बिल्कुल, और किसान भाई नोट कर ले जो बाजरे की किस्म है HHB94 भाई किस्म एक बार फिर से नोट कर ले HHB94, तो ये जो किस्म है किसान भाइयों ये अत्यधिक फुटाव एक साथ जो पकने वाली किस्म है भाई एक साथ पूरी तैयार हो जाओगी, जो ना होगा भाई आगे ती है या आगे से पूरी तैयार होगी।

0: पाचन जो है रेखड़ी ऐसा इसमें नहीं होगा, ये बहुत ही बढ़िया संकर किस्म है। दाना और चारा दोनों में इसकी भरपूर मात्रा है। दाने की यदि आप बात करें तो 14 क्विंटल तक पैदावार आप प्रति एकड़ ले इसका, हाँ। और सूखे चारे की यदि किसान भाई बात करा तो 45 क्विंटल तक प्रति एकड़ जो है अपने पैदावार मिल जाओगी। और अधिक उत्पादन के लिए इसमें जो है कोडिया रोग रोधी और कंगियारी जो रोग है उसकी सहनशीलता की क्षमता भी इस संकर किस्म में है। और इस संकर किस्म में खाद डालने पर और अधिक उपज भी किसान भाइयों या देश के है। और इसके जो सबसे बढ़िया बात है, यह फसल जो है गिरती नहीं है, ना इसका दाना जड़ता है, ये दोनों इस किस्म की विशेषता है। तो भाई फिर से एक बार नोट कर ले, किस्म है बाजरा की HHB94।
1: और भाई ये बात करा HHB117, यह भी बाजरा की एक संकर किस्म है। अलग अलग अवस्थाओं में इसकी उपज 9-15 क्विंटल प्रति एकड़ हो जाए। इसके पौधे औसतन ऊंचाई 210 सेंटीमीटर तक हुए हैं। इसके अच्छे फुटाव वाले किस्म है। इसका चारा भी स्वादिष्ट और पौष्टिक हुआ है। यह भी जोगिया रोग की प्रतिरोधी किस्म है। 70 दिन में पक्के तैयार हो जाए है। और इसकी एक मुख्य विशेषता है कि सिट्टे पकने पर इसके जो पौधे है ना नीचे हरे रहे हैं, तथा इसमें 160 क्विंटल प्रति एकड़ हरा चारा देने की क्षमता है। इसकी सिफारिश हरियाणा में सिंचित और बरानी दोनों क्षेत्रों में करी जा रहे हैं। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी यह अच्छी पैदावार देवे है। किस्म है HHB117।
0: और इसका साथ ही सावतीवान किसान भाई जो है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित एक किस्म है HHB146। ये जो किस्म है भाई ये भी अत्यधिक पैदावार देने वाली है। इसका जो दाना आप ही निकाल सका वो 9 से लेकर 15 क्विंटल तक जो है आप इसका उत्पादन ले सका है। और इसके साथ ही यदि आप कड़वी की बात करा तो कड़वी जो है भाई 40 से 56 क्विंटल प्रति एकड़ की जो पैदावार है इसकी क्षमता है। और जो ये किस्म है ये बहुत ही भाई उच्च बढ़ने वाली किस्म है और गिरती कम है। और जो इसका छिट्टा है वो बहुत ही लंबा मोटा और गुथा हुआ हुआ है। और जो ये किस्म है HHB146 ये जोगिया और कंगियारी बीमारी है वह रोग रोधी किस्म है। और 75 से 80 दिन में भाई ये पक्के तैयार हो जावे है। और इसकी जो विशेषता है भाई ये है कि यदि आप अच्छी देखभाल करा तो अत्यधिक पैदावार देने की क्षमता भी इसमें है और खाद पानी की अत्यधिक अनुकूलता इसमें है। और इसकी जो सिफारिश है वो पूरे भारत के लिए की गई है।
1: और एक किस्म है HHB197 और यह बाजरा की एक अद्भुत सुंदर किस्म है। इसके जो सिट्टे उनके ऊपर थोड़े से लंबे लंबे बाल भी हुए हैं, जिसके कारण पकने के कारण पक्षियों का नुकसान इसमें नहीं होता। इन पक्षी इसे ने कम खावे हैं और अधिक पैदावार देने वाली फसल है। 20 क्विंटल तक प्रति एकड़ देने की क्षमता रखा है। इसके दाने और सूखे चारे की औसतन उपज 14-46 क्विंटल तक प्रति एकड़ रहे हैं और 68-72 दिन में पक्के तैयार हो जाए है। यह भी एक अधिक फुटा वाली किस्म है, इसलिए इसके पौधों की दूरी 15-20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। जोगिया और कांगियारी बीमारियों तक रोग रोधी किस्म है।
0: और इसके साथ ही किसान भाई बोल सके हैं HHB216। ये जो किस्म है भाइयों ये संकर किस्म आप हरियाणा राजस्थान और गुजरात के ऐसे इलाके जहाँ पर पानी कम लाग गए है वहां पर आप इसमें लगा सका है। और इस संकर किस्म के जो सिट्टे हैं भाई वह बोरे लंबे बाड़ वाले हुए हैं जो कि पक्षियों से नुकसान को इसमें रोक सके हैं। देखो पक्षी बड़ा नुकसान पहुंचाए हैं जहाँ पर, तो इस किस्म में भाई लगा सके हैं। किस्म है HHB216। तो इसके जो दाने और जो सूखे चारे के औसतन है वो है भाई दाने आप लेस का हाथ 14 क्विंटल प्रति एकड़ और सूखा चारा आपने मिलेगा 44 क्विंटल प्रति एकड़। और अच्छा यदि आप इसका रख रखाव करा तो ये जो किस्म है भाई 20 क्विंटल तक पैदावार देने की क्षमता भी इसमें रखा है। और ये जो किस्म है 72 से 74 दिन में पक्के तैयार हो जावे है और ये भी रोग रोधी किस्म है।
1: और एक है HHB223 किस्म और ये हरियाणा पंजाब दिल्ली उत्तर प्रदेश गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश इनमें सब जगह है बोई जा सके सिंचित और असिंचित दोनों क्षेत्र में। और ये बात करें HHB226 HHB234 जहाँ अधिक वर्षा हुआ उसमें इसमें HHB234 की समाप्त बो सके हैं। बाजरे की बिजाई का सही टाइम चलने लग रहा है भाई, ये बाजरे की बिजाई का उपयुक्त समय 1 जुलाई से 15 जुलाई तक है। और जो असिंचित क्षेत्र थे उनमें भाई मान लो कि बारिश होगी तो आप कर सके 10 जून के बाद भी इसमें कर सके है। जब भी 15 मिलीलीटर वर्षा होने पर आप इसमें कर सको हो। यह मानसून की जो पहली बारिश हो जाए उसके बाद भी गजे करने का मतलब है संदीप।

0: कई बार मतलब अदरक बिजाई कर भी दी है, जड़ा जड़ा बारिश होगी, अच्छी बारिश हो गई थी, बिजाई सुबह होगी है।
1: बिल्कुल सावित्रीबाई, आपका कहने का मतलब ये है कि किसान भाई जो है प्री मानसून की जो बरसात हो जाए तो उसका फायदा उठा के भी अपने बाजरे की बिजाई कर सके हैं। और बाजरे की फसल की यदि हम बात करें तो सावित्रीबाई 4 से 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर बहुत है और खेत में उपयुक्त पौधों की संख्या असिंचित क्षेत्रों में लगभग 1.5 लाख से 1.62 लाख और जो सिंचित क्षेत्र है वहाँ पे 1.87 लाख से 2 लाख तक प्राप्त हो सके है।
0: और देखो भाई ठीक बांध बिजाई करके सुहागा पट्टा लाग गया आप अच्छी अपनी बारिश के बाद बिजाई करोगे तो बहुत अच्छी अपने बाजरे की उपज होगी और इस प्रकार आप अच्छी तरह टाइम टाइम पर खरपतवार का बचाव करके खरपतवार निकाल के कसूलत निकाल के हाथ से निकाल के आप अच्छी पैदावार ले सको।
1: बिल्कुल सावित्रीबाई, जो बाजरे की जो खेती है वह तो वैसे भी कम खर्चा वाली खेती की गई है तो भाई सतर्क रहे हैं और समय समय पर यदि उसकी निराई गुड़ाई करते रहे तो बहुत ही बढ़िया पैदावार
0: है। और संदीप भाई बाजरे का भाव बहुत अच्छा मिलने लग रहे हैं, कम खर्चे की खेती है, कम लागत की खेती है, भाव इसका अच्छा मिला तो हम तो भाई ने कहेंगे कि बहुत सोच समझ के इसकी अच्छे तरीके से आप खेती करोगे, अच्छी आलू देख के अच्छा बीज डालोगे, अच्छी पैदावार लेगे तो आप इसमें काफी अच्छा मुनाफा ले सको हो। और ये मैंने भैया का मनोरंजन भी करवा दे हैं।
1: तो भाई सुने ये रागनी।

मरम की मारी मरगी हो मन सोची।

आते ठीक के पड़गे सब तरिया ते ठीक के पड़गे आज बालम रंग रागे मेरे भरी सभा में ओए उजागर जो पिछले

जन्म के बाद मेरे डके कुछ करनी कुछ कर मैं गति भी पूरब ले के बाद मेरे ओ तेरे काम की न को नारे अस्ता बलम

करले पर में चढ़ गया बोलिया बिना जाता साजो मटकी पानी पड़ गया हो देखे मेरे अजय मेरे सजन मेरा सारा नक्शा जड़ गया हो बड़ी सभा में होया उजागर।

chukkal se piyo ईद पे साथे झगड़ जाते वो के जिए मैं जिए हो बच्चे आज तया गए भूप भर तेरी ना भी मत ना लियो ओ तेरी औरत है दो दिले की लाख

0: बिल्कुल। और किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए कि भाई जो भी वो किस्म लगाए हुए संकर किस्में लगाएं, और यदि किसी नर्सरी से किसान भाई यदि पौधे लेने लग रहे हैं तो उसका पक्का बिल लें, और जो नर्सरी है भाई वो ऐसी हो जहाँ पे आपको विश्वास हो कि वहां पर किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं होती। क्योंकि देखो शुरू में ही यदि हमने पौधी ऐसी नर्सरी से ले ली जहाँ पर किसान भाई को नहीं पता कि वो नर्सरी में किस प्रकार के जो पौधे उसकी बीज आवे है वह रोग रोधी है या नहीं है, कौन सी किस्म है, और बाद में किसान भाई 6 महीने खेचड़ा करे है और आखिर में नुकसान जो है किसान भाई ने उठाना पड़े है। क्योंकि धान की जो खेती है सावित्रीबान बड़ी महंगी खेती है, पानी के भी इसमें आप इन्हें खूब आवश्यकता हुआ है, और इसके साथ साथ जो खाद और रसायन है वह भी आप इन्हें भरपूर मात्रा में डालने पड़े हैं। तो भाइयों से गुजारिश करांगे कि यदि किसान भाई खुद नर्सरी तैयार करने लग रहे हैं तो संकर किस्मों की नर्सरी तैयार करें, और यदि किसी नर्सरी से आप पौध लेने लग रहे हैं तो अच्छी जांची परखी नर्सरी से ही आप पौध लें और उसका पक्का बिल जरूर ले लें।
1: और कोशिश करें भाई जब आप खुद खेती करने लग रहे तो आप नर्सरी भी खुद तैयार करें, ताकि आप उसका अच्छी तरह बीज का उपचार करके आप अपनी नर्सरी तैयार करोगे तो आप आपके खेत में रोग नहीं आवेगा। तो इस प्रकार आप बता दें भाई ने जो जो हमारी किस्में हैं धान की वो भाई ने बता दें HKR 127 या छोटे का दिवाली और अधिक उपज देने वाली किस्म है, इसके बिजाई से पकने तक 140 दिन का समय ले हुआ है, इसके चावल लंबे और पतले हुए हैं, यह किस्म जूठी कांगियारी के प्रति सहनशील।

0: बिल्कुल, और इसके साथ ही किसान भाई जो है HKR 126 जो किस्म है या छोटे कद की किस्म है भाई, 110 सेंटीमीटर तक इसके पौधे बड़े हैं और अधिक उपज देने वाली इंडिका जाति की भाई ये किस्म है। और इसका जो तना है सावित्री बान बड़ा मजबूत हुआ है। यह जो किस्म है बिजाई से पकने तक 140 दिन का समय लिया हुआ है और इसके चावल भी लंबे और पतले हुए हैं। यह सफेद पीठ वाले तेले व तना गलन रोग के लिए अवरोधी है, वह जीवाणुगत पत्ता अंगमारी के लिए भी यह सहनशील है और यह पानी की कुछ कमी को भी बर्दाश्त कर ले हुआ है। और इसकी जो औसत पैदावार है वह है भाई 27 क्विंटल प्रति एकड़।
1: और बात करें HKR 120, यह और भी छोटे कद वाली है किस्म है, अधिक उपज देने वाली इंडिका जाति किस्म है। इसका तना मजबूत हुआ है और यह नहीं गिरने वाली किस्म है। इसके चावल लंबे और पतले हुए हैं। यह बिजाई से पकाई तक 140 दिन का समय ले हुए हैं। यह जीवाणुज्य पत्ता अंगियारी और सफेद पीठ वाले तेले की अवरोधी तथा तना गलन के लिए सहनशील है। इसकी औसतन पैदावार 25 क्विंटल प्रति एकड़ है।
0: और इसके साथ ही किसान भाई हरियाणा शंकर धान एक जो है मैंने भी बोस कहे हैं, यह भी एक छोटे कद वाली है और 122 सेंटीमीटर तक जो है इसके जो पौधे हैं बढ़ जाएं और अधिक उपजाऊ देने वाले इंडिका जाति के जो संकर किस्म में भैया भी शामिल है। और इसका तना भी मजबूत, चावल लंबे और पतले, और बालियों में जो दानों की संख्या है वह अधिक है, पत्तियां चौड़ी है और हल्की हरी व सीधी जो है यह किस्म रहोगी। और बिजाई से पकने तक 139 दिन का समय जो यह ले हुआ है और ये किस्म भी सफेद पीठ वाले तेले व तना गलन रोग के प्रति सहनशील है। और इसकी भाई जो पैदावार है वह आप 30 क्विंटल प्रति एकड़ तक ले सका।
1: और ये बात करें किस्म है जया, ये छोटे कद वाली और अधिक देने वाली इंडिका जाति किस्म है। इसका तना सख्त है और यह भी गिरती नहीं है। यह बिजाई से पकड़ने तक 142 दिन का टाइम लेवा है। इसका चावल लंबा और मोटा हुआ है। इसकी औसतन पैदावार 26 क्विंटल प्रति एकड़ है।
0: और इसके साथ ही किसान भाई लगा सके हैं PR 106, और ये किस्म भी भाई छोटे कद की है, न गिरने वाली और अधिक उपज देने वाली इंडिका जाति की किस्म है। और इसके चावल लंबे और पतले हुए हैं। यह बिजाई से लेकर पकने तक 145 दिन का समय ले हुआ है और इसकी जो पैदावार है वह है भाई 24 क्विंटल प्रति एकड़। और इस किस्म में बीमारियों व कीटों का प्रकोप अधिक हुआ है, तो किसान भाई जब यह किस्म लगावे तो समय समय पर अपने कृषि वैज्ञानिकों के संपर्क में रहे ताकि बीमारियों से और कीटों से अपनी फसल न बचा सके।
1: और ये बात करांगे माध्य कम अवधि वाली किस्म, जो माध्य कम अवधि वाली किस्में हैं उनके बारे में भैया बता दे। HKR 47 छोटे कद की किस्म है, इंडिका जाति की किस्म है। इसका तना सख्त हुआ है, सख्त होने के कारण मतलब गिरता नहीं है। इसके दाने सुनहरे पीले रंग के हुए हैं और इसके चावल लंबे और पतले भी हुए हैं। यह बिजाई से पकने तक 135 दिन का टाइम ले हुआ है। और इसमें जूठी कांगियारी जो अर्धी गांठ रोग बोल रहे हैं ये बहुत कम आव है। इसकी औसतन पैदावार 26 क्विंटल प्रति एकड़ है।
0: और इसके साथ ही किसान भाई जो धान की किस्म है वह लगा सके हैं IR 64 भाई। ये जो किस्म है यह भी छोटे कद की है, न गिरने वाली और अधिक उपज देने वाली ये किस्म है। इसके जो चावल हैं वह लंबे पतले हुए हैं और ये जो है बिजाई से पकने तक 135 दिन का समय ले हुआ है। और जो यह किस्म है यह तना गलन रोग और सफेद पीठ वाले तेले के प्रति सहनशील है। और इसकी जो पैदावार है वो भाई ले सके हैं 23 क्विंटल प्रति एकड़।
1: और एक किस्म है HKR 46, यह किस्म छोटे कद वाली है, इंडिका जाति किस्म है। इसके चावल भी लंबे और पतले हुए हैं। इसका तना भी सख्त है, सख्त होने के कारण ये इसके पौधे भी पड़ते नहीं है। और इसकी जो ऊपर वाली पत्ती लंबी और सीधी हुए हैं। बिजाई से पकड़ने तक 135 दिन का टाइम लिया है। औसतन पैदावार 25 क्विंटल प्रति एकड़ है।
0: इसके साथ ही किसान भाई जो है वो कम अवधि वाली जो फसलें लगाना चाह रहे हैं तो उन्होंने भी किस्में बता दी वहां सावित्रीवान HKR 48 या जो किस्म है भाई है कम अवधि में पकने वाली छोटे कद वाली किस्म है और न ये गिरती है और कम समय में पकने वाली इंडिका किस्म है। और इसके जो चावल हैं वह लंबे और पतले हुए हैं और बिजाई से पकने तक यह जो है 118 दिन का जो है समय ले हुआ है। और बहुफसलीय पत्ती के लिए यह एक उपयुक्त किस्म है।
1: और बात करें इसकी भूमि की और इसकी चारिक स्थिति, दोमट से चिकनी दोमट मिट्टी जो गिल्ली होने पर नरम गारा बन जाए, उसमें सूखने और जिसमें

0: दरारें पड़ जाएं, धान के लिए अच्छी हो है, खारी और अच्छे और खराब जल निकास वाली भूमि भी मैं भी धान उगाया जा सके है।
1: बिल्कुल, और देखो पहले जुताई जो है आपने मिट्टी पलटने वाले हल से और बाद में हैरो से करनी है, और पौध रोपण से पहले खेत में पानी भर दें और खड़े पानी में 1 से 2 जुताई या कद्दू यानी अपनी कर लेना है, और पेडलर से करके ना सुहागा लगा के बढ़िया 11 जो है आपने खेत में तैयार कर लेना।
0: और छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के वैज्ञानिकों की सलाह लेके आप अगर खेत में धान की और बाजरे की बिजाई करोगे तो भाई अच्छा मुनाफा ले पाओगे। और इसी के साथ कार्यक्रम खेती किसान शक्ति का समय समाप्त हो, अपनी बहन सावित्री बुकाया ने
1: और भाई संदीप ने दे इजाजत,
0: सारे बन भाई ने राम राम।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करे। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोताओं, इस संदेश से पहले आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती किसाना सेती FM बैंड 102.3 MHz पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं कार्यक्रम मारे गांव।

0: कार्यक्रम हमारे गांव में बहन भाई का स्वागत कर रहे हैं आपकी बहन सावित्री
1: और भाई संदीप।
0: और संदीप भाई देखो बारिश का मौसम आ गया है और अपने विशेष सावधानी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हर साल बारिश के बाद बारिश में जो अपने हर घर मोहल्ला बुखार हो गया हारी बीमारी हो जाए तरह तरह के मच्छर हो जाए तो इनके बचाव की सावधानी खातर अपना शुरू होते ही उसकी ध्यान रखना पड़ेगा भी किस तरह पानी मच्छर के बचाव कर सके। अक्सर बारिश के बाद कभी मलेरिया की शिकायत हो जाए कि डेंगू की बुखार की वजह है और कभी एक बोला कि उसने हड़तों बुखार भी कह दिया बोला है वायरल बुखार हो गया तो तरह तरह के बुखार इसमें आते रहे हैं। और विशेष तौर पर अपन देखने में आऊंगा कि थोड़ा सा सितंबर के आसपास तो डेंगू और बीच बीच में मलेरिया तो लगभग ये सारी चीजें ऐसी हैं जो मच्छर तोड़ने वाली है। और मच्छर भी संदीप भाई एक डाल कर दोनों सारे अलग अलग डाल के मच्छर हुए हैं।
1: बिल्कुल। और बात तो सावित्री बाण आपने डेंगू की करिए तो भाई ये जो बुखार तीव्र वायरल संक्रमण वाला बुखार है। और सावित्री बाण जिस तरह आपने बताया कि भाई हाड़ तोड़ बुखार के नाम से भी इसमें जाना जा रहा है क्योंकि भाई जब डेंगू हुआ है तो इससे जो मरीज है उसके जोड़ा में दर्द होगा मांसपेशिया में दर्द होगा और हड्डियों में इतना दर्द होगा कि भाई उन्हें लागे हाथ में टूटन लग रहा है।
0: बिल्कुल। और बुखार इसमें भाई तेज बुखार हुआ है और 4-5 दिन या 6-7 दिन तक लागना पर तेज बुखार होना है तो समझ लेना चाहिए कि डेंगू के लक्षण है। और यह डेंगू जो बुखार है एक एडीज नामक मच्छर उसे काटने तो हुआ है और सबसे अच्छा इलाज इसका रोकथाम ही है क्योंकि अगर हम शुरू तक मच्छर नहीं पनपन देंगे तो इसका इलाज है क्योंकि अगर डेंगू किसी को हो जाए है तो देखो उसकी प्लेटलेट गिर जाए कई दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट भी रहना पड़ सके है प्लेटलेट भी चढ़ानी पड़ सके है और अगर नहीं उसकी भरपाई एक महीने तक नहीं हो पाती।
1: अच्छा एक चीज और भी सावित्री बाण भैया का मन में रोए है कि भाई मेरे एक बार डेंगू हो गया तो मेरा दोबारा डेंगू नहीं होगा तो ये भ्रांति भाई बिल्कुल न रखे। ये बात सही है कि एक बार आपका डेंगू होगा तो दोबारा नहीं होगा लेकिन इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है उसने भी समझे कि डेंगू जो है एक प्रकार का नहीं है भाई जो डेंगू का वायरस है वो 4 प्रकार का हुआ है और आपने उसके है पहली बार कोई एक प्रकार का है वो अगली बार आपको तीसरी प्रकार का डेंगू उसके है और वो जो जो दोबारा डेंगू जो आपको होगा वो पहले वायरस

0: कहीं अधिक जो है खतरनाक होगा। तो भाई ने बिल्कुल ध्यान रखना है कि डेंगू जो है चार प्रकार का है। और देखो सबसे अच्छी बात जो आपने बताई कि जो बचाव है भाई वो सबसे ज्यादा जरूरी है।
1: पूर्ण बाजू वाले कपड़े पहने, कहने का मतलब छोटे बालक है उन्हें भी पूरी बाजू कपड़े पर आकर रखें, तो फिर लगा कि अपने घर के आसपास कोई आपने मच्छर दिखे घर में दिखे। और विशेष तो बात इसकी यह भी है संदीप भाई, ये दिन में काट है डेंगू का मच्छर, दिन में काट है और ज्यादा ऊंचा नहीं उठता, ये नीचे बाजुआ पे हो गया, पैरों पे हो गया, नंगे पैरों पे हो गया, इस तरह काट है ही हो। तो इसमें अगर एक तो अपना यू काम कर सकते जो मच्छर भगाने के लिए जो अपना कोई करीम लाउंज करो, ओडोमस होगी, रिपेलेंट होगी, इस तरह की जो मशीन आप करीम भी लगा सके हैं। और खास तौर पर सुबह शाम इसका बहुत ध्यान रखना अपने दिन के टाइम में, और मच्छरदानी का प्रयोग भी कर सकते। छोटा बच्चा हर मान दिन में सोया है तो उसको मच्छरदानी लगा के आप सुहावें। हम बच्चों के लिए बहुत सावधानी रखनी जरूरत है, क्योंकि अपना कई बार बच्चा ना पूरे बाजू कपड़े नहीं पहनते, पूरे बाजू के पजामे नहीं पहनते और वो मच्छर काट जाए पता भी नहीं चलता।
0: बिल्कुल। और सौत्रीबान इसमें जो मुख्य रूप से आपने ध्यान रखने वाली बात है, कई बार आप इनका महारत और तो आस पास गंदगी को नहीं कीते तो मच्छर कासन होंगे भाई, जो डेंगू का मच्छर है सर साफ पानी में है। और खासकर आप ये बात करा तो जो अपना फ्रिज है इसके पीछे जो ट्रे है उसमें जो पानी इकट्ठा होता रहा है उसमें भी वो मच्छर काटता रहा है। और एक चीज का हमने सौत्रीबान और भी ध्यान रखना है, देखो रात ने तो आप मच्छरदानी लगा दूंगा हाँ और सुबह आप इसमें हटा दूंगा हाँ, लेकिन जो डेंगू का मच्छर है भाई ये आपने दिन में काटा है। और इसका जो सबसे ज्यादा सक्रिय होने का समय वो ये है कि सूर्य उदय के 2 घंटे बाद और शाम को सूर्यास्त से 2 घंटे पहले का हुआ है। तो भाई हम ध्यान रखना है कि इस दौरान भी अपने पूरे कपड़े पहने भाई, जब भी मच्छर का प्रकोप हो जाए बिल्कुल भी हल्के में ना लेवा, यूं ना करें भाई हम रात में सोवांगे तो मच्छरदानी लगावांगे, दिन में भी अपने पूरे बाजू के कपड़े पहन कर रखें।
1: कहने का मतलब ये संदीप भाई, आपका मान लीजिए कूलर में पानी है या किसी चीज में अपने पानी पर रखे बाल्टी है अगर ये खुले तो उनमें पानी बदलते रहे, आपने थोड़ा सा भी लगा भी सको इसमें मच्छर का लार्वा है कुछ भी थोड़ा सा हल्का सा मच्छर अगर आपने दिखा है तो तुरंत पानी में बाहर जाकर नाले में खिंडा दे, कहीं पे भी मच्छर का लार्वा पर अपने ना दे। और विशेष तौर पर जिधर बात कर लगे कूलर में पानी कई कई दिन का हो जाए, आपने लगा भी है तो उसमें मिट्टी का तेल डाल दे ताकि लार्वा का खत्म किया जा सके।
0: और एक चीज और भी है सौत्रीबान, देखो ये जो मौसम आने लग रहा है अपने मानसून का मौसम आने लग रहा है, प्री मानसून अपना लगभग खत्म होने रहा है, तो एक इस तरीके का मौसम रहा है कि किसी टाइम जो है बरसात होगी और दिन में करड़ा घाम लगट गया तो उससे भी जो है सर दर्द की बुखार की समस्या आती रहा है। तो भाई जो है बड़े हल्के में ले लिए हैं इस चीज में, तो अभी उस चीज का भी ध्यान रखना है भाई, जो आपका डेंगू का लक्षण है उसमें जो है शुरुआती जो लक्षण है वह तेज बुखार उसके है, जो आंखें के जो पिछले हिस्से हैं उसमें तेज दर्द होगा, यदि आप आंखों को घुमाओगे तो उससे दर्द और भी बढ़ जाएगा, जोड़ों में पीठ के निचले हिस्से में मांसपेशियों में बहुत ही ज्यादा दर्द होगा, चेहरे पर छाती पर और पूरे शरीर पर लाल रंग के चकते उसके हैं या छोटे छोटे दाने आ सके हैं, और इसके साथ ही उल्टी लगने लग रही है, भूख में कमी होने लग रही है या मुंह का पूरा स्वाद कड़वा हो गया है, तो भाई अपनी जांच जरूर करवा लेंगे डेंगू के लक्षण हैं शुरू।
1: और हम तो भाई अन्य कहेंगे जब भी आपने लगा कि आपका हल्का सा आपका बुखार है बच्चे का बुखार है आप घर में आप अपने आप दवाई लेना शुरू न कर दे, जाके डॉक्टर से अच्छी तरह उसकी जांच करवा ले आपका लक्षण डेंगू के है या मलेरिया के है या और किसी बुखार के है, तो सबसे बड़ी सावधानी रखना किया जरूरत है कि सेल्फ मेडिकेशन भाई ना करें। और विशेष तौर पर छोटे बच्चे जो हमारी गर्भवती माँ बहने हैं उनका अपना बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। और देखो डेंगू तो अपना बचाव कर सके हैं, अपना आसपास पानी खड़ा ना होना देखे आसपास क्या करना साफ पानी अपन का ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं पे भी गड़े में या खुली बाल्टी में या खुले टब में या ऊपर या अपने गमलों में कहीं पे भी साफ पानी न खड़ा तो न है, अगर खड़े है तो आप उसने अगर जरूरत भी अपना पानी रखना पड़ेगा बर्तन में तो उसने बदलते रहे बार बार, तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के अपने डेंगू तो आप अपना बचाव कर सके हैं और ध्यान अपन भी रखना पड़ेगा। कार्यक्रम में रागनी का समय है, बहन भाई सुनवा दे हैं रागनी
2: तस्वीर देख के अकल हो।

गैल करिया चावे था नार अहिल्या संग चंद्रमा हो मेल करिया चावे था देखे नल सबूपी इंद्राणी के संगी वो खेल करिया चावे था और की चक भी द्रौपदी के धर्म ने वो

रहे।

0: समाई चाहिए से वो अपने हाथा ना लोग हसाई चाहिए से इसी वाला।
1: नमस्कार।
0: चाहिए से सा और दूसरा ब्याह करवाने से नई लोग आई चाहिए।

0: ये तो मैंने भैया का मनोरंजन करवा दिए और अब आप बात कर रहे थे डेंगू से बचाव के लिए।
1: बिल्कुल, और शत्रुघ्न आपने बताया कि साफ पानी मयू मच्छर पनपे है, तो हमने इन चीजों का ध्यान रखना है। और इसके साथ ही यदि आप जो घरेलू जो आप प्रबंध कर सके हैं उसमें देखो ध्यान रखना है कि डेंगू से जो कोई दवा है वो इस वायरस ने नहीं मार सके, और पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स भी मरीज की जान बचा सके हैं। तो मरीज को लगातार वायरस का घोल पिलाते रहो, नारियल पानी पिलाएं, सेब का जूस पिलाएं, अनार का जूस, छाछ, उबलोडा पानी ये मरीज को देते रहो, और हर आधे घंटे में मरीज को कुछ ना कुछ जो है तरल पदार्थ देते रहो।
0: और कोशिश करें कि आप आपके आसपास अगर आयुर्वेदिक औषधि की बात करें तो गिलोय की बेल अगर आपके पास खड़ी है तो एक बिलात के जितनी गिलोय की बेल कूट के उसका पानी उबाल के जब आधा रह जाए जितना पानी डालो तो उसमें छान के आप शाम तक पिला सके, या उसके साथ आप दवाई देनी तो उसके साथ भी दे सके हैं। तो गिलोय का पानी आप साथ साथ पिला तो आपका जल्दी ठीक होगे।
1: बिल्कुल, और देखो सावित्रीबान जो डेंगू है इस बुखार में जो प्लेटलेट्स हैं अपने खून में बड़ी कम हो जाना है, तो पपीते के पत्तों का जो रस है सीमित मात्रा में आप पिला सका। हाँ, गिलोय का काढ़ा आपने बता दिया, और इसके साथ जो कीवी के फल हैं भाई वह भी सेवन करके उनसे प्लेटलेट्स और आपके जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसने आप बढ़ा सका। हाँ, लेकिन अपने ध्यान रखना है सावित्रीबान भाई, ये उपाय आप ही कर सका, लेकिन जो चिकित्सक की जो सलाह है और जो दवाइयां है उनका आप इन्हें जरूर पालन करना है।
0: और सदी भाई वे इसी एक बात करांगे कि मलेरिया के लिए मलेरिया के जो लक्षण है उन्हें भी अपने पहचान की जरूरत है। मलेरिया के लक्षण आमतौर पर संक्रमित है एनोफिलीज नाम मच्छर के काटने से 7-15 दिन में, कभी कभी एक भी नवाज भी दिखाई दे रहे हैं। शुरुआती

0: ਨਾ ਮੈਂ ਸਰਦੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜੈਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਧ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ 130 ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਆ ਜੇ ਜੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜੇ ਕੰਬਕ ਵੀ ਛੁੱਟਣਾ ਬੁਖਾਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਠੰਡ ਲੱਗ ਕੇ ਬੁਖਾਰ ਚੜੇ ਔਰ ਅਧਿਕ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਬੁਖਾਰ ਉਤਰਨ ਲੱਗ ਜੇ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜੇ ਹੈ ਸਿਰ ਦਰਦ ਰਵੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਰਵੇ ਥਕਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਜਿਮ ਚਲਾਉਣਾ ਦਸਤ ਪੇਟ ਦਰਦ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹ ਜੇ ਹੈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲੱਛਣ ਆਪਣੇ ਹੋ ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਆਪਣੇ ਦਿਖੇ ਤੋ ਆਪ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤੋ ਆਪ ਚਿਕਿਤਸਕ ਕੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਘਰ ਪੈ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬਾਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੋਲੀ ਖਾਤੇ ਰਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰ ਨਾ ਕਰੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਵਡਾਵੇ ਚਿਕਿਤਸਕ ਕੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲੈਵੇ
1: ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ये जो मच्छर है सावित्रीबाई जो मलेरिया फैला हुआ है एनोफिली जो मच्छर है ये जो है मुख्य रूप से रात के समय काटते हैं और शाम ढलने से लेकर सुबह सूर्योदय का जो समय है उस दौरान जो है ये मच्छर सक्रिय रहा है और विशेषकर जो गंदे पानी है खुली नाली है गड्ढे हैं तालाब हैं दलदली इलाके हैं वहां पर जो है मच्छर बहुतायत में हुआ है और इसके काटने से 10 से 15 दिनों में जो है मलेरिया के लक्षण जो है अपने दिखने लग जावे हैं जो हर 48 से 72 घंटे में खुद ने दौड़ने लग जावे हैं तो मरीज में भाई कभी ठंड लगेगी तो कभी कांपने लग जाएगा तो रजाई ओढ़ने से भी ठंड कम होगी दांत भी बाजन लग गए हैं सिर दुखने लग गया है और पूरा जो शरीर है वो अकड़न लग गया है और उसके बाद जो 2-4 घंटे का समय हो जाओ तो उसके बाद ठंड लगनी बंद हो जाओगी शरीर का तापमान बढ़ जाओगा पसीने आने लग जाओगे जो त्वचा है वह बहुत ज्यादा गर्म हो जाओगी तेज धड़कन हो जाओगी भारी सिर दर्द हो जाओगा तो इस तरीके के जो लक्षण है भाई कभी ठंड लगन लग रही है कभी गर्मी लगन लग रही है कभी शरीर गर्म होने लग रहा है तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा मलेरिया का जो है प्रकोप हो गया बहुत ज्यादा पसीने आ जाओगे भाई जिस तरह के कपड़े जो सारे पसीने से भीग जाओगे
0: तो संदीप भाई देखो अपन ने इसका बचाव करना बहुत जरूरी है बचाव का मुख्य कारण बात तो यही है कि अपने आसपास पानी खड़ा ना होना दें और आपके आसपास खुली नाली है उसमें गंदा पानी पड़ा तो उसमें मच्छर होने की पूरी संभावना रहेगी मच्छरदानी का इस्तेमाल कर लें और कोई भी मच्छर न काटने के लिए कोई भी जो भी करीम अपने बाजार में ले अच्छी करीम लगा के भी आप ला सके छोटे बच्चों में करीम लगाते हैं सावधानी रखें वो चाटन ले बचाव करना है तो हमने अपने आस पास सुखी जगह जरूरी है ज्यादा गिल्ला आसपास ना होने दें ना ज्यादा पानी खड़े रहने दें तो छोटी छोटी चीजों का अपना ध्यान रख के अपना जो ये तरह तरह के बुखार डेंगू बुखार हो गया कभी मलेरिया बुखार हो गया कभी दूसरा बुखार हो गया तो इनसे आप अपना और अपने बच्चों का बचाव कर सके हैं
1: बिल्कुल और देखो सावित्रीबाई आगे जो समय है वो अपना मानसून का आने लग रहा है तो भाई ध्यान रखें भाई कोई भी खुला जो बर्तन है आपकी छत पर रखा है गमले रखे हैं छत या छज्जों की आपने जो है सफाई करनी है बढ़िया तरीके से वहां पर पानी इकट्ठा नहीं होने देना है ताकि

धोरे काट नहीं, जो सोच समझ के बात करे वो कदे बारा बात नहीं, देखे पीठ फेर के करे ये सारे मालूम पाट नहीं, तू बोले कदे ओ बड़ बोले ओ सागात नहीं।

ਕੇ ਮੈਂ ਮਪਾਰੀ ਉਤਰ ਲੂੰ ਦੀ ਜੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਵਰਦਾਨ ਦਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਪਤੀ

ये भेस कवारे मैं बाबुल की घड़ी ये उम्र बता दी पड़ी रही सबा।

साखिते पति लेना चाहे तो जग सारे मैं बरम राज दे लिखा हो गया ये तरम दवा।

एके ना लागी चोट तेरे भी इतना दुख हो जाए दू तेरा गर घोट ये पीठ फेर के करे ये सारे ये करे घूंघट की ओ बिन समझे बेकूफ बतावे श्री

0: सिंह के साथ कार्यक्रम हमारे गांव का समय समाप्त होने लग रहा है। अपने बहन सावित्री बुगालिया ने और अपने भाई संदीप ने दे इजाजत।
1: सारे बहन भाइयों ने
0: राम राम।

श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भारी गांव एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी हिसार।

एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। श्रोताओं, क्योंकि आज है शुक्रवार, तो आज के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत ही प्यारा सा कार्यक्रम, जिसका

नाम है पंजाबी लोकगीत। और इन लोक गीतों की खुशबू ही इतनी निराली होती है कि वो मन को छू लेती है, क्योंकि ऐसे गीत जो एक बार बन गए फिर कहाँ बने, और इन्हें सुनकर हमारी रूह को जो सुकून मिलता है उसका बयान हम कैसे कर सकते हैं भला। और आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपकी मेजबान आप सबके साथ सारिका शर्मा। कबूल कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आवाज अगर गुरदास मान की हो तो फिर क्या कहने। बहुत ही खूबसूरती से वो गांव की मिट्टी की सौंधी खुशबू को हमारे दिल तक पहुंचा देते हैं। आइए सुनते हैं उनकी आवाज में ये पहला बहुत ही प्यारा सा नगमा।

श्रोताओं, अगर हमें रिश्तों में बंदगी महसूस करनी हो तो सुरेंद्र कौर की आवाज में ये नगमा हमारे दिल को बेहद सुकून प्रदान करता है। आइए सुनते हैं सुरेंद्र कौर की आवाज में ये दिलकश गीत।

आप सुन रहे थे सारिका शर्मा के साथ पंजाबी लोकगीतों का कार्यक्रम FM बैंड 102.3 MHz पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है।

102.3 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी हिसार। आइए श्रोताओं, अब खुला आकाश के तहत हम सुनते हैं एक फिल्म से नगमे, और आज जिस फिल्म को हमने आपके लिए चुना है उसका नाम है सावन को आने दो। दोस्तों, ये फिल्म सावन को आने दो 1989 में रिलीज हुई थी। इसका फिल्म का निर्माण राजश्री प्रोडक्शंस ने किया था और इस फिल्म का निर्देशन किया था कनक मिश्रा ने। ये एक प्रसिद्ध हिंदी रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म की कहानी काफी भावपूर्ण थी और सबसे ज्यादा ये फिल्म याद की जाती है अपने सदाबहार गीत संगीत के लिए। और एक और बात इस फिल्म में खास थी कि इस फिल्म ने अभिनेता अरुण गोविल को काफी मशहूरी और प्रसिद्धि दिलवाई, जिसकी वजह से उन्हें पहचान मिली। और इसी के साथ इस फिल्म में अरुण गोविल के साथ जरीना बहाव और रीटा भाडुड़ी व अमरीश पुरी ने भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी। फिल्म का संगीत राजकमल ने दिया था और इस फिल्म के लगभग सभी गीत यशुदास और हेमलता की आवाजों में रिकॉर्ड किए गए थे, जो आज भी बेहद पसंद किए जाते हैं। सुनते हैं इस फिल्म का ये पहला गीत, चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा।

सावन को आने दो, अभी आपने सुने सुने इस फिल्म के गीत। कार्यक्रम था खुला आकाश, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी हिसार है। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं समाचार और उसके तुरंत बाद आपको लिए चलेंगे विविध भारती, प्रतीक्षा के बस चंपल और हमारे साथ।

मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों को तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी.डी. वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए

0: सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे और यूएस ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है। गृह मंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृह मंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौते में पात्र भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फ्रेजाइल 5 से निकलकर विश्व के सर्वाधिक संभावनाओं वाले देश के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के हितों पर केंद्रित है। इस बीच श्री गोयल ने लंदन में HSBC के ग्लोबल ट्रेड सॉल्यूशंस के प्रमुख विवेक रामचंद्रन से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत UK व्यापार आर्थिक और व्यापार समझौते से कारोबारी विस्तार का परिवेश निर्मित करने के बारे में बात की। श्री गोयल ने कहा कि मजबूत व्यापार हित और सीमा पार बैंकिंग व्यवस्था के जरिए नए बाजारों में उद्योगों की मदद करने में वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि

अमिस्ताद का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर

0: एक मंत्री स्तरीय बैठक में अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय देशों के पत्रकारों के समूह से बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने भारत में क्रांतिकारी बदलाव और वैश्विक स्थिति तथा भारत और यूरोप के बीच बढ़ते संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने भरोसा जताया कि यूरोपीय पत्रकारों की भारत यात्रा से उनकी भारत और भारत यूरोप भागीदारी की संभावनाओं के बारे में समझ बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यीजांग दे थापा से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन की गति भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमताओं और उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक के नेता बनने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है।
1: आने वाले समय में टूर ऑपरेटर्स की भूमिका को, ट्रैवल गाइड की भूमिका को, डेस्टिनेशन सिलेक्शन की भूमिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी से बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगी है। भारत जैसा देश जिसकी 10,000 साल से भी ज्यादा की पुरानी कंटिन्यूटी की सभ्यता है, हम अपने सभ्यगत यात्रा को दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए AI बेस्ड कंटेंट बना करके उनको आकर्षित कर सकते हैं, उनके बेहतर अनुभव दे सकते हैं।
0: विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों के त्वरित निवारण और व्यापार में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को आज 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों से 79,85,000 से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य कृष्ण मोहन ने कल प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोलकाता के ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10,00,000 रुपए और घायलों को 1,00,000 रुपए देने की घोषणा की। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई, बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में कई अभियानों में 23 करोड़ रुपए का 15 किलो सोना जब्त किया है। संगठित सोने की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सूरत में 2 किलो कोकीन जब्त कर 1 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पिछले महीने से अब तक निदेशालय ने कुल 26 किलो कोकीन जब्त की है और 14 विदेशी नागरिकों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज देश भर में आशुराए मुहर्रम पूरे श्रद्धा

0: और सद्भाव के साथ मनाया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके समर्पित साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले गए, जिन्हें बाद में शाम को निर्धारित स्थानों पर दफनाया गया। मजलिसें या धार्मिक सभाएं भी आयोजित की गई। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भारी वर्षा की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर रविवार तक लू चलने की संभावना भी व्यक्त की है।
0: और अब कुछ खेल खबरें। भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने अभियान का समापन किया। जर्मनी के सुहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। यूएस ओपन बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत, रौनक चौहान सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स में रौनक चौहान ने चीनी ताइपे के चो तियन चेन को और किदाम्बी श्रीकांत ने मलेशिया के ली जी जिया को हराया। वहीं महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की तोंग सियू तोंग को हराया तो रक्षिता ने चेन सू यू को पराजित किया और देविका ने थाईलैंड की टोन रुक साई हिंग को हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई मुकाबले में देर रात नॉर्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इराक और सेनेगल आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, नीदरलैंड्स और तुर्की ने अपने अपने मुकाबले जीते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा अमरीका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे और US ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदाम्बी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम आपके लिए में सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए शमशाद बेगम की आवाज में। नगमा निगार है राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन और

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है। जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: विवेक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
1: प्यार का राग सुनहरू
0: बुझता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में अगला गीत। नगमा निगार है साहिर लुधियानवी, संगीत है जय देव का, फिल्म का नाम है मुझे जीने दो।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों कार्यक्रम का अगला गीत है गीता दत्त की आवाज में, शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की, संगीत रचना मदन मोहन की, फिल्म का नाम है भाई भाई।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और मुबारक बेगम की आवाजों में वो नगमा जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है शंकर जयकिशन का, फिल्म का नाम है हमराही।
4: मुझको अपने गले

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में। नगमा निगार है शकील बदायूनी, संगीत है नौशाद का और फिल्म का नाम है मुगले आजम।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी मन्नाडे और साथियों की आवाजों में। नगमा निगार है साहिर लुधियानवी, तर्ज है रोशन की, फिल्म का नाम है बहू बेगम।

0: तर्ज बयास
1: साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कुमार साहब कह रहे थे कयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई के साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर।

0: जिंदगी को गले लगाने की ये पुकार गुलजार साहब के लिखे एक गाने की है जो फिल्म सदमा से है, लेकिन यहाँ बातें गुलजार के बारे में नहीं, यहाँ बातें फिल्म सदमा के बारे में भी नहीं, बल्कि यहाँ बातें एक संगीतकार के बारे में जिसके नाम में आता है राजा।
1: आया है राजा लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूमलो झूमलो। आया है राजा
2: लोगो रे लोगो,
1: राजा के संग संग झूमलो झूमलो। शेरों का मैं हूँ शेर यारो, अरे कोई ना मुझसा दलेर प्यारो। शेरों का मैं हूँ
2: शेर यारो,
1: अरे कोई ना मुझसा
2: दलेर प्यारो।
1: ये सच सच कहता मैं डट के रहता मैं। आया है राजा
2: लोगो रे लोगो,
1: राजा के संग संग
2: झूमलो झूमलो।
1: आया है राजा
2: लोगो रे लोगो,
1: राजा के संग संग
2: झूमलो झूमलो।
0: वो सही मायने में फिल्म म्यूजिक के राजा हैं। 1000 से ज्यादा फिल्मों में संगीत, 8500 से ज्यादा गाने और फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर्स की एक लंबी कतार जो सम्मान से उनके आगे सिर झुकाते हैं, उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसे संगीतकार की बातें जो न केवल एक म्यूजिक कंपोजर है बल्कि एक गीतकार है, एक और की दुनिया में ऊंचा किया है। आज बातें इलैया राजा की।
3: वो तो बना

इलैया राजा का जन्म 3 जून 1943 को हुआ था। मदुरई तमिलनाडु में एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है थेनी, इसके पन्नियापुरम नामक गांव में जन्मा था एक बालक। नाम रखा गया आर ज्ञान थेसिकन। हालांकि जब इलैया राजा ने अपनी स्कूल की पढ़ाई शुरू की तो उनके पिता रामासामी ने ज्ञान थेसिकन से बदलकर उनका नाम रख दिया राजैया। ये इसलिए क्योंकि गांव भर में इलैया एक बालक के रूप में बहुत लोकप्रिय थे और पूरे गांव के लोग उन्हें रासैया कहा करते थे। 14 वर्ष की उम्र में इलैया राजा अपने बड़े भाई पावलार वरदराजन की एक संगीत टोली में शामिल हो गए। ये संगीत टोली गांव गांव शहर शहर घूमती और अपनी संगीत प्रस्तुतियां करती। यही वो संगीत यात्रा थी जहां इलैया राजा ने सबसे पहले कोई धुन बनाई और उसे लोगों के सामने प्रस्तुत किया।

यानी आज का चेन्नई शहर। मकसद था संगीत सीखना। ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक लंदन के एग्जाम में भी उन्होंने हिस्सा लिया। क्लासिकल गिटार का एग्जाम उन्होंने दिया और गोल्ड मेडल हासिल किया। मद्रास में शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा संघर्ष इलैयाराजा को करना पड़ा। उस दौरान दोनों भाइयों ने मिलकर कभी किसी नाटक में संगीत दे दिया, कभी मंच पर परफॉर्म करने लगे, कभी चर्च में कॉयर म्यूजिक में हिस्सेदारी कर ली, तो कभी कोई अलग अलग तरह के मशहूर हस्तियों के कार्यक्रमों में फिलर के रूप में इस्तेमाल हो गए। लेकिन आंखों में थे सुनहरे ख्वाब और संघर्ष का मादा था दिल में, तो डटे रहे। और इस तरह से इलैयाराजा की जगह बन गई जी के वेंकटेश की संगीत टोली में। यहां से इलैयाराजा के सीखने की और लगातार आगे बढ़ने की यात्रा शुरू हुई। आगे चलकर इलैयाराजा ने धनराज मास्टर नामक एक संगीतकार का शागिर्द बनना कबूल किया। यहां वो उनसे संगीत की बारीकियां सीखते रहे और यही वो हस्ती थी जिन्होंने इलैयाराजा के नाम में आगे राजा जोड़ा। सन 1976 में फिल्म अन्नकिली में संगीत देने का मौका आया और इत्तेफाकन इलैयाराजा बन गए संगीतकार। 1976 में अन्नकिली नामक फिल्म में जब उन्होंने संगीत दिया तो इस फिल्म का संगीत अचानक इतना लोकप्रिय हुआ कि तमिल सिनेमा में जैसे तूफान आ गया। इलैयाराजा ने अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज की। सुनने वाले चकित रह गए कि ऐसे भी गाने बनाए जा सकते हैं। अचानक इलैयाराजा की गिनती एक प्रतिभाशाली युवा संगीतकार के रूप में होने लगी। इलैयाराजा की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जहां एक तरफ उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को जोड़ा, वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी संगीत की बारीकियों को अपने फिल्मी संगीत में अपनाया और एक अलग तरह का जादुई फ्यूजन तैयार किया।

बहरहाल अभी उनकी कुछ फिल्मों की बातें करते हैं। सन 1978 में उनकी फिल्म आई कजू हंदई, सन 1980 में आई मुडुपानी, इसी साल आई निजलगल, 1981 में नेत्रिकन नामक फिल्म आई और इसी बरस आई निजेंथई किलंथे, 1982 में कोजू कुवुथु नामक फिल्म आई। चूंकि मेरा ताल्लुक दक्षिण भारत की भाषाओं से नहीं है, इसलिए अगर उच्चारण संबंधी कोई दोष होता है तो हम दक्षिण भारत के श्रोताओं से क्षमा चाहते हैं। इलैयाराजा की जो बहुत महत्वपूर्ण फिल्में हैं उनमें शामिल है 1987 में आई फिल्म नायकन, जो उनकी 400वीं फिल्म थी, 1990 में आई फिल्म अंजलि। यहां महत्वपूर्ण ये है कि वो इलैयाराजा की 500वीं फिल्म थी। अब हिंदी फिल्मों की बात करें तो इलैयाराजा का हिंदी फिल्मों में आगमन हुआ कमल हासन के अभिनय वाली फिल्म सदमा के जरिए, जिसके निर्देशक थे बालू महेंद्रू। असल में ये फिल्म बालू महेंद्रू की तमिल फिल्म मुंदरम पिरई का हिंदी

सदमा की रिलीज के 4 बरस बाद इलियाराजा ने जिस फिल्म में संगीत दिया उसका नाम था कामाग्नि। उसके बाद राज सिप्पी की फिल्म महा

0: देव में उन्हें संगीत देने का मौका मिला। सन 1996 में बालू महेंद्रू की फिल्म और एक प्रेम कहानी में उन्होंने संगीत दिया। वैसे आपको बता दें कि इलैयाराजा ने रामगोपाल वर्मा की फिल्म शिवा के हिंदी संस्करण में भी संगीत दिया है और कमल हासन की फिल्म हे राम में भी उनका संगीत है। एक और हिंदी फिल्म है उनके संगीत से सजी हुई जिसका नाम है मुंबई एक्सप्रेस।
1: बंदर की डुगडुगी है, क्या जोर से बजी है,

साल 2007 में जब आर बाल्की ने फिल्म चीनी कम बनाई तो उसके लिए संगीतकार के तौर पर उन्होंने चुना इलैया राजा को, और यहां से आर बाल्की और इलैया राजा का एसोसिएशन शुरू होता है।

और फिर आई फिल्म शमिताब, जिसके गाने लिखे स्वानंद किरकिरे ने, और इस फिल्म में था ये दिलचस्प गाना अमिताभ बच्चन की आवाज में।

आपको बता दें कि साल 2015 में जब इलैया राजा ने अपनी 1000वीं फिल्म में संगीत दिया तो जाने माने संगीतकार एआर रहमान ने ट्विटर पर लिखा, डियर मेस्ट्रो इलैया राजा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी 1000वीं फिल्म में क्वालिटी म्यूजिक दिया है। आप इसी तरह से काम करते रहिए और हमें इसी तरह से प्रेरणा देते रहिए।

चूंकि इलैयाराजा के संगीत की बातें हो रही हैं और बातें हिंदी फिल्मों की भी हो रही हैं, तो आपको बता दें कि आशा भोसले से इलैयाराजा ने कुल 53 गाने गवाए विभिन्न भाषाओं में, और लता मंगेशकर से केवल 2 गाने उन्होंने

राजा के जीवन के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं, और वो ये कि जब इलैयाराजा अपना संगीत सीख रहे थे तब उनके ऊपर जर्मनी के क्लासिक संगीतकार बाख की शैली का बहुत गहरा असर पड़ा था। आगे चलकर इलैयाराजा ने अपना पहला फ्यूजन एल्बम बनाया हाउ टू नेम इट। इसके बाद उनका एक और एल्बम आया है जो वेस्टर्न क्लासिकल फ्यूजन एल्बम है और इसका नाम है नथिंग बट विंग।

यहाँ आपको इलैयाराजा के कुछ आध्यात्मिक एल्बम्स के बारे में भी बता दें। इस तरह का काम भी इलैयाराजा ने बहुत सारा किया है। गीतांजलि, राजविन, रामन्ना मलाई, इलैयाराजाविन, ये सब ऐसे एल्बम हैं जिनमें आध्यात्मिकता का रस है। इलैयाराजा का संगीत का ये सफर तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों तक फैला हुआ है। जाहिर है कि दुनिया के कोने कोने में इलैयाराजा के प्रशंसक मौजूद हैं। अगर हम ये कहें कि इलैयाराजा पर सम्मानों की और पुरस्कारों की बारिश होती रही है तो ये गलत नहीं होगा। साल 2010 में पद्म भूषण, साल 2018 में पद्म विभूषण, 5 नेशनल अवार्ड हैं। 1984 में तेलुगु फिल्म सागर संगमम के लिए, 1986 में सिंधु भैरवी के लिए, 1989 में रुद्र वीणा के लिए, 2009 में पजसी राजा के लिए और 2016 में थरई थपतई के लिए। ये 5 नेशनल अवार्ड्स हैं। इसके अलावा फिल्म फेयर अवार्ड्स, केरला स्टेट अवार्ड्स, स्क्रीन अवार्ड्स, नंदी अवार्ड्स, एक लंबी फहरिस्त है इलैयाराजा के जीते सम्मानों और पुरस्कारों की। बल्कि अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि पुरस्कार जब इलैयाराजा को मिलते हैं तो पुरस्कार सम्मानित होते हैं।

चूंकि इलैयाराजा तमिलनाडु के एक ग्रामीण इलाके में पले बढ़े, इसलिए तमिल लोक संगीत जैसे उनकी रगों में बहता है। संगीत सीखते समय उन पर जो असर पड़ा वो पड़ा बाख, हाइडन, मोजार्ट और बीथोवन का, इसलिए वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक भी उनकी रगों में बहता है। और इसीलिए तमाम तरह की संगीत शैलियों को मिक्स करके जब वो संगीत बनाते हैं तो ये एक जादू सा र

कार्तिक राजा, भावथरिनी और युवान शंकर राजा। इलिया राजा के ये तीनों बच्चे फिल्म कंपोजर और गायक हैं। आपको बता दें कि इलिया राजा को अपने

किसी भी अपने परिवार के सदस्य को, यहां तक कि अपने भाई को भी इस हारमोनियम को छूने नहीं देते थे। इस हारमोनियम में उनकी जान बसती है। इलैयाराजा का कहना है कि यह हारमोनियम जानता है कि ये उनके लिए बना है और इस हारमोनियम से ही उनके संगीत का जादू निकलता है। इलैयाराजा ने अब तक 1523 फिल्मों में 8600 गाने बनाए हैं। तकरीबन 9 भाषाओं की फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया है। पूरी दुनिया में इलैयाराजा 20,000 से ज्यादा कॉन्सर्ट कर चुके हैं। यहां इस बात का जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सन 1987 में आई फिल्म नायकन को टाइम मैगजीन ने दुनिया की 100 सबसे अच्छी फिल्मों में से एक माना था। इस फिल्म का संगीत इलैयाराजा का है और इसके गानों से लोगों को बड़ा प्यार है।

अब आपको बताते हैं मणिरत्नम और इलैयाराजा के लंबे साथ के बारे में। सन 1983 में इलैयाराजा ने सबसे पहले मणिरत्नम की किसी फिल्म में संगीत दिया, वो थी पल्लवी अनु पल्लवी। ये एक कन्नड़ फिल्म थी। ये वो दौर था जब फिल्मकार मणिरत्नम सिनेमा में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। सन 1984 में मोहन लाल के अभिनय वाली उनारू में संगीत दिया इलैयाराजा ने। निर्देशन मणिरत्नम का था और ये मणिरत्नम की दूसरी फिल्म थी। सन 1985 इलैयाराजा ने तमिल फिल्म पागल निलवू में संगीत दिया। ये वो फिल्म है जिसके जरिए मणिरत्नम ने तमिल सिनेमा में अपना कदम रखा था। 1985 में आई इदया कोविल, 1986 में आई मौन रागम, 1987 में नायकन आई जिसका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं, 1988 में आई अग्नि नटचित्रम, 1989 में आई गीतांजलि, 1990 में अंजलि आई और इस फिल्म ने 3 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। सन 1991 में इस फिल्म को भारत की ओर से ऑस्कर पुरस्कार में भी भेजा गया था। इलैयाराजा और मणिरत्नम का साथ। सन 1991 में आई फिल्म थलपथी जो महाभारत के एक

जुलाई 1993 में इलैयाराजा ने वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक के अपने सबसे बड़े और पहले काम को रिकॉर्ड किया था। इसे उन्होंने सिंफनी नंबर 1 का नाम दिया था और इसे रिकॉर्ड किया गया था लंदन के प्रसिद्ध रॉयल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के साथ, और वो भी जाने माने कंडक्टर जॉन स्कॉट की निगरानी में। आपको बता दें कि रॉयल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा दुनिया के सबसे उत्कृष्ट पश्चिमी संगीत से जुड़े ऑर्केस्ट्रा में शामिल।

सन 2012 में संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इलैयाराजा को संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था। सन 2010 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित

किया गया। सन 2018 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इलैयाराजा की उपलब्धियों की फहरिस्त बहुत लंबी है। सन 2012 के समर ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह में इलैयाराजा की फिल्म राम लक्ष्मण का एक गाना बजाया गया था। सही मायनों में इलैयाराजा एक लिविंग लेजेंड है। अपने काम के प्रति उनका जुनून, उनका समर्पण लाजवाब है। 9 भाषाओं में इतनी बड़ी तादाद में फिल्में करना और लगातार सक्रिय रहना और उत्कृष्ट काम करना उन्हें

0: संगीतकार इलैयाराजा का संगीत संसार लेकर आया था आज के फनकार। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है।

आपका प्यार, आपका इंतजार, ये है आप सबका ख्वाब। आकाशवाणी हिसार, FM बैंड 102.3 MHz पर।

दोस्तों, स्वागत है आपका कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे के तहत व्हाट्सएप बेस्ड कार्यक्रम में। और आज इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूँ मैं आप सबकी मेजबान सारिका शर्मा। कबूल कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

दोस्तों, अपनेपन से बढ़कर हमारी जिंदगी में कोई रिश्ता नहीं होता। जहां हमें अपनेपन का एहसास मिलता है, हम तो वहीं के होकर रह जाते हैं। इन रिश्तों का कोई नाम हो भी सकता है और कोई नाम नहीं भी हो सकता। और बिना नाम के रिश्ते के भी बहुत से लोग हमारे दिल में घर बना लेते हैं। तभी तो कहते हैं कि जहां दिल मिल जाए वहां किसी रिश्ते की जरूरत कहां महसूस होती है। ये सच है दोस्तों, आपके साथ भी तो हमारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए कितनी शिद्दत के साथ आप हमारे इस कार्यक्रम का इंतजार करते हैं, अपने संदेश हमें लिखकर भेजते हैं, अपना कीमती समय निकालकर। और हम भी उतने ही मोहब्बत से आपके संदेशों का इंतजार करते हैं और महसूस करते हैं कि आप अपने दिल में हमारे लिए क्या महसूस करते हैं, क्योंकि आपके लिखे दो लफ्जों में भी आपकी जबानी हमें आपके दिल के एहसास महसूस हो जाते हैं। दोस्तों, जीवन में रिश्ते चाहे जैसे भी हो, अगर मुश्किल समय में साथ ना दे तो खुशियों के पलों में इनका कोई महत्व नहीं रह जाता। कठिन दौर में थामे रखा हाथ ही हमारे आपके रिश्ते की सच्ची पहचान है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आपके अपने इस पसंदीदा कार्यक्रम की, जिसका नाम है संदेश आपके गीत हमारे। और लेते हैं ये हमारे पहले श्रोता का नाम। ये हमारे श्रोता है गांव पंजौनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, सार्थक और अलौकिक चंसोलिया। और हमारे अगले श्रोता है जिला मुरादाबाद गांव दूल्हापुर यूपी से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलबीर सिंह। गांव हिपरसोगा तहसील औसा जिला लातूर से है उस्मान शेख फौजी, सारा बानु शेख, बाबा शेख, सिमर शेख और है करिश्मा शेख। ये हमारे श्रोता है जिला रतनाम गांव हिंगड़ी लोट एमपी से जगदीश धाकड़ नायमा, श्रीमती रंजूबाई, युवराज सिंह और शिवानी धाकड़। पद्मा टॉकीज नेपानगर एमपी से हैं सुदर्शन झा, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह। नर्मदा पार्क मंगलबेड़ा से हैं मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल। संबलपुर कांकेर से हैं फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट जिला बिजनौर से हैं मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। गांव पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से हैं दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। मजनू कटीला से हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा। सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और है माही मलिक। वंडिंग खेड़ा पंजाब से है मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बेड़ी से हैं नानाजी लामसे, मीना लामसे, तेजस जय लामसे और हर्षिता लामसे। बीड शहर महाराष्ट्र से हैं नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महत्री, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनजय और पीबी कुलथे। पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से है मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति और भूमिका अरोड़ा। श्रोताओं, आप सब सुनना चाहते हैं ये गीत और हम आपके लिए लाए हैं इस गीत को आपके लिए, आइए सुनते हैं।

दोस्तों, आपका और हमारा रिश्ता कितना अनमोल है, जानते हैं आप कि हम भी आपका इंतजार करते हैं जैसे आप हमारे इस कार्यक्रम का इंतजार करते हैं। दोस्तों, रिश्ता पास रहकर ही निभाया जाए ये जरूरी नहीं, दूर रहकर भी रिश्ता निभाया जा सकता है। एक दूसरे का हालचाल पूछकर, एक दूसरे की फिक्र कर भी रिश्ते को निभाया जा सकता है। अपनों की आवाज सुनकर ही दिल की धड़कन महसूस हम कर सकते हैं। दोस्तों, रिश्ते वो नहीं होते हैं जो जन्म से जुड़े होते हैं, रिश्ते वो बड़े होते हैं जो दिल से जुड़ जाते हैं। जैसे कि आपका और हमारा ये रिश्ता, और ये हमारे श्रोता हैं अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम, मोहम्मद सादिक अंसारी। बावड़ी गेट भिवानी से हैं रोशन लाल, उमेश, योगेश, कुलदीप, उपेंद्र, युवान, प्रेम खटक, धर्मवीर, कमला और इनका पूरा परिवार। एकता कॉलोनी रोहतक से हमारे श्रोता है सीताराम कांगड़ा, बबीता बोत, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोत और अंकित कांगड़ा। भोपालगढ़ राजस्थान से हैं धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान और पूजा परिहार। मनाली हिमाचल से हैं हर्ष, विनय, विनीत और रोजस। चंडीगढ़ से हैं शेफाली, शेफी, डेविस, विमला और सतीश अनेजा। और ये हमारे अगले श्रोता हैं नलेश्वर नगर, नरवेल, महाराष्ट्र से पीएस नभाकर, निर्मला, विशाल, सोपान तायडे, नारायण इंगले। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से हैं राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन, नौरीन, आसना, मोहम्मद कैफ अंसारी और इनका परिवार। हमारे अगले श्रोता हैं हिसार से राशिद मंसूरी, आयान मंसूरी और जीशान मंसूरी। गांव पांडरकवड़ा से हैं अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री और धनश्री बुरांडे। और ये संदेश आया है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई, हीरामन शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने। व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से हैं भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिवेंद्र भूषण, संस्कृति पौरुष। और रामगढ़ कैंट से हैं महेंद्र मोदी और कुलदीप कमल। अजीत नगर मलोट पंजाब से हैं छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह, गगनदीप कौर और रौनक दीप कौर। और ये हमें मिला है संदेश चंडीगढ़ से सतीश और विमला का। हमारे अगले श्रोता है पटियाली रोड गंज नंडवारा से आमिर हुसैन, बेगम तैयबा शेख, फौजिया, आहिल हुसैन, अरहान और इनका परिवार। गंज नंडवारा से हैं मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम, मोहम्मद अयान और उस्मान। हमारे अगले श्रोता है आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ और सायना और निवान शर्मा। आइए श्रोता सुनते हैं कार्यक्रम का ये दिलकश गीत।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हिसार से कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे, और आज मैं हूं आप सबके साथ आप सबकी मेजबान सारिका शर्मा। दोस्तों आप और हम इंसान हैं, इस भरे पूरे संसार के रहने वाले बंदे हैं। अकेलेपन की आदत हमें कहां, हम अकेले कभी खुश नहीं रह सकते। हम अकेले कोई त्योहार, कोई खुशी, कोई ऐसा फंक्शन नहीं मना सकते, क्योंकि हमें अकेलेपन की आदत नहीं होती। हम अकेले बातचीत नहीं कर सकते, हम अकेले मुस्कुरा नहीं सकते। एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है दोस्तों, यही तो रिश्तों की खूबसूरती है। है रिश्ता तो जिंदगी है, इन्हें हमें बना कर रखना चाहिए, क्योंकि रिश्तों के बिना जिंदगी में खालीपन है। इसीलिए तो किसी ने सही कहा है कि रिश्तों को वक्त पर वक्त देना उतना ही जरूरी है जितना पौधों को वक्त पर पानी देना। और दोस्तों हमें भी पता है कि वक्त हो चला है आपके नाम के साथ एक खूबसूरत से गीत को सुनवाने का, और ये हमारे श्रोता हैं कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद और ओमकार साई गायकवाड़, चौटाला हरियाणा से दारा पंडित संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा, पारसवाणी रेडियो श्रोता क्लब गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से हैं बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से हैं दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से हैं खुदा बख्श खलीफा। और ये हमारे अगले श्रोता हैं सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला सबाहत, किरत हुजरे और रेहान शेख, लदावली जिला मुरादाबाद से हैं अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना, गांव जाखोद राजस्थान से हैं शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल, योगेश, दीपक कुमार खटक और कुमारी पूजा खटक। और ये हमारे अगले श्रोता हैं जिन्होंने हमें अपनी फरमाइश लिखकर भेजी है, वो हैं सादुल शहर से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान। और ये मिला है हमें संदेश कस्बा बराड़ा जिला अंबाला से रवि कुमार राहुल का, और इनके साथ हैं रणजीत कौर, प्रियंका, जयप्रकाश राहुल, नूर नमन, सिमरत, गुरकिरत और गुरुशब्द राहुल। और ये फरमाइश हमें लिख भेजी है शेरवानी स्कूल गंज डंडवारा यूपी से आफताब अंसारी, रियाज, अनवर और इनका परिवार। श्रोताओं हम सुनते हैं आप सबके साथ ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, रिश्तों को बनाकर रखने में पूरी हमारी जिंदगी निकल जाती है और रिश्तों को बिगाड़ने में हम एक पल भी नहीं लगाते। और ऐसा क्यों होता है, हम बताते हैं आपको। क्योंकि हम अपने गुस्से, अपने अहंकार में सब कुछ भूल जाते हैं। हमारा कंट्रोल हमारे खुद के ऊपर नहीं रहता, इसीलिए कई बार हम पूरी जिंदगी के बनाए रिश्तों को एक पल में खत्म कर देते हैं। इसका एहसास भी हमें होता है, लेकिन क्या है ना कि देर हो जाती है। इसीलिए तो कहते हैं कि हमें अपने ऊपर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। और वो नियंत्रण इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हमारे शब्द, हमारा गुस्सा हमारे नियंत्रण में नहीं होगा तो जो लफ्ज निकलते हैं वो दिल के पार हो जाते हैं और एक पल में हमारे बनाए रिश्तों को खत्म कर देते हैं। एक दोस्त ऐसे होता है जो आपके जैसा होता है, जो आपके दिल के अंदर के गीत को जानता है, और जब आप शब्द भूल जाते हो तब तो वो वही गीत गाता है। ऐसे होते हैं दोस्त, ऐसे ही आप हमारे दोस्त हैं। देखिए, आप कितने खूबसूरत गीतों के साथ, लफ्जों के साथ अपने संदेश हमें भेजते हैं और हमें कितना अच्छा लगता है। हमारे दिल को भा जाती हैं वो बातें जो आप हमें लिखकर भेजते हैं अपने दिल की बातों के जरिए। और ये हमारे श्रोता हैं नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी, कोटवा नारायणपुर, बाबा पट्टी बलिया से हमारे श्रोता हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और हैं प्रांजल राय, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा, सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से हमारे श्रोता हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और हिमांश, संभाजी चौक सिडको न्यू नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं सुधाकर गायकवाड़, विकास गायकवाड़, प्रीति, आशा, दीपांजलि, दिशा बागमारे और शशांक बागमारे, रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से हमारे श्रोता हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और इनका पूरा परिवार, रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना हर्षित और खुशी गोस्वामी, और ये हमारे श्रोता है राजधानी रायपुर से नीलू मेघ, नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार और हैं बिट्टू कुमार। और ये संदेश हमें भेजा है अनंता भगत, पूर्णा भगत और इनके परिवार ने। हमारे अगले श्रोता हैं गांव कुम्हारखेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शैना हसन, अक्सा नाजिया, इब्राहिम, सद्दाम और आदिब, हीरावली फाजिलका पंजाब से हैं सुभाष गोदारा, बिमला, इंदु, पार्वती, हिमांशु गोदारा, और ये संदेश हमें मिला है गांव कलाना भादरा हनुमानगढ़ से विक्रम कड़वासरा, सचिन कड़वासरा, संतोष योगेश और प्रधव का। तेलंगाना निजामाबाद से हैं शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, दानिश हासिफ शेख, और ये हमारे अगले श्रोता हैं जिन्होंने हमें अपना संदेश भेजा है राजू अग्रवाल, केशव अग्रवाल, दक्ष, प्रियांशी और कमला, निर्मला अग्रवाल, चौधरी वास गांव से। और हमारे अगले श्रोता हैं सुरेंद्र अग्रवाल, रोहित, अंकित अग्रवाल, सुशीला अग्रवाल, हरियाणा से, इन्होंने अपने शहर का नाम नहीं लिखा। खमरिया जमशेदपुर से हैं रोहन जायसवाल, आर्य, चंदौली से विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल, जमशेदपुर रामनगर से हैं मुराहत जायसवाल और देवंती, चकिया बाजार चंदौली से हैं सुंदर जायसवाल और सुमन जायसवाल, सिरसिला फवारा चौक जिला चूरू राजस्थान से हैं संदीप सिंह सोनगरा, प्राची सोमल, कार्तिक सोनगरा, सचिन चौहान और इनका पूरा परिवार।

दोस्तों आप सुन रहे हैं सारिका शर्मा के साथ आकाशवाणी हिसार से संदेश आपके गीत हमारे कार्यक्रम। दोस्तों हम सबके रिश्ते मोतियों के जैसे होते हैं। कहते हैं मोती बहुत कीमती होते हैं लेकिन रिश्ते उनसे भी कीमती होते हैं। अगर कोई मोती टूटकर गिर भी जाए तो उसे झुककर हमें उठा लेना चाहिए क्योंकि रिश्ते अनमोल होते हैं। वहां तो कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। रिश्ता दिल से होना चाहिए शब्दों से नहीं। नाराजगी शब्दों में होनी चाहिए हमारे दिल में नहीं। और जब रिश्तों में झूठ या डर की नौबत आ जाए तब समझ लेना चाहिए कि वो रिश्ता खत्म होने वाला है और इसकी नौबत आप और हम तो कभी आने नहीं देंगे। देखिए ये हमारे श्रोता हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, गांव जेवरा हिसार से वीरेंद्र भयान, सुरेंद्र शमशेर और मनोज भयान। मंडी आदमपुर से हैं रणधीर लटीवाल, धीरू भाई, प्रवीण, सुशील, सुनील बिश्नोई और इनका परिवार। गांव फ्रांसी जिला हिसार से हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद और पुष्पेंद्र कुमार डूडी। भागलपुर मुंदीचक से हैं दिलीप कुमार सोनी और इनका परिवार। गांव व डाघर निम्नाबाई, जिला जींद हरियाणा से हैं जसवीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरुप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और हैं करमजीत कौर। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। नीरमाना सूरतगढ़ श्री गंगानगर से हैं मुखराम शर्मा और रामकुमार जी रिवाड़। पिपरिया जिला कबीरधाम से कमलकांत गुप्ता, दीपा गुप्ता और रिमझिम गुप्ता। महाराष्ट्र परभणी से श्रोता संघ है रूपेश संघई, महेश और प्रगेश संघई। डबवाली हरियाणा से जेके बकोलिया, सुनीता, संजय, अनिल और मीनू। और ये हैं गुजरात के गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जोहरी। और ये हमारे श्रोता हैं जिन्होंने हमें अपनी फरमाइश लिखकर भेजी है। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डी कैस्टो, रोजी, पर्ल और विलिस्टिक।

स्टॉप पहाड़गंज, मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा और टिल्लू नायक। और ये अगली फरमाइश हमें मिली है डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से, राष्ट्रपाल गज भैया, राधिका, रजनीश, मनीष, नीतीश, बेबी वनिष्कात और तन्मय गज भैया की। सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से हैं रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और हैं प्रतीक चौहान। आइए श्रोताओं सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला दिलकश नगमा।

दोस्तों, हम सबके रिश्ते, सारे जहान के रिश्ते बस विश्वास की मजबूत डोर से बंधे होते हैं। एक बार जो ये डोर टूटी तो उसका पहले जैसे जुड़ना बहुत मुश्किल है, कई बार तो नामुमकिन भी हो जाता है। रिश्ते भी पैसों की तरह होते हैं, जिन्हें गंवाना तो आसान है पर कमाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है।

रिश्ता होने से केवल रिश्ता नहीं होता दोस्तों, रिश्ता निभाने से हमारा रिश्ता बनता है मजबूत, जैसे आपका और हम सबका रिश्ता है। ये हमारे श्रोता हैं मोती नगर नई दिल्ली से गौरव और कविता मदान, ठुमरी नांदेड़ महाराष्ट्र से बालूअप्पा घड़बले, ज्योति आराध्या और शिव सुंदर, गोविंदपुरा सीकर से हैं दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह और रिंकी शेखावत, नई दिल्ली साउथ एक्सटेंशन से हैं गुरमीत सिंह मीता, जिला खरगोन मध्य प्रदेश से परवीन शिमाली और मीना शिमाली, और ये हमारे श्रोता हैं लोको कोलानी लोहारू, हरियाणा से बिल्लू सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार, बरखा, योगेंद्र, नरेंद्र और इनका पूरा परिवार। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां, गंज डुंडवारा से हैं शमसुल कमर राही, शाहिन फातिमा, अदनान खान, फैजान, अनु उस्मान और कलीम अंसारी, गांव चूली देशवाली से हैं हिसार से मास्टर ओम प्रकाश गढ़वाल, दड़ौली से रघुवीर मंडेरना, मास्टर विनोद जाखड़, मास्टर इंद्र मोहन शर्मा और हैं इनके साथ राम निवास पांडू। और ये फरमाइश हमें भेजी है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। और अगले हमारे श्रोता है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। पाकुड़ झारखंड से हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद। भोड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से हैं मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। ये हमारे श्रोता हैं छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोड़के, वैशाली अनिल, प्राजक्ता घोड़के, वैष्णवी, गायत्री और यज्ञेश घोड़के। जसपुर उत्तराखंड से हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा, रियाज, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और हैं माहिरा नूर। ये हमारे श्रोता हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ दतरेंगी से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा। रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। गांव पनिहार चक हिसार से हैं विनोद टेलर, साहिल दहिया, कृष्णा, कान्हा, लड्डू, ममता और इनका पूरा परिवार। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत नगमा।

दोस्तों, हमें रिश्तों में सम्मान और धैर्य, विश्वास और प्रेम बराबर बराबर रखना चाहिए। करीब इतना भी ना रहो कि रिश्तों में प्यार खत्म हो जाए, और दूर इतना भी ना रहो कि आने का इंतजार ही कसक बन जाए। हाँ, और उम्मीद भी रिश्तों में उतनी ही रखनी चाहिए कि अगर टूट जाएं तब भी रिश्ते बरकरार रहें, क्योंकि आज के जमाने में लोगों के पास समय और धैर्य दोनों ही बहुत कम है। बदलते लोग, बदलते रिश्ते, बदलता मौसम चाहे दिखाई ना दे, लेकिन हम सबको महसूस होता है। इसीलिए रिश्ता, दोस्ती, सभी में अपनापन, प्यार, मोहब्बत, प्रेम, विश्वास और सम्मान का होना दोनों तरफ से जरूरी है, हमारी तरफ से भी और उनकी तरफ से भी। और ऐसे ही हमारे श्रोता हैं, कितने खूबसूरती से, धैर्य के साथ इंतजार करते हैं अपने अपने नाम का। ये हमारे श्रोता हैं गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुनोर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह। मलोट से है नथुराम शर्मा, ललित शर्मा, इंद्राज, सुरेश और इनका परिवार। कच्छ भुज से हैं श्यामा बानू, बली कुमारी जाटव, कला बाबू डोमेन और आसमा शिकारी। जेल रोड दिल्ली से हैं लाल बाबू दीवाना, उमा राज, दिव्या भारती। डुमराव से हैं वली उल्ला अंसारी। गांधी ग्राम से हैं परवीन बानू गुजराती, कुसुम बानू और कंचन बानू। अंबाला से सोनाली कौर, ज्योति और संदीप कुमार। और गुमला झारखंड से हैं एसएम जावेद और शगुफ्ता अंजुम। सब्जी मंडी बुल्डाना से शबीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मुजू बाबा, आयजा अनम। जवानिया गाजीपुर से हैं सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक, स्वाति, डिंपल और एसपी जायसवाल। आइए श्रोताओं, चलते चलते सुनते हैं कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा नगमा।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ संदेश आपके गीत हमारे कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की अनुमति दीजिए अपने मेजबान सारिका शर्मा को। FM बैंड 102.3 MHz पर ये आकाशवाणी का ही सार केंद्र है। आइए अब हिंदी समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली, प्रतीक्षा के बस चंदपल और हमारे साथ

0: फ्री नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे

0: बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई हैं। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के दो विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी आईआरजीसी और अमेरिकी सैन्य के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में दो मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू हॉलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। श्रोताओं, इस समय रात्रि के 11:05 हो चुके हैं। अब हमारी आज की ये प्रसारण सभा यही संपन्न होती है। कल हमारी प्रातःकालीन सभा में 5:55 पर आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। शुभ रात्रि। जय हिंद।